मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के श्रावण माह की तिथि 25, तदनुसार 16 अगस्त सन 2026 ईस्वी। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:49 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की हमारी पहली सभा।

जंतुक उद्गम सँ बहुत पूर्वे वनस्पतिक उत्पत्ति पृथ्वी पर भेल छल। तैं वनस्पतिकें जीवधारीक समूहमे अग्रजक स्थान प्राप्त छैक। पहिने सूक्ष्म एवं सरल रचनायुक्त वनस्पतिक उत्पत्ति भेल, पुनः क्रमशः विशाल एवं जटिल रचनायुक्त गाछ वृक्षादिक आविर्भाव होमय लागल। जंगम वा चर जंतुक आगमन बहुत बाद में भेल। जैव विकासक क्रम में प्रथमतः शाकाहारी प्राणी आयल, जे जीवन यापनक हेतु गाछ वृक्ष लता गुल्मादि पर आश्रित छल। मांसाहारी जीव बाद में आयल। एहि जीवक जे जीवनाधार से शाकाहारीय जीव मांसाहारिक वनस्पति पर निर्भरता निर्विवाद अछि। जँ वनस्पति नहि तऽ शाकाहारी जीव नहि, आ जँ शाकाहारी प्राणी नहि तऽ मांसाहारी जीवक सेहो कोनो अस्तित्व नहि। जँ वनस्पतिकेँ सृष्टिक धारक पालक आ रक्षक कहल जाय तऽ कोनो अतिशयोक्ति नहि होयत। लोक कल्याणकारिणी भगवतीकेँ शाकम्भरी कहि भारतीय चिंतन वनस्पतिक प्रति अपन विनम्रता अपन कृतज्ञता प्रकट कयलक अछि। जखन भगवान कहै छथि अश्वत्थो हम वृक्षाणाम, तखन स्पष्टतः वनस्पतिक महत्ता ओकर श्रेष्ठता प्रतिपादित होइ छै। वनस्पतिक महत्व सँ आदि मानव परिचित छल।

0: वृक्ष पूजाक उत्स ताकब सरल नहीं अछि। मानवक पूर्वजक आश्रय वृक्षे छल। जखन ओ पैर पर चलय लागल तखनो वृक्षे ओकरा आश्रय देलकैक। वृक्षक कंदमूलक आहार, ओकर शाखातर विश्राम, ओकर छाल पातक परिधान, वृक्षे त मानव जीवनक मानवक जीवन यापनक लेल साधन स्वरूप छल। कल्पतरुक अवधारणाक पाछा यह हेतु अछि। कल्पतरु जे इच्छित वस्तु प्रदान करय, वृक्ष मात्रे कल्पतरु थिक। कने विचार को देखल जाय तो स्पष्टतः वृक्ष मानवक सब मूल आवश्यकताक पूर्ति करय में समर्थ अछि। दक्षिण भारत में नारिकेली गाछ के कल्पतरु कहल गेल अछि। नारिकेल सँ नाना भोज्य पदार्थ बनै छै, जटा सँ रस्सी आ दोसर दोसर उपयोगक सामान तैयार होइ छै। घरहट करक लेल प्रयोजनीय सब सामग्री नारिकेली गाछ प्रदान करै छै। जाहि परिवार के 150 नारिकेली गाछ छै, ओ परिवार भोजन वस्त्र आवासक मूल आवश्यकता के पूर्ति करय में समर्थ अछि। ततबा नहि, वृक्ष वायुमंडलीय शुद्धता के लेल अनिवार्य अछि। औद्योगिकरणक संगहि वायुमंडलीय शुद्धताक समस्या विराट रूप धारण कर रहल अछि। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि विषाक्त गैसक आधिक्य भेल जाय छै। एहि विष सँ मानव के बचावक लेल वृक्ष कवचक काज करै छै। एक अध्ययनक अनुसार एक गोट सामान्य वृक्ष अपन जीवन काल में 2 लाख टाका मूल्यक लाभ मनुष्य के पहुंचबै छै। प्राण वायु प्रदान करै छै, वायुमंडल के स्वच्छ राखै छै, बरखा आनै छै, भूमि क्षरण के रोकै छै, फल प्रदान करै छै, मूल्यवान बहुपयोगी काठ दै छै। मानव जाति द्वारा जाहि गतिया वन संपदाक दोहन भ रहल अछि, ओ चिंताक विषय थिक। गाछ काटल जाय छै अधिक, रोपल जाय छै कम। वन रोपणक दिशा में सामाजिक अभिरुचि अपेक्षित छै। सामाजिक वन रोपण आई सामाजिक उत्तरदायित्वक अंग बनि गेल अछि। सार्वजनिक स्थान आ प्रति परात में गाछ वृक्ष रोपि एहि उत्तरदायित्वक वहन कयल जा सकै छै।
1: अभी आप चिंतन सुन रहे थे, प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। कृषि चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है मिहिर कुमार झा की वार्ता, शंकर गाय पालन में सावधानी।
2: किसान भाई नमस्कार, आजुक कृषि चर्चा के संग हम मिहिर कुमार झा। आजुक कृषि चर्चा में अपना सब गप करब संकर गाय पालन में सावधानी, एहि विषय पर चर्चा करब अपना सब। आज किसान भाई लोकन, अपना सब जे खेती पथारी करै छी, ओहि खेती पथारी में जे अपना सब जैविक खादक उपयोग करै छी, ओ खाद तऽ अपना सबके गाय महीस जे अपना सब पोसै छी, ओहि माध्यमे गाय महीसक गोबर, ओकर बथान परहक निंघेस, खरन मरन, एहि सबके जे छै से कम्पोस्ट बनाके नीक जैविक खाद अपना सब बना लै छी। आ ई सुगमतासँ आ सस्ता बनि जाइत अछि आ खेती के लेल बड़ नीक होइत छै। किसान भाई लोकनि, एहि तरह अपना सब जे अन्न जेना धान, गहूँम, दलहन, ई सब तरहक वस्तु खेतीसँ गाय भैंसक चाराक उपलब्धता आसानीसँ भेट जाइ छै, ओकर खुराक की? देखियौ, धानक गाछके पुआर आ नारके छोट छोट टुकड़ामे मशीन से काटि के जकरा कुटी कहै छियै, ओ मवेशी के लेल चारा नीक भऽ जाइत अछि। एहि तरह गहूँम आ दलहनक भूसी सँ मालक चारा सुलभ आ नीक उपलब्ध भऽ जाइत अछि। किसान भाई लोकनि, एहि तरह खेती पथारी करैत अपना सब माल जाल आसानी से सुगमतापूर्वक पोषित छी, संगे माल जाल से नगदी आमदनी अपना सबके सेहो भऽ जाइत अछि आ नीक आ बढ़िया दूध जे छै सेहो माल जाल पोसै छी तऽ भेट जाइत अछि। किसान भाई लोकनि, अपना सब जनै छी जे दूध के संपूर्ण आहार, पौष्टिक आहार कही तो कोनो अतिशयोक्ति नहीं।

0: एहि तरहे नीक आहार जे अपना सबके सुलभसँ आ सुगमतासँ प्राप्त भऽ जाइत अछि, ई तऽ मालजालके पुछलेसँ ने। किसान भाइ लोकनि, अपना सब शंकर गाय जकरा क्रॉस ब्रीड गाय कहि सकै छी तऽ ओहि गायके दूध पर्याप्त होय, एहिसँ नीक चिकन आमदनी होय। एहि तरहे किसान भाइ लोकनि, अपना सब जे इम्हर जे कोनो गाय अपना सब पोसै छी, समय आ मेहनत तऽ लगिते अछि ओ छोटको गाय पोसैमे, परञ्च शंकर गाय पोसलासँ ओकर नीक जकाँ देखभाल कयलासँ दूधके मात्रामे बड़ बेसी अंतर भऽ जाइ छै। इम्हरका गायके दूध 1 से 2 लीटर हैत भऽ सकैत अछि, परञ्च शंकर गायके दूध तऽ बढ़िआँ होइ छै, ओकर तऽ कमसँ कम 15 लीटरसँ ऊपरे होइ छै। एहन जे सुन्दर शंकर गाय जकरा क्रॉस ब्रीड कहै छै, ओकर देखरेख कनि नीक जकाँ करब तऽ बहुत दूध भेटत आ बढ़िआँ आमदनी भेटत। देखियौ किसान भाइ लोकनि, शंकर नस्लक गाय जकरा क्रॉस ब्रीड गाय कहै छी, जाहिमे जर्सी, HF एहिसब तरहक गायके पोसब तऽ ओकर खान पान, ओकर रहैक घर, बथान, ईसब जे छै ओहि शंकर गायके स्वास्थ्यपर थोड़ेक बेसी ध्यान देब तऽ नीक जकाँ ओ गाय स्वस्थ रहत आ दूध नीक देत। किसान भाइ लोकनि, खास कऽ कऽ शंकर गायके मौसम परिवर्तनमे, जेना अखन बरसातक मौसम शुरू भऽ गेल अछि, एहि तरह जाड़ आ गर्मी जे मौसम परिवर्तन होइ छै, ओहि समय कनि बेसी सावधानी ओकर देखरेख राखऽ पड़ै छै शंकर किस्मके गायके, ताकि दूध उत्पादनमे कोनो व्यवधान नहि हो। पशु स्वस्थ रहत तखने ने दूध नीक जकाँ रहत, तऽ मौसम परिवर्तनमे पशु स्वस्थ रहे एहि लेल ओकर देखरेख करऽ पड़ै छै। किसान भाइ लोकनि, शंकर गाय अर्थात क्रॉस ब्रीड गायके घर अर्थात गौशाला एहि तरह बनेबाक चाही जे नीक जकाँ ओहि गौशालामे हवा आ प्रकाश अबैत रहे।
1: शंकर गाय पालन में सावधानी अभियाप मिहिर कुमार झा की ये वार्ता सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने को हैं। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्र ने कल अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर महत्वपूर्ण घोषणाएं की। अपने संबोधन में श्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने एक संकल्प और समर्पण के साथ देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल में देश ने नई रफ्तार पकड़ी है और नई गति से आगे बढ़ाए। इलेक्ट्रॉनिक से लेकर मोबाइल विनिर्माण तक हर क्षेत्र में कई गुणा उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में भी प्रयास कर रही है।
3: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के तहत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
3: हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, चाहते हैं कि वो भारत में हो, और इसलिए 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, स्कूल-स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा।
2: मंत्री ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प तब पूरा होगा जब विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमने 1 दशक के भीतर ही 100 करोड़ देशवासियों को सामाजिक सुरक्षा का कवर दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों की वजह से भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता और पारिवारिक रिश्ते इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले विश्व नेताओं का आभार जताया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दिया। इनके अतिरिक्त नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री

0: मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार जताते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले का कल समापन हो गया। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे चेन्नई, चेंगलपेट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपेट्टू में एआरएम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार मुफ्त बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध करने और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सोराब में हुए हवाई हमलों के वीडियो इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में स्थानीय आबादी के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की गई। भारत श्रीलंका के बीच खेले जा रहे टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। 2 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में कल खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। बारिश के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता की भेंटवार्ता, उच्च रक्तचाप लक्षण एवं सावधानियां। भेंट करता है संजय कुमार।
2: आज की स्वास्थ्य चर्चा में हम जानेंगे उच्च रक्तचाप लक्षण और सावधानियों के बारे में। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता। डॉक्टर एके गुप्ता साहब, ये हाई बीपी जब हम कहते हैं उच्च रक्तचाप, ये है क्या?
3: सामान्य रक्तचाप का मतलब होता है 120/80 से कम। अगर किसी भी व्यक्ति को 120/129 से ऊपर में सिस्टोलिक बीपी, डायस्टोलिक बीपी 80 से कम है तो वो होते हैं प्री हाइपरटेंसिव। और उच्च रक्तचाप का मतलब हुआ अगर आपका बीपी 130/80 से ज्यादा है तो आपको उच्च रक्तचाप है और आपको इसका इंतजाम बात करना चाहिए।
2: क्या उच्च रक्तचाप की समस्या किसी खास उम्र में होती है या फिर ये किसी को भी हो सकती है?
3: उच्च रक्तचाप हम लोग 2 टाइप में जानते हैं। एक का नाम होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन और दूसरे का नाम होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब होता है इसमें कुछ न कुछ कारण मरीज को जरूर होता है। अगर किसी बच्चे को अपने किडनी की बीमारी हो, किडनी के आर्टरी की बीमारी हो, क्वाक्टेशन ऑफ एओर्टा हो, या इस तरह की शरीर में या हार्मोन की कोई बीमारी हो तो बीपी कम ही उम्र में बहुत हाई हो सकता है। इसको सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं, लेकिन इसकी वारदात बहुत कम है, less than 5%। 95% ऐसे लोगों को होती है बीपी जिनका कॉज हमको अंदाजा नहीं होता है और वो ज्यादातर 40 साल के बाद लोगों को होती है।
2: क्या इसके कुछ लक्षण हैं या फिर ये चुपचाप बीपी बढ़ी हुई होती है लोगों को सालों साल?
3: ज्यादातर लोगों में जो हम लोगों ने देखा है बीपी के पेशेंट को, लक्षण इसमें नहीं होता है। कुछ लोगों को जब वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं किसी अन्य कारण से, उस समय बीपी उनको अपना देखा गया तो बीपी बहुत हाई था। कुछ लोगों की मान्यताएं हैं कि माथा में दर्द या भारीपन या चक्कर हो या कमजोरी हो तो बीपी होगा, लेकिन इस तरह के संख्या बहुत कम है। ये मान के चलिए कि ये साइलेंट अपना किलर है, इसमें लक्षण का इंतजार करना अकलमंदी नहीं है।
2: तो सवाल ये है कि डॉक्टर की सलाह यानी चिकित्सक की सलाह लोग कब लें?
3: उसके बारे में रिकमेंडेशन है कि अगर आपके फैमिली में किसी भी

0: व्यक्ति को हार्ट की बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, तो आप 18 साल की उम्र से जागरूक हो जाएं, साल में एक बार अवश्य बीपी अपना जान लें। बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल और वेट, इतना साल में एक बार आपको जानना चाहिए। अगर फैमिली में इस तरह की कोई बात नहीं है तो 30 साल की उम्र के बाद आपको साल में एक बार अपना चेकअप ये सब जरूर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप तंबाकू से रहते हैं दूर, तो समझिए कि 95% उम्मीद है कि हार्ट अटैक लकवा से अपने आप को आप बचा पाएंगे।
1: दवा की ज़रूरत कब है?
0: दवा की ज़रूरत है कि अगर लगातार बीपी 130/80 से ऊपर रहता है, 134/84, 140/90, तो एज ए फिजिशियन, एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग लाइफ स्टाइल में कुछ उनको बताते हैं परिवर्तन। उससे एक दो महीने के इस्तेमाल के बाद अगर बीपी नहीं कंट्रोल होता है तो हम लोग दवा स्टार्ट कर देते हैं।
1: अगर किसी व्यक्ति की बीपी हमेशा हाई रहती है तो क्या उन्हें जीवन पर्यंत दवा खाने की जरूरत पड़ सकती है?
0: ऑलमोस्ट उनको दवाई खाना पड़ता है।
1: हाई बीपी की समस्या झेल रहे लोगों में किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं के खतरे उत्पन्न हो सकते हैं?
0: खासतौर से हार्ट की जो भी समस्या है उसकी माँ है ये। सारी दुनिया में अपने विद्वानों का सारा फोकस बीपी पर है। वो मान के चलते हैं कि बीपी को अगर आपने कंट्रोल अपना कर लिया तो आप जैसे हार्ट अटैक, हार्ट में स्टेंट का लगना, बाईपास सर्जरी का होना, किडनी का फेल होना, इसमें काफ़ी हो जाएगी कमी। इतनी सारे रोगियों का संख्या का बढ़ना के पीछे एक ही कारण है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन।
1: कौन कौन सी सावधानियां हैं जिसकी जरूरत हाई बीपी के पेशेंट्स को है?
0: सावधानियों में सबसे जो आवश्यक है कि अपने वेट को नियंत्रण में रखें, खाने में नमक की मात्रा को घटाएं, उसमें सबसे आवश्यक है कि बाहर की जो अपने बनी हुई चीज है, प्रोसेस्ड फूड है या जो पैकेट में आती है नमकीन वगैरह सब चीज, स्नैक्स की चीज, बेकरी प्रोडक्ट, इसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। घर का अपना बना हुआ शाकाहारी खाना खाएं तो बहुत अच्छी बात है। और घर के खाने में भी कुछ परहेज करना पड़ेगा, चटनी, चाट, पापड़, अचार जिसमें अधिक सॉल्ट है उसको नहीं खाएं। हरी सब्जी, हरे फल और शाकाहारी खाना खाएंगे तो आपको नमक कम मात्रा में होगी। और नमक का अगर खाने की घर में बात हो तो अगर लोग सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, खास करके जिनको बीपी है तो उनके लिए ये फायदेमंद है। मानसिक अपना तनाव को कम करें और सबसे जरूरी चीज़ है कि अपनी जीवन शैली को सक्रिय बनाए। अभी का सिडेंटरी हैबिट का मुख्य कारण है मोबाइल फोन का देखना कम करें और उस वो समय एक्सरसाइज, योगा, टहलने में बिताएं तो आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा।
1: डॉक्टर AK गुप्ता साहब, आपने अपना समय हमारे लिए निकाला, आपका धन्यवाद।
2: अभी आप स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले संवेद स्वर में ये देश वंदना।

अभी आप संवेद स्वर में देश वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं ये गणेश वंदना संवेद स्वर में।

अभी आप संवेद स्वर में गणपति वंदना सुन रहे थे। आइए अब सुनते हैं अनुपमा देशपांडे के स्वर में ये वंदना।

यह स्वर था अनुपमा देशपांडे का। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह के स्वर में ये वंदना।

अभी आप नितिन मुकेश के स्वर में हनुमान वंदना सुन रहे थे। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये भक्ति वंदना।

यह स्वर था सुरेश वाडेकर का। इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरित मानस गान।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया। श्रोताओं, आइए अब जानकारी प्राप्त करते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में।

अभी से थोड़ी देर बाद यानी 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार मिथिला। फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा इस सभा में सुबह 9:50 पर। सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित कार्यक्रम फुलवारी। दिन के 11:00 कार्यक्रम हेलो जिंदगी का प्रसारण होगा। सखी बहन यह कार्यक्रम सुनेंगे आप दोपहर 12:30 पर। हम आपको सुनाएंगे मैथिली नाटक वाल्मीकि। दोपहर 1:10 पर देशभक्ति गीत और आपके अनुरोध पर फरमाइशी फिल्मी गीतों का यह कार्यक्रम होगा दोपहर 1:15 पर। दोपहर 2:10 पर आप सुनेंगे रोजगार समाचार। पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा दोपहर 2:30 पर। दोपहर 3:00 विद्यापति गीत। संध्या 5:00 आप सुनेंगे गैर फिल्मी गजल या गीत और संध्या 5:40 पर फिल्मी गजल या गीत का आनंद आप लेंगे। ग्रामीण श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम गांव घर के अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम गुनगुनायत मन। समय होगा संध्या 6:30। संध्या 7:00 आप सुनेंगे किसान श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी। संध्या 7:50 पर पुनः फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा। खेल गतिविधियों पर आधारित हमारा कार्यक्रम क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। दिल्ली केंद्र से रिले नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम होगा रात्रि 9:30 पर। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे थे।

0: आइए सुनते हैं कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, सिर दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भवनजी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जरी विभाग, DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 0627222481, यानी 0627222481। दूसरा नंबर है 9430029353, यानी 9430029353। समय याद रखें, आज ही रविवार 16 अगस्त दिन के 11 बजे। कार्यक्रम संबंधी यह सूचना संपन्न हुई। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:55 होने को हैं। अब कुछ ही क्षणों में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। देशेन ह्यः 80तमः स्वातन्त्र्यदिवसः आचरितः। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी रक्तदुर्गस्य प्राचीरात् राष्ट्रियध्वजम् आरोहितवान् तथा अनेकाः महत्वपूर्णाः घोषणाः कृतवान्। राष्ट्रं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री कथितवान् यद् विगतेषु 12 वर्षेषु देशस्य कोटिशः नागरिकाः स्वसङ्कल्पेन, समर्पणेन च देशं नूतनासु उन्नतिषु नेतुं सर्वसम्भवं प्रयत्नम् अकुर्वन्। प्रधानमन्त्री सबलं प्रतिपादितवान् यत् बृहन् स्वप्नाः, दृढतराः सङ्कल्पाश्च राष्ट्रस्य प्रयत्नानां समग्रं स्तरं सामर्थ्यञ्च वर्धयन्ति।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारताय यूनां महिलानां च सशक्तीकरणे बलं दत्त्वा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विभिन्नानां लोकसेवा परीक्षाणां कृते निर्धन मध्यम वर्गीय परिवाराणां युवभ्यः निःशुल्कम् अन्तर्जाल माध्यमेन प्रशिक्षणं प्रदातुं घोषणां कृतवान्। सः इदमपि घोषितवान् यत् प्रशासनेन आगामि एकवर्षे 1 कोटि युवभ्यः AI इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता कौशलस्य प्रशिक्षणं प्रदातुं निर्णयः कृतः। केन्द्रीय सहकारिता मन्त्री अमित शाहः अद्य राजस्थानस्य अलवर नगरे स्थिते अलवर सरस दुग्ध परिसरे नूतनस्य दुग्ध संयंत्रस्य आधारशिलां स्थापयिष्यति। सहकारिता मन्त्रालयेन संसूचितं यत् अस्मिन् अवसरे अन्तर्जालीय माध्यमेन शिलान्यासः क्रियते तथा राजस्थानस्य 17 जनपदेषु 260,000,000,000 रूप्यकाणां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनमपि अन्तर्जालीय माध्यमेनैव करिष्यते। एतदतिरिक्तं आजीविकोत्सवस्य अन्तर्गतं 9 नियुक्तेभ्यः 15,000+ कर्मिभ्यः नियुक्तिपत्राणि अपि वितरिष्यन्ते। उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन् अद्यारभ्य तमिलनाडुराज्यस्य 2-दिवसीययात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ असौ चेन्नई, चेङ्गलपट्टु, तिरुवरूर, तञ्जावूर नगरेषु विविधेषु शैक्षणिकेषु स्मारकेषु, साहित्यिकेषु च कार्यक्रमेषु भागं ग्रहीष्यति।

0: अद्य श्री राधाकृष्णन चेंगलपट्टुनगरे SMR विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थायाः द्वाविंशतितम दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। सः चेन्नई नगरे नागालैंड मणिपुर पश्चिम बंगाल राज्यानां पूर्व राज्यपालस्य प्रथम पुण्यतिथेः कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। ततः परं उपराष्ट्रपतिः चेन्नई नगरे इकोज ऑफ अ नेशनलिस्ट माइंड इति पुस्तकस्य विमोचन कार्यक्रमे अपि भागं ग्रहीष्यति। दिल्ली प्रशासनेन दिल्ली परिवहन निगमस्य बसयानेषु महिला यात्रिणां कृते प्रचलितायाः कागद निर्मित पाटल चटिका व्यवस्थायाः अवधि अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं विस्तृतः अस्ति। परिवहन विभागस्य आदेशानुसारं निःशुल्क बस यात्रायै महिलाः DTC अथ दिल्ली क्लस्टर इत्येतयोः बस यानेषु कागद निर्मित पाटल चटिकायाः उपयोगं निरन्तरं कर्तुं शक्नुवन्ति। प्रथमवारं आयोजिता सूर्यपथ त्रिरंग वैश्विक यात्रा ह्यः सम्पन्ना। इयं यात्रा पश्चिमदिशि फिजी देशादारभ्य संयुक्तराज्यामेरिका पर्यन्तं 54 देशेषु बहुषु च कालक्षेत्रेषु सम्पन्ना। अमृतोद्यानम् अद्यारभ्य आगामि मासस्य 15 दिनांक पर्यन्तं सामान्यजनेभ्यः उद्घाटितं भविष्यति। अस्माकं वार्ताहरानुसारम् उद्यानं प्रातः 10 सायं 6 पर्यन्तम् उद्घाटितं भविष्यति। अन्तिमप्रवेशः सायं 5 पर्यन्तमेव भविष्यति। अनुरक्षणकार्याय उद्यानं प्रत्येकं सोमवासरे पिधानं भविष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि आज भारत एक बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति AI के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ, हमने तय किया है कि आने वाले 1 में 1 युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिंग तोबगे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य

0: दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करेगा। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। परीक्षा एजेंसी ने बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। दिल्ली सरकार ने डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए पिंक टिकट की सुविधा इस महीने की 31 तारीख तक बढ़ा दी है। परिवहन विभाग के अनुसार निशुल्क बस यात्रा की पात्र महिलाएं डीटीसी और दिल्ली क्लस्टर बसों में कागजी पिंक टिकट का इस्तेमाल कर सकेंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकते हैं। यह योजना आज से लागू हो गई है। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाकिस्तानी सेना पर युद्ध अपराध और नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि सुराब में हुई हवाई हमलों की वीडियो इस बात का प्रमाण है। श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारत अपनी पहली पारी में 2 विकेट पर 288 रन से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने तक देवदत्त 131 और ऋषभ पंत 27 रन बनाकर नाबाद थे। वर्षा के कारण कल खेल केवल 73 ओवर का ही हो सका। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, नमस्कार श्रोता लोकन, आजुक नमस्कार मिथिला कंक में हम रंजीत और हमारे संग स्टूडियो में उपस्थित कैयाम हूँ के हमारे नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, आपको भी और तमाम श्रोताओं को भी दिल से नमस्कार।
0: और जेना कि श्रोता लोकन के बूझल छन कि कार्यक्रमक शुरुआत हमारा लोकन करे छी सुविचार सँ, तो सबसे पहले आजुक सुविचार।
1: खुद में वो बदलाव लाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं।
0: की कहियाँ भोरे भोर, बड़ा सुंदर बात कहलूँ हैं। अगर अहाँ के अपना अंदर कमी ढूंढबाक हुए तो आईना खरीदू, दूरबीन नहीं। कारण दूरबीन दूर के चीज देखबै छै, आईना नजदीक के सत्य चीज देखाबै छै। ताई और आओ आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में एक डेग आगा और बढ़े छी और एक नजर राखे छी आजुक दिनक इतिहास पर, जे आजुक दिन की खास महत्व रखते छै हमरा राष्ट्र में, हमरा समाज में, हमर आकाशवाणी दरभंगा परिवार के जे श्रोता के क्षेत्र छै ताई में ई जानकारी साझा कर रहल छथि कैयाम।
1: आज ही के दिन 1946 में भारत के विभाजन से जुड़ा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस हुआ। आज ही के दिन 1960 में साइप्रस देश को ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली। और आज ही के दिन 2018 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, वक्ता और कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का दिल्ली में निधन हुआ। 1886 में महान संत और स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन आज ही के दिन हुआ।
0: तो इच्छा आजुक दिनक इतिहास जे हमारे श्रोता लोकन से जानकारी साझा केलूँ और श्रोता लोकन बताबे चली कि एहन आजुक दिनक इतिहास बहुत रास इतिहास के पन्ना में समेटल है, जरा अपने लोकन से खंगार सकै छी। और आजुक नमस्कार मिथिला कार्यक्रम में हमारे लोकन एक डेग कैयाम और आगा बढ़ाबे छी। और सबसे पहले समसामायिक मैथिली गीत के आनंद लै छी। और समसामायिक कहबा के हमर तात्पर्य ई अभिप्राय ई छल जे अखन मिथिला के क्षेत्र के मुताबिक नवव्याहिता जे कन्या सब छथि हुनका सब के लेल मधुश्रावणी पावनि चलै छनि। और अई मधुश

श्रावणी पावनि में नवविवाहिता कन्या सब जे छै से फूल लोढ़ी एकटा विध होइ छै से करऽ जाइ छथि। आइ एहि सब ओहिके लेल समर्पित आकाशवाणी दरभंगा परिवारके तरफसँ ई फूल लोढ़ीवला मैथिली गीत हमरा लोकनि एखन सुना रहल छी। श्रोता लोकनि सुनू ई मैथिली फूल लोढ़ीवला गीत।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
4: छोटे अंतराल के बाद फिर से हाजिर है नमस्कार मिथिला में। और नमस्कार मिथिला में हम सारी चीज़ों को समय के साथ लेकर आते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे श्रोताओं को ये कार्यक्रम बिल्कुल अच्छा लगे। और समय के साथ हमें चलते रहना चाहिए। समय के साथ हम जब चलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है और हमारे जीवन में समय का महत्व होना चाहिए। और आकाशवाणी की तरफ से अब समय हो चुका है हालचाल का। हालचाल प्रस्तुत करेंगे रंजीत कुमार झा।
5: धन्यवाद कहिया, नमस्कार। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC एक बेर फिर संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दलक है। एकरा अनुसार एकीकृत 72वां संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा 25 अक्टूबर से है। ओते बीतल दिन के लेल गेल एकत्रित 71वां और संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट एहि महीना या अगला महीना में जारी होबय के संभावना है। कैलेंडर में TIR 4 और AEDO परीक्षा के तिथि घोषित नहीं कैल गेल है, लेकिन PT लेवा के उल्लेख से स्पष्ट है कि परीक्षा अगला दो चरण में परीक्षा कैलेंडर में कुल 50 परीक्षा के जिक्र है, जाहि में आयोग किछ परीक्षा के संभावित तिथि घोषित कैलक है, जखन कि किछ के परिणाम और साक्षात्कार के स्थिति अखनो स्पष्ट नहीं भ सकल है। राज्य के शहर में सुनियोजित विकास के लिए बिहार नगर विकास प्राधिकरण के गठन कैल गेल है। मुख्य सचिव एकर अध्यक्ष हेता और नगर विकास एवं आवास विभाग के प्राधिकरण गठन के आदेश से हो जारी करता। ऐसे पहले मानसून सत्र में बिहार विधानमंडल में संशोधक विधेयक पारित कैल गेल छल। नगर विकास एवं आवास विभाग अपार मुख्य सचिव या प्रधान सचिव सचिव के उपाध्यक्ष हेता। एकरा अलावा वित्त उद्योग पर्यटन पर्यावरण पथ निर्माण ऊर्जा जल संसाधन सहित कतेको विभाग के अधिकारी एकर सदस्य बनाओल जेता। प्रदेश में विकसित कैल जा रहल 12 सेटेलाइट टाउनशिप के मास्टर प्लान के मंजूरी देवाक लेल और विकास योजना के बनाबो में लैंड पुलिसिंग व अधिग्रहण के जरिए जमीन के व्यवस्था आदि के लेल नगर विकास प्राधिकरण के गठन जल्दी ये कैल जाए, ताकि काज के सिलसिलेवार ढंग से आगा बढ़ायल जाए। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार कहलन है कि अगला 2-2.5 महीना में 26,000 से बेसी नवका पद पर बिहार पुलिस के बहाली है। विभिन्न परीक्षा आयोग एकर माध्यम से प्रक्रिया अखन एकर चल रहल है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता में कहलन कि दरोगा के 1,799 को पद पर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और चालक सिपाही भर्ती के 4,361 को पद पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के माध्यम से बहाली कैल जाए। दरोगा के मुख्य परीक्षा 27 जखन कि चालक सिपाही के लिए मोटर चाकल दक्षता परीक्षा 22 अक्टूबर से शुरू होबा के उम्मीद कैल जा रहल है। केंद्र सरकार जनगणना 2027 के दोसर चरण यानी कि जनसंख्या गणना के 40 सवाल के अधिसूचित कर दिलक है। अ बेर सबसे बड़का बदलाव ई कैल गेल है कि स्वतंत्र भारत में पहल बेर अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST के अलावा सब जाति के गणना करायल जाए। जनगणना के दोसर चरण 17 अगस्त 2026 से लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बर्फीली क्षेत्र से शुरू कैल जाए। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बर्न और प्लास्टिक सर्जरी के विभाग का डॉक्टर के पहल प्लास्टिक सर्जरी कैल गेल। जयनगर के 9 बालक मोहम्मद हामिद के एगो पाँव किछ महीना झुलस गेल छलन, ओतो OT और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से चिकित्सक डॉक्टर मेराज एकर प्लास्टिक सर्जरी से हो कैलन। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एथिसिनिया विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह सहित अन्य चिकित्सक ऑपरेशन में अपन सहभागी निभौलन। ऑपरेशन शुरू होबा के

0: पश्चात सफलता के जानकारी लेवाक में प्रमंडलीय आयुक्त हिमांशु कुमार राय, डीएम कौशल कुमार सुपर स्पेशली अस्पताल पहुँचला और इस सफलता पर दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टीम के बधाई सेहो दलन है और संगे अपना वक्तव्य में कहलन कि दरभंगा अस्पताल में बर्न इलाज और प्लास्टिक सर्जरी शुरू हो जाने से मिथिला के क्षेत्र में भारी एकर सफलता भेटत। बहेड़ी प्रखंड के मंटुनिया निवासी वैद्यनाथ यादव के पुत्री, रमोली गुजरौली निवासी पन्ना लाल राम के पुत्री विगत दिनों डूब गेला से मृत्यु भ गेल छल। उनका बाद ओकरा परिजन के सरकार के ओर से देल जाय वाला आपदा राशि प्रदान कयल गेल। बिहार सरकार के पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री, सहाया घाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद दुनू के परिजन के 4-4 लाख रुपया के चेक दिलन। एहि दौरान मंत्री परिजन से मुलाकात क संवेदना सेहो व्यक्त कयलन। मौका पर सीओ रविकांत, राणा चंदन सिंह, राम अवतार मुखिया, कन्हा यादव, रमाकांत यादव आदि व्यक्ति सेहो उपस्थित छला है। बाढ़ के बाद प्रभावित क्षेत्र से काज करवा के लिए लोग के पलायन बढ़े जा रहा है। बाढ़ के कारण बड़े पैमाना पर किसान फसल बर्बाद भ गए हैं। किसान के खेती चौपट होबा से किसान मजदूर के सामने मजदूरी के संकट उत्पन्न भ गए हैं। रोजी रोटी की तलाश में बड़ पैघ संख्या में लोग दोसर राज्य के लिए पलायन करवा के लिए मजबूर भ गए हैं। उत्तरी घनश्यामपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घनश्यामपुर प्रखंड के गाँव के खेती बाड़ी सब तरह चौपट भ गए। दाल सरदाल साल दर साल बाढ़ किसान के कमर तोड़ने जा रहा है। प्रत्येक वर्ष बाढ़ के भेड़ चौराव जा के कारण किसान के सामने पुस्तैनी खेती के पैसा अब घाटा के सौदा साबित भ रहा है। हाल चाल अगर अपने लोकन आकाशवाणी दरभंगा से सुन रहा छी।
1: सांप काटे तो समय न गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
8: बिल हो रहा है।
7: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
9: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हर घर तिरंगा अभियान के आयोजन कयल गेल। एहि अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर चंदन कुमार राष्ट्रीय ध्वज के महत्व तथा राष्ट्र के प्रति नागरिक के कर्तव्य पर प्रकाश डालवा के विद्यार्थी के एकता और अखंडता के विकास में अपन महत्वपूर्ण निभाव के संदेश दिलन। 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मिथिला क्षेत्र के ठाम ठाम जगह पर मनाओल गेल। अही क्रम में 80वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिला के आन वानसान के संगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा नेहरू स्टेडियम में सेहो लहराओल गेल। नेहरू स्टेडियम में 9:05 पर आयुक्त कार्यालय में प्रातः 9:45 पर पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में 10:15 और एक संगे संगे ठाम ठाम जगह पर स्वतंत्रता दिवस के लौकर झंडा फहराओल गेल और सब ठमन एक संदेश दिल गेल कि भारत युवा के देश है, युवा जतेक आगा बढ़ता भारत ओतेक आगा बढ़त। PhD कक सूबे में नवनियुक्त सहायक प्राध्यापक के लिए बड़का राहत वाला खबर है। लोक भवन में एहन सहायक प्राध्यापक के लिए PhD करवा के छूट प्रदान कर दिल गया। एकरा लेल बिहार के 211 गो नव स्थापित डिग्री कॉलेज में संविदा पर नियुक्ति सहायक प्रधानाध्यापक के लिए लोक भवन के निर्देश जारी कयल गया। एकरा तहत PhD कर रहल शिक्षक के सेवा में आबक के बाद अपन शोध कार्य जारी रखबा के अवसर सरकार के द्वारा देल जेतन। पिछला दिन से कुछ एकरा लक बड़का समस्या ठाड़ भ गेल छल। कतेको सहायक प्राध्यापक इस समय पर PhD कर रहा छला है और अ अस्वस्थ में छला है कि नौकरी के अवस्था में हम PhD कर सकै छी तो ओकर वैल्यू हैत कि नहीं हैत। एकरा लेल सरकार स्पष्ट निर्देश जारी कर देलक है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC ने परीक्षा कैलेंडर जारी कलक है। एकरा मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजर उद्योग विभाग के कैनी पद पर प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर 2000 तक प्रस्तावित है। पंचायत राज विभाग के ऑडिटर के लिए 102 पद पर, राजस्व विभाग के रिसर्च ऑफिसर के 3 गो पद पर प्रारंभिक परीक्षा के

0: परिणाम एहि महीना में अगस्त में प्रस्तावित है। असिस्टेंट कंजक्टर ऑफ फॉरेस्ट के लिए 12 गो पद के परीक्षा 25-30 नवंबर 2026 के बीच प्रस्तावित कैल गेल है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वीरता ग्लैस्ट्री विशिष्ट सेवा और सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के घोषणा केलक। राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के 18 गो पुलिस पदाधिकारी के कर्मी के ई पदक देता, जाहि में 1 के वीरता पदक, 2 के विशिष्ट सेवा और 15 को के सराहनीय सेवा से सम्मानित कैल जाएत, जाहि में 1 गो IG, 1 गो DIG, 2 गो SP समेत 4 गो IPS, 2 गो इंस्पेक्टर, 2 गो दरोगा, 4 गो IAS, 3 गो हवलदार और 3 गो सिपाही रैंक के पुलिस कर्मी शामिल छथि। बिहार में 7 गो पुलिस कर्मी के हुनका वीरता के लिए आयोजित स्वतंत्रता सीमा दिवस समारोह 2026 में सम्मानित कैल जतन। सम्मान स्वरूप हुनका लोकन के 51,000 रुपया के नकद राशि देल जतन। पुरस्कार पावला में बेगूसराय जिला के अधिसूचना इकाई के ASI राजेश कुमार, STF बिहार के दरोगा अनिमव कुमार भारती, STF के हवलदार रूपेश थापा और STF के 4 गो जूनियर कमांडो राकेश कुमार, मृत्युंजय कुमार मंडल, सुमन कुमार और संतोष कुमार के नाम शामिल है। बिहार पुलिस मुख्यालय में वीरता सेवा के लिए पुरस्कृत पुलिस जवान के बधाई सेहो देल गेल है। दरभंगा में तारा मंडल में अंतरिक्ष गैलरी और अंतरिक्ष नवाचार केंद्र के स्थापना के लिए अंतरिक्ष आयोग सहमति दे दिलक है। अब आगा के औपचारिकता के लिए पहल शुरू कर दिल गेल है। ई बात दरभंगा के सांसद सह लोकसभा में भाजपा के सचेतक डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, भारतीय अंतरिक्ष आयोग के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण के द्वारा भेजल गेल पत्र के आलोक में जानकारी दिलन है। ओ कहलन कि एकरा लेल पूर्व में प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करवा के आग्रह कैल गेल छल और गत 27 जुलाई के पत्र के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराओल गेल छल। एकर सकारात्मक परिणाम सामने आयल है। सांसद ठाकुर कहलन कि एकरा द्वारा दिखाएल गेल सकारात्मक प्रतिबद्धता पर प्रसन्नता व्यक्त करैत ओ कहलन कि एकरा पहल से मिथिला के धरती पर विज्ञान नवाचार और विकसित भारत के संकल्प के नवका दिशा भेटत। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वितीय खंड सत्र 2024-26 परीक्षा फल प्रकाशित कर दिल गया। उत्तीर्णता प्राप्त करो वाला सब छात्र छात्रा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी बधाई दिलन है। अही के संगे आजुक सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि सम्पन्न होते है। नमस्कार।
1: और हालचाल के बाद श्रोताओं को अवगत करा दें लोकल अपडेट से। नगर में सफाई, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, मृत पशु आदि से संबंधित शिकायत को लेकर निगम के नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर है 6202-77740 पर आप शिकायत कर सकते हैं। शहर में बिजली की समस्या होने पर फ्यूज़ कॉल सेंटर के मोबाइल नंबर है 7763818777 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों की बात करें तो सुबह 6:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, सुबह 8:15 पर दरभंगा से नई दिल्ली के लिए बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट, दोपहर 12:30 पर दरभंगा से पटना के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, शाम 7:00 दरभंगा से नई दिल्ली के लिए स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। विमानों की बात करें तो सुबह 9:30 पर दरभंगा से मुंबई के लिए, सुबह 11:30 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 12:25 पर दरभंगा से कोलकाता के लिए, दोपहर 12:50 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए, दोपहर 1:35 पर दरभंगा से मुंबई के लिए। ये विमान रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को है। दोपहर 3:00 दरभंगा से हैदराबाद के लिए और शाम 4:35 पर दरभंगा से दिल्ली के लिए।
0: तो इछल मौसम संबंधी जानकारी और यातायात संबंधी जानकारी जो अपने लोगों के कैयाम साझा कैलन जानकारी और कैयाम आजुक नमस्कार मिथिला के डेग में हमारे एक कदम और आगा बढ़ाबे छी और सबसे पहले एक फिल्म संगीत के हमारे आनंद ले छी। ओकरा बाद फिर श्रोता लोकन से हमारे बातचीत करब, मुदा ताहि से पहले सुनै छी एकटा सुंदर फिल्म संगीत।

0: कार्यक्रम में हमारा संग जुड़ रहा है स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक कुमार। आओ हम लोग हिंदा से बात करब जो अखन हम लोग 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। एक स्वतंत्रता सप्ताह के रूप में से वो पूरे राष्ट्र में मनाओल जा रहा है। ये हर घर तिरंगा अभियान जो सरकार के द्वारा चलाओल जा रहा है, एकर सामरिक की महत्व पड़ते समाज पर आवे वाला पीढ़ी पर, अब विषय में हम लोग हिंदा से बात करब। आकाशवाणी दरभंगा परिवार में अपने का स्वागत है। अपने हमारा श्रोता के बतबियन जे हर घर तिरंगा अभियान जे चलाओल जा रहा है, एकर सामरिक असर आवे वाला भविष्य पर आवे वाला पीढ़ी पर की पड़ते।
1: सबसे पहले अहाँ तमाम श्रोता के 80वां स्वतंत्रता दिवस के ढेर शुभकामना बधाई। निश्चित रूप से जे हर घर तिरंगा अभियान जे चल रहल छै, ऐसे देशभक्ति के भावना,
0: राष्ट्र प्रेम
1: जी, खास विशेष कर युवा पीढ़ी में एक जागृत हेतु। चूंकि जखन राष्ट्र भावना दिल में छै आ ओकरा बाहर निकालते तो निश्चित रूप से ओ जे भाव छै, ओ जे शरीर में ऊर्जा छै, ओ कतौ ने कतौ राष्ट्र हित में ओ काम एतै। तो ई अभियान हर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा, हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा, ई अपना आप में देशभक्ति के प्रति, राष्ट्र प्रेम के प्रति गौरवान्वित करै छै और राष्ट्र के देश के प्रति अपन सर्वोच्च निछावर के लेल उत्कृष्ट योगदान दै के लेल ई अभियान भीतर से आदमी के झकझोरै छै। एगो देश भावना के, देश भक्ति के भावना के एगो भाव प्रकट करै छै।
0: देखो दीपक जी, हमरा एकटा बहुत साधारण सा प्रश्न है अपने सँ, जे 365 दिन बनाम एक दिन या दू दिन, की ई एक दिन और ये मान लीजिए साप्ताहिक कार्यक्रम चल रहा है, एक सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलते, लेकिन ओकरा बाद फिर ई जे उल्लास है, ई जे उमंग है, वो कतौ ने कतौ शिथिल पड़ जाए। ई उल्लास निरंतरता ई में कना होते, निरंतरता लोग के अपना राष्ट्र के प्रति श्रद्धा कोना बनल रहते, एकरा लेल केहन कदम उठाएल जा सके छे?
1: ई साप्ताहिक कार्यक्रम के जे उद्देश्य छै
0: जी,
1: ई निश्चित रूप से निरंतरता के वास्ते छै। जे राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति के जे भावना छै, ओ केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी के विशेष अवसर पर, राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर नहीं जागृत हेतै। ई अभियान के माध्यम से विस्तृत चर्चा हेतै उद्देश्य के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में, भक्ति के बारे में। तो ई एक सप्ताह के कार्यक्रम जखन घर घर ई अभियान चलते, हर व्यक्ति ऐसे जुड़ते, तो ई एगो बड़ा स्वरूप लेते। चूंकि जखन आज़ादी भेटले देश के, तो ई आज़ादी एक दिन में नहीं भेटल छे, आइ के लेल बरसों स्वतंत्रता सेनानी
0: बरसों
1: संघर्ष और लड़ाई रहल छे
0: जी।
1: तो आज़ादी ई बहुत बड़का अधिकार छे, आज़ादी से बढ़कर किछो नहीं छे, और ओकरा 15 अगस्त और 26 जनवरी नहीं, ई हर दिन अपना अंदर
0: एकरा दैनिक जीवन दिनचर्या में शामिल करबाक आवश्यकता छे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखियो अगर राष्ट्र सुरक्षित छै, देश सुरक्षित छै, तहन आई देश में रहे वाला हर एक नागरिक सुरक्षित छै। आई जे सीमा पर जे सैनिक हमेशा ड्यूटी दे कर देश के लोग के सुरक्षा प्रदान करै छै, ओ राष्ट्रभक्ति, ओ देशभक्ति के जज्बा ओ सैनिक के प्रति समर्पित छै, तो ओ सैनिक ड्यूटी 365 दिन करै छै। आ राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, सैनिक के प्रति हमरा मन में 365 दिन भाव जागरूक हेबाक चाही। हमरा लगैए ई साप्ताहिक जे प्रोग्राम छै हर घर तिरंगा, एकर उद्देश्य इएह छै।
0: देखो बड़ा सुंदर बात अपने बीच में एकटा कहलहुँ, जे सैनिक जे हमर रक्षा करै छथि बॉर्डर पर, अहाँ हुनका जीवनसँ अगर सिखबाक चीज भेटै छै किछु, तऽ ई देखबै जखन ओ अपन सेवा कालमे रहै छथि तऽ ईमानदारीसँ अपन ड्यूटी ओ सरहद पर करै छथि, मुदा जखन ओ सेवानिवृत्त भऽ कऽ वापस अपन सामाजिक जीवनमे आबै छथि तऽ हुनकर आचरण, हुनकर व्यवहार, विचार, शैली, ओहि सबमेसँ

तऽ कहिया मखन हमरा लोकनि फिल्म संगीत सुनै छलहुँ हैं आओर आओ आजुक नमस्कार मिथिलाकंकमे हमरा लोकनि एकटा ई विशेष कार्यक्रम सुनि रहल छी, हर घर तिरंगा अभियान।

0: राष्ट्रभक्त के खुशबू जे छे से आबत रहे छे। तो श्रोता लोकन अखन अपना लोकन दीपक झा के सुन रहल छलौ हैं जे कोना राष्ट्र प्रथम के छे से भाव जागृत हेतै। आजुक अंक में बसतवे, फिर अगला अंक में अपना लोकन से हेतै भेंट। तब तक के लेल दिल जाज्ञा, नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, और हम लोग बात कर रहे थे कि देश में मन में हमारे जो देशभक्ति है वो हमेशा होना चाहिए, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए नहीं, जो हमारी जो भागीदारी है हमारे देश के प्रति, देश के लिए, वो हम सबको ख़ास तौर पे युवाओं के अंदर में वो देश प्रेम होना चाहिए। भेदभाव, ऊंच नीच सारी चीज़ों को भुलाकर हम सब भारतीय हैं, और हम सब भारतीयों को देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सरकार के प्रति, सरकार के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने पर ही हमारा देश आगे बढ़ेगा और हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे।
2: देखियो, निश्चित तौर पर कहिए, अखन जो भारत के जो वैश्विक जनसंख्या जिनमें सबसे बेसी युवा वर्ग है, तो सबसे पहले बात जो हम सब भारतीय छी और एकता हमार ताकत है, और वही ताकत के बदौलत आज़ादी से पूर्व से लोग आज़ादी के अखन तक हमारा लोग पूरे विश्व में धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत आगा हम अलूँ हैं। आई अगर अहाँ 1947 के भारत के तुलना 2026 के भारत के तुलना करबे तो अंदाजा और फर्क अहाँ के सीधा सीधी नज़र आबि रहल अछि। ओहिमे कतौ ने कतौ हमर युवा शक्ति के सबसे पैघ योगदान छनि, और आइयो भारत अखन युवा भारत थिक। और अहाँ याद करियौ जे युवा के लेल जे शब्द के माध्यम से जे प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद कहने रहथिन, ओहि थ्योरी के, ओहि नीति के, ओहि नियम के अपना जीवन में, कर्म में ओकरा आत्मसात करय पड़तै। और भारत के जे अखन लोग कहि रहल छथिन जे हमरा विश्वगुरु बनाबक अछि, आइ भारत के समक्ष कोनो कोनो राष्ट्र जे छै से ओकरा नीचा दिखाबक प्रयास कऽ रहल छै विदेश नीति के अंतर्गत, लेकिन भारत आइ ओकर करारा जवाब दऽ रहल छै। और भारत आइ कतौ ने कतौ, चाहे ओ खेल के क्षेत्र होय, राजनीति के क्षेत्र होय, शिक्षा के क्षेत्र होय, अंतरिक्ष के क्षेत्र होय, या चाहे लड़ाकू विमान बनाबक के क्षेत्र होय, रक्षा के क्षेत्र होय, सब क्षेत्र में विश्व के जे सबसँ अग्रणी पंक्ति में ठाढ़ सबसँ पैघ राष्ट्र छथि, तिनका खुल्लम खुल्ला अगर केओ चैलेंज करबाक लेल आइ पूरे विश्व में तैयार छियै, तो मात्र एकटा भारतवर्ष छियै जकरा कि समस्त विश्व आइ टकटकी लगा कऽ देखने छै कि आगा कदम भारत के की हुआ वाला छै। तऽ कतौ ने कतौ भारतीय के परिवेश और भारत के जे आंतरिक शक्ति छै ओ सबसँ पैघ ताकत इएह छै जे अनेकता में एकता भारत के सदिना महान बनाबैत रहलैए, और आगा वाला भविष्य में अनेकता में एकता इएह शब्द ओकरा फेर महान बनौते। और हम समस्त भारतवासी के अपील करै छियनि कि भारतवर्ष वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर चलै छै, भारत देश की नीति सबके सुखमय जीवन के कामना करै छै, वही कामना के आधार बना कर हमरा लोकन के भारत के एक बेर फिर सब गोटे के मिलजुल कर विश्व के अग्रणी पंक्ति में ठाड़ करबाक लेल अपन अपन 100% योगदान देबाक चाहिए।
1: जी हाँ बिल्कुल, और इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे भारत में जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, वो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ लोकतंत्र के हिसाब से हमारा देश चलता है, जहाँ हर किसी के लिए, अमीर गरीब, ऊंच नीच छोटे बड़े, सबके लिए वो सम्मान व अधिकार दिया गया है, जहाँ हम सबको एक साथ, एक एकता के साथ देश को आगे बढ़ाना है। और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है, जैसे हम युवाओं के लिए ख़ास तौर पर कि जो मतदान है उसमें हमें भाग लेना चाहिए, जो हमारी
2: राष्ट्रहित से जुड़ल जे कोनो काज छै में हमरा लोकन के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेबा चाहिए,
1: बिल्कुल उसमें हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारा हमारे समाज का एक अच्छा निर्माण होगा। जहां पर भी कहीं गलत है या लोकतंत्र के हिसाब से जो चीज नहीं हो रहा है, उसके हिसाब से हमें आवाज उठाना चाहिए। हमारा जो अधिकार है, चाहे वो सरकार के विरुद्ध ही हो, लेकिन उसको बहुत ही शांतिपूर्वक हम उससे, सरकार से बात कर सकते हैं कि हमारा ये अधिकार है लोकतंत्र के हिसाब से, तभी हमारा लोकतंत्र और भी खूबसूरत होगा और भी अच्छा होगा।
2: देखियो, राजतंत्र के बाद लोकतंत्र एलै। राजतंत्र में की होइ छलै तऽ वंशावली चलै छलै, पब्लिक के पूछ नहि होइ छलै, राजा निर्णय स्वयं लै छलखिन। लेकिन जखन लोकतंत्र एलै तऽ लोक अपना मन मुताबिक अपन सरकार चुनै छलखिन, ओहू सरकार के संवैधानिक तौर पर अहाँके विरोध करबाके अवसर दे देल जाइ छै। लेकिन हमरा ओहिठमन आब नवका सॉरी हमरा ओहिठमन आब की भऽ गेलै कहिया कि आइकाल्हि के किछु मानसिकता लोक के बदल गेलनि हैं, और वो विरोध करबा के मतलब बुझि गेलै छथिन जे सीधे आब धियापुता नहीं हलते, हे हमरा चिन्ह नहीं छै, हम कपार फोड़ देबो। भारतीय संविधान, लोकतंत्र के संविधान

के विरोध करवा के पूरा अधिकार दैत अछि, लेकिन कतौ व्यक्ति के व्यक्ति सँ विरोध करवा के अधिकार नहि दै छै, नीति के विरोध करवा के अधिकार दै छै। जे अहाँ के ई नीति राष्ट्रहित में नहि अछि तैं हम अहाँ के समर्थन नहि करब, लेकिन ई नीति अहाँ के राष्ट्रहित में अछि तऽ हम अहाँ के समर्थन करब। लोकतंत्र के सबसँ पैघ गहना, सबसँ सुन्दर गहना इएह छै। मुदा एहिठमन होइत छै कि वर्तमान परिवेश में हमरा विरोध करबाक अधिकार संवैधानिक तौर पर भेट गेल तऽ ओहि विरोध करबा के आर में पत्थरबाजी, नारेबाजी, अपशब्द के, अकर्मण्यता के परिचय देनाइ, ई कतौ ने कतौ लोकतंत्र पर हमला अछि, ई कतौ ने कतौ ओहि संविधान पर हमला अछि जाहि संविधान के अहाँ मानि कऽ कहै छियै कि हम भारत के नागरिक छी और हमर ई सशक्त संविधान अछि, लेकिन जखन ओहि संविधान के पालन करबाक समय अबै छै तखन अहाँ बिसरि जाइ छियै, तखन अहाँ एकटा मात्र और मात्र विरोधी भऽ कऽ ठाढ़ रहै छियै। भारतीय संविधान में विरोधी के सबसँ पैघ उच्च स्थान देल गेल छै। अपना मिथिला के क्षेत्र में कहियामे कहल जाइ छलै कि अगर दुश्मन दरवाजा पर चलि आबै तऽ ओकरा ऊँच पीढ़ी पर बैसाबी, ओकरा ऊँच कुर्सी पर बैसाबी, जाहि संविधान में मानव के सम्मान के लेल, आत्मसम्मान के लेल अतेक रास चीज लिखल होय, ओहि संविधान के लोक गलत दृष्टिकोण सँ देखि कऽ गलत विरोध करथिन तऽ कतौ ने कतौ संविधान के हृदय जे छै, संविधान के आत्मा जे छै, से ओतौ कष्ट होइ छै आत्मा के, ओ कानै छै आत्मा। ताहि लऽ कऽ हम समस्त भारतवर्ष के नागरिक सँ, ई आकाशवाणी दरभंगा परिवार सँ ही अपील करै छियनि कि विरोध अहाँ करू। विरोध करबा के मर्यादा छै हमरा ओहिठमन। कहियाम हम अपने के बताबी जे हमरा ओहिठम नदी, जंगल, पेड़, पौधा सब के पूजा करबा के परंपरा रहलै है। गंगा नदी बगल में छथि, अपना मिथिला क्षेत्र में गंगा नदी पड़ै छथि। अहाँ देखैत होबै जे गंगा नदी में स्नान करबा के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन जाय छथि, लेकिन अखन बारिश के महीना छै, एहि महीना में बाढ़ि आबि जाइ छै। अहाँ जाकर देखियो जे गंगा कात में जे हमर बस्ती बसल छै ओहि में लोक के घर में जे गंगा चलि गेलखिन हैं तो गंगा के पानि के लोक के लोक हाथ उपछि उपछि के भगाबै छथिन जे हमरा घर में अहाँ नहीं आओ। और एक समय एहन होइ छै जे वएह बोतल में भर के गंगा जल अहाँ घर में आनि कऽ रखै छी, तऽ गंगा जहन मर्यादा के उल्लंघन करै छथिन तऽ गंगा के लोक हाथ से उपछि के बाहर कऽ दै छथिन। तेनाहिते संविधानों के एकटा मर्यादा छै, ओहि मर्यादा के उल्लंघन करबाक अधिकार संविधान कतौ नहि दै छै। और आजुक परिवेश में लोक संविधान के जतेक मर्यादा के उल्लंघन करै छथिन ओ साफ सड़क पर नजर आबै छै। एहि चीज सँ हमरा लोकन के बचबाक चाही। हम केहन व्यक्ति छी जे अपने वोट दऽ कऽ अपने चुनल सरकार के प्रति हम विरोध करै छी, ई केकर विरोध छै? ई अपना आप के विरोध छै? तऽ संविधान किछु बुझऽ के चीज छै, किछु बुझाबऽ के चीज छै। एहि पर चर्चा हमरा लोकनि आगाँ सेहो करब, मुदा ताहिसँ पहिले हमरा लोकनि एकटा आओर फिल्म संगीत सुनै छी, ओकरा बाद फेर श्रोता लोकनि सँ हमरा लोकनि चर्चा करब।

0: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। श्रोताओं, सिर दर्द एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई बार इसके लक्षण असामान्य, अत्यंत कष्टप्रद और घातक भी हो सकते हैं। सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज, यही है आकाशवाणी दरभंगा के फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी के अगले अंक का विषय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर भुवन जी झा, विभागाध्यक्ष न्यूरो सर्जन सर्जरी विभाग DMCH दरभंगा। प्रसारण के दौरान कार्यक्रम से जुड़ने के लिए फ़ोन नंबर होंगे 0627222241। दूसरा नंबर है 9430029353। समय याद रखें, रविवार यानी आज 16 अगस्त 2026 दिन के 11 बजे। सूचना समाप्त हुआ।
1: कहियाम आजुक नमस्कार मिथिलांक हम लोग के घड़ी के स्थिति के किछ और इशारा कर रहा है तो आओ गत सप्ताह की गतिविधियां के चाइल्डलाइन ये प्रस्तुत कर रहा है। कहियाम
0: संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी। लोकसभा पहले ही इसे विधेयक को पारित कर चुकी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को

0: सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस को गर्व और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों को एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और जेल विभाग के वार्डर को मेट्रो पदों की सीधी भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी। गृह मंत्रालय ने के अंतर्गत भारत ने रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय में जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूचित से संबंधित प्रश्नावली अधिसूची जारी कर दी है। इसमें 40 सवाल पूछे जाएंगे जिसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल, बैंक खाता, धर्म, जाति से संबंधित सवाल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने लाइबेरिया के विदेशी मंत्री के बीच में द्विपक्षीय संबंधी बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े सपने देखने का आग्रह किया। आकाशवाणी मुख्यालय में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह महानिदेशक राजीव कुमार जैन की राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 288 रन बना लिए। ऋषभ पंत 27 और देवेंद्र पाडिकर 131 रन बनाकर खेल रहे हैं।
1: तो ई चल गत सप्ताह के गतिविधियां जे कि श्रोता लोकन से जानकारी साझा कर कहिया और देखू आज नमस्कार मिथिला अंक में हम अखन के आप समय भेल जा रहा है श्रोता लोकन से विदा लेबक। तो श्रोता लोकन के अधर पर मुस्कान हमेशा कायम रहन यही शब्दक संग आजुक नमस्कार मिथिला अंक सन लोकन लै छी विदा।
0: नमस्कार मिथिला।

0: नमस्कार मिथिला, अभी आप हमारा यह कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया।
1: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहिल किरण संग फुलाए लगैत अछि, फूल प्रकृति में घुराए लगैत अछि। ऊर्जा आबा वाला काल्हि लेल
2: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन।
3: आ मनुख लेल तो बुझो अत्यंत जरूरी, पानि बुन्नी नहीं है तो खेती नहीं है, आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है तो हमरा लोकन खाएब की।
4: मामा बने जाने बाबा देने ज्यादा।
5: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी दरभंगा।
6: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।
7: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
5: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की। कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,

0: स्याह तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग, बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,
2: जिंदगी है तो है समस्याएं, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से।
3: आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
4: बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक देशों से होकर गुजरी सूर्य पथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में युवा शक्ति की भूमिका पर बल दिया है। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कल नई दिल्ली में लाल किला पर ध्वजारोहण के बाद उन्होंने कहा कि भारत आज बहुत बड़े सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में देश के करोड़ों नागरिकों ने संकल्प और समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में कई गुना उत्पादन बढ़ा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की युवा शक्ति एआई के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है।
7: हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था। एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
6: प्रतियोगी परीक्षाओं में समाज के हर वर्ग की उपस्थिति को सुगम बनाने के लिए श्री मोदी ने कहा कि मध्यम वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए सरकार निशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था कर रही है।
7: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
6: राष्ट्र निर्माण में बेटियों के योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटियां अब हर क्षेत्र में सबसे आगे दिख रही हैं। उन्होंने लोगों से महिलाओं के सामर्थ्य के पुजारी बनने का आह्वान किया। श्री मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण विधेयक पारित कराने में सहयोग की अपील की।
7: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता

0: आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
1: खेलों में भारत के बढ़ते प्रतिनिधित्व पर श्री मोदी ने कहा कि जो खेले वो खिले मंत्र के अंतर्गत भारत खेलों की दुनिया में अपनी विशेष पहचान बना रहा है।
0: जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, जिन विधाओं में भारत क्वालिफाई नहीं करता है, भारत उस पर बल देगा। और इसके लिए हम टैलेंट हंट का एक अभियान भी चलाना चाहते हैं। 5 से 15 उम्र के बच्चों में खेल प्रतिभा ढूंढने के लिए गांव गांव शहर शहर स्कूल स्कूल एक टैलेंट हंट का अभियान चलाया जाएगा। बच्चों की प्रतिभा को देखा जाएगा और फिर उनको स्पेशल ट्रेनिंग दे करके देश के लिए खेलने वाले अच्छे खिलाड़ी बनाए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने पर ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच व्यक्तिगत संबंधों के कारण भारत अमेरिका संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच मित्रता इस मजबूत और दूरदर्शी साझेदारी की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देने वाले वैश्विक नेताओं का आभार व्यक्त किया है। बधाई देने वालों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी शामिल हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह को धन्यवाद देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए दोनों देश मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भूटान के प्रधानमंत्री छेरिन तोब्गे की शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत भूटान के साथ विशेष और मजबूत साझेदारी को बहुत महत्व देता है। पहली बार आयोजित सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले कल संपन्न हो गई। ये रिले फिजी से शुरू होकर अमेरिका तक 54 देशों और कई क्षेत्रों से होकर गुजरी। ये पहल हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित की गई थी। फिजी में भारतीय उच्चायोग से शुरू हुई इस रिले में एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक तिरंगे का संदेश दुनिया भर में पहुंचाया गया। रिले का समापन सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास में हुआ। इस दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित कर दिए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे।
2: छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति डिस्क्लोजर स्कीम एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है, जो फाइनेंस एक्ट 2026 के चैप्टर 4 में शामिल है। यह योजना करदाता को एक तय कर का भुगतान करके कुछ ऐसी विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की जानकारी देने की सुविधा देती है, जिनका पहले खुलासा नहीं किया गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं में जागरूकता बढ़ाने की और स्कीम को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के अपने लगातार प्रयासों के तहत इस स्कीम को और इसके नियमों पर एक विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी किया है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति चेन्नई, चेंगलपट्टू, तिरुवरूर और तंजावुर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। श्री राधाकृष्णन आज चेंगलपट्टू में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के अलवर में सरस डेयरी परिसर के नए संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। वे विभिन्न दुग्ध संघों के डेयरी प्रसंस्करण और पशु आहार संयंत्रों का भी उद्घाटन करेंगे। इस दौरान राजस्थान के 17 जिलों में 6,262 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अभ्यर्थियों का आंदोलन और तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने विरोध के नए कार्यक्रमों की घोषणा की है।
3: JPSC JSSC आंदोलन के अगले चरण के तहत आज झारखंड के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। रांची में पुतला दहन कार्यक्रम अल्बर्ट टिक्का चौक पर आयोजित किया जाएगा। छात्र JPSC की 11वीं से 13वीं सिविल

0: सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान आज से 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस वर्ष उद्यान में सजावटी ग्रीष्मकालीन मौसमी पुष्पों के साथ देशज और स्थानीय प्रजातियों का विशाल संग्रह प्रदर्शित किया गया है। ये पुष्प भारत की समृद्ध पुष्प विरासत को दर्शाने के साथ साथ उद्यान की जैव विविधता को भी समृद्ध करते हैं। अमृत उद्यान आगंतुकों के लिए मंगलवार से रविवार तक खुला रहेगा। अमृत उद्यान में प्रवेश निःशुल्क है और आगंतुक उद्यान में भ्रमण के लिए राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन से अमृत उद्यान के प्रवेश द्वार तक शटल सेवा उपलब्ध रहेगी। यह सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रत्येक 30 मिनट के अंतराल पर संचालित होगी। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना का उद्देश्य राज्य भर के पात्र नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध कराना है।
3: लगभग 15 लाख परिवारों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का नगद उपचार शामिल है। आयुष्मान भारत कार्ड प्रत्येक पात्र परिवार के सदस्य को निशुल्क जारी किए जाएंगे। राज्य के कुल 1307 निजी और 627 सरकारी अस्पताल इस योजना के अंतर्गत उपचार प्रदान करेंगे। लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले से लेकर छुट्टी मिलने के 15 दिन बाद तक योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार होगा। आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र न होने वालों के लिए आज मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत लगभग 80 लाख परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: उड़ीसा की बैतरानी नदी में बाढ़ से राज्य के उत्तरी क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित है। एक रिपोर्ट।
4: उत्तरी ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है, क्योंकि बैतरणी नदी में बाढ़ की चौथी लहर आ गई है। भद्रक जिले के अक्वापदा में नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर को पार कर गई है और आज सुबह 7 बजे तक 18.38 मीटर पर बह रही थी। जाजपुर जिले के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं, जबकि भद्रक जिले के कई गाँव अलग थलग पड़ गए हैं। राजघाट पर सालंदी नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है, जहाँ खतरे का स्तर 17 फीट है और नदी 16.50 फीट पर बह रही थी। गेंगुटी और कोकिला नदियां भी उफान पर है। IMD ने मयूरभंज और बालेश्वर के लिए रेड वार्निंग और 6 जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मंगलवार तक भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। शतरंज में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने लगातार दूसरी बार ई स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब बरकरार रखा है। फ्रांस के पेरिस में खेले गए फाइनल में कार्लसन ने बेलारूस के ग्रैंडमास्टर डेनिस लाजाविक को 2-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद मुकेश। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, शक्ति की सप्तधारा का आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाल किला के प्राचीर से कहा, 7 शक्तियां भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, 80 पर देश जुबां पर युवा। पंजाब केसरी की सुर्खी है, लाल किला से वंदे मातरम की गूंज के बीच मोदी ने राष्ट्रगीत गाया, फिर तिरंगा लहराया। आम्बेडकर, नेहरू, पटेल और मुखर्जी का योगदान याद किया। जनसत्ता के अनुसार दिमागी नक्सल अराजकता और हिंसा फैलाने के रास्ते खोज रहे हैं। दैनिक जागरण के अनुसार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला से प्रधानमंत्री मोदी का मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग, 1 करोड़ युवाओं को AI प्रशिक्षण का ऐलान, कहा महिलाओं को 33% आरक्षण के साथ आए राजनीतिक दल। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री का लाल किला से संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद को खत्म करने को अपने शासन की बड़ी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए दिमागी नक्सली शब्द का इस्तेमाल कर कुछ ताकतों पर करारी चोट की है। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, बस्तर के 93 गांवों में पहली बार दिखी

0: तिरंगे की ताकत, नक्सल प्रभावित रहे इन गांवों में आजादी के बाद स्वतंत्रता दिवस का सार्वजनिक आयोजन। दैनिक जागरण के अनुसार संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, युवा कौशल के उचित उपयोग से देश को हो सकता है भारी लाभ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश के नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा। अगले एक वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 50 से अधिक भारतीय मिशनों से होकर गुजरी सूर्यपथ तिरंगा वैश्विक रिले सैन फ्रांसिस्को में संपन्न। सरकार ने छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति की जानकारी देने वाली योजना शुरू की। और दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स विश्व कप शतरंज का खिताब बरकरार रखा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges all parties to support implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies to strengthen women's contribution in shaping India's policies. Prime Minister announces free online coaching for competitive exams aspirants to ease financial burden on their families. 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapath Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has announced to provide free online coaching for students belonging to poor and middle-class families. In his address to the nation, Mr. Modi said the move is aimed at easing the financial burden of aspirants preparing for competitive exams. He said this will save thousands of crore rupees of middle-class families in coaching classes.
3: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
2: The Prime Minister said that the government has decided that 1 crore youth will be given training in AI skilling in the next 1 year. He said this will enable them to take the lead in the global AI sector. Mr. Modi said the country has to focus on 3 things, cost, quality and skill.
3: हमने पिछले दिनों AI Impact Summit किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूँ। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
2: The Prime Minister said today India is making its place in the world of sports. Mr. Modi said in 2030, India will host the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi has urged all parties to support the implementation of women's reservation in Parliament and state assemblies without making it a political fight. In his Independence Day address to the nation from the ramparts of the Red Fort, Mr. Modi asked them to step forward to honour women and ensure that country's women secure 33% representation in the legislative assemblies and the Lok Sabha as soon as possible. He said that women should be given the opportunity to contribute to shaping India's policies.
3: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूँ, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
2: The first of its kind Suryapath Tiranga Global Relay concluded yesterday, completing its journey from Fiji in the east to the United States in the west, across 54 countries and multiple time zones. More from our correspondent.
4: External Affairs Ministry said that the Suryapath Tiranga initiative was celebrated as part of the Har Ghar Tiranga campaign launched from the High Commission of India in Fiji.

0: parents to ease financial burden on their families, 1 crore youths to be trained in artificial intelligence in next 1 year. Suryapat Tiranga, first of its kind campaign involving Indian missions in over 50 countries, concludes in San Francisco. Government rolls out foreign asset disclosure scheme for small taxpayers. And in chess, world number one Magnus Carlsen retains eSports World Cup title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में ख्वातीन के लिए रिजर्वेशन के निफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख्वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके। अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्यपथ तिरंगा, जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर एक मागनस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का एजाज बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मुल्क ने कल अपना 80वां योम आज़ादी मनाया। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौमी परचम लहराया और कई अहम ऐलान किए। कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पिछले 12 साल के दौरान मुल्क के करोड़ों शहरियों ने अपने पुख्ता अज़्म और लगन के जरिए मुल्क को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए भरपूर कोशिश की।
2: कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब अपने सपनों, अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। बड़े सपने हमारी सोच को विस्तार देते हैं, हमारे संकल्प दृढ़ होने चाहिए। जब संकल्प दृढ़ होता है तो कठिनाइयों से, आपदाओं के बीच से रास्ते निकालने का सामर्थ्य अपने आप उभर करके आता है।
1: विकसित भारत के लिए नौजवानों और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने ऐलान किया कि गरीब और मतवसित तबके के खानदानों से ताल्लुक रखने वाले तलबा को मुख्तलिफ सरकारी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हुकूमत ने अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की महारत की तरबियत फराहम करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गरीब और मुतवसित तबके के कुनबों से ताल्लुक रखने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम करने का ऐलान किया है। मुल्क के नाम अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि इस इकदाम का मकसद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए तैयारी करने वाले उम्मीदवारों पर बड़े पैमाने पर मालियाती बोझ को कम करना है। उन्होंने कहा कि इस कदम से मुतवसित तबके के कुनबे को कोचिंग क्लासों में हजारों करोड़ रुपए की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स है, उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI से हुनरमंदी की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी मदद से नौजवान आलमी AI शोबे में कायदाना रोल अदा कर सकेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को 3 चीज़ों, लागत, मेयार और हुनर पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है।
2: हमने पिछले दिनों AI इम्पैक्ट समिट किया था। AI का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं, हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे।
1: वज़ीर आज़म ने कहा कि आज भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि साल 2030 में भारत दौलत मुश्तरका खेलों की मेजबानी करेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों पर जोर दिया है कि वो इसे सियासी मसला मनाए बगैर पार्लियामेंट और रियासती असेंबलियों में خواتین

0: 18 अगस्त तक मुस्बत कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी आज रियासत में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आगाज करेंगे। इस इकदाम का मकसद रियासत में अहल शहरियों के लिए मियारी हिफ्जान सेहत की बिला रुकावट फराहमी को यकीनी बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मगरबी बंगाल इस स्कीम को नाफिज करने वाली 36वीं रियासत बन जाएगी। इस स्कीम से 1.5 करोड़ कुनबों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है और फी साल फी कुनबा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज फराहम होगा। हर अहल कुनबे के रुकन को आयुष्मान भारत कार्ड मुफ्त जारी किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत रियासत के 1307 प्राइवेट और 627 सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। मुस्तफिदीन अस्पताल में दाखिले से 3 दिन पहले से लेकर अस्पताल से डिस्चार्ज के 15 दिन बाद तक इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकेंगे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: इम्तिहानात मुनक्किद करने वाली कौमी एजेंसी NTA आज UGC नेट जून 2026, CSIR नेट और PhD प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ICAR कुल हिंद दाखिला इम्तिहान और कुल हिंद मुसाबकती इम्तिहानात के लिए आरजी आंसर की जारी करेगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर NTA ने बताया कि आरजी आंसर की उसकी सरकारी वेबसाइट पर शाई की जाएगी। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो सिर्फ NTA की सरकारी इत्तला पर ही एतमाद करें। अमृत उद्यान आज से अगले महीने की 15 तारीख तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा। ये बाग सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि इसमें आखिरी दाखिला शाम 5 बजे तक होगा। देखभाल के लिए हर पीर को बाग बंद रहेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
0: बाग की सैर के दौरान कई अहम मकामात देखने को मिलेंगे, जिनमें बालवाटिका, पुरुमेरिया गार्डन, बैनियन ग्रोव, पोनसाई गार्डन, बैबलिंग ब्रुक्स, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं। मौसम गर्मा के सालाना एडिशन की एक बड़ी कशिश मकामी और देसी फूलदार पौधे हैं, जो अपनी दिलकश रंगारंगी और माहौलियाती अहमियत के लिए मशहूर हैं। देसी पौधों के मजमू में बालसम, गुल मेहंदी और नागफना शामिल है। ये पौधे भारत के भरपूर नबाताती विरासत की अक्कासी करने के साथ साथ बागात में हयाती तनावों को भी फरोग देते हैं। नई दिल्ली से नितिका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
1: भारतीय मौसमियात के महकमे IMD ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा के इलाके, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद हिस्सों में इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि शुमाल मशरकी भारत के बाज़ इलाकों छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, झारखंड, कोकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दिन में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। शतरंज में आलमी नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कारलसन ने फ्रांस के शहर पेरिस में बेलारूस के ग्रैंड मास्टर डेनिस लाजविक को 2-0 से शिकस्त देकर लगातार दूसरी मर्तबा ई स्पोर्ट्स आलमी कप का खिताब जीत लिया है। टीम लिक्विड की नुमाइंदगी करने वाले मैक्स कारलसन इस पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहे। हॉकी में भारत ने कल नीदरलैंड्स के एमस्टिलविन में FIH हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप डी के मैच में वेल्स को 1-3 से हराया। भारत की जानिब से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 2 गोल जबकि संजय राणा ने 1 गोल किया। वेल्स की जानिब से वाहिद गोल सैम वेल्श ने किया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आज़ादी की तकरीबात बड़े जोश व खरोश से मनाए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। राजधानी दिल्ली में तारीखी लाल किले की फसील से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 80वें यौम आज़ादी के मौके पर तिरंगा फहराया और कौम से खिताब करते हुए कहा कि आज भारत जोश जज्बे के साथ आगे बढ़ रहा है। युवा शक्ति और नई टेक्नोलॉजी की मदद से 2047 तक विकसित भारत बनाने के हदफ पर जोर दिया। आलमी रहनुमाओं ने भारत की यौम आज़ादी पर मुबारकबाद दी और जमहूरी सफर में भारत के बढ़ते हुए रोल की सताइश की। इस खबर को आज के सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। अरुणाचल प्रदेश में सैलाब और मिट्टी के तोड़े खिसकने की खबर को भी अखबारात ने नुमाया किया है।
1: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट और रियासती असम्बलियों में ख़वातीन के लिए रिजर्वेशन के नफाज की हिमायत करने की अपील की है, ताकि भारत की पॉलिसी साजी में ख़वातीन के तआवुन को मजबूत किया जा सके। वज़ीर आज़म ने मुसाबकती इम्तहानात की तैयारी करने वाले तलबा के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग का ऐलान किया है, ताकि उनके कुनबों पर माली बोझ कम हो सके।

0: अगले एक साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनूई ज़हानत AI की तरबियत फराहम की जाएगी। सूर्य पतरंगा जो अपनी नवीयत की पहली मुहिम है और जिसमें 50 से ज्यादा भारतीय सिफारती मिशन शामिल थे, सान फ्रांसिस्को में इख्तिताम पजीर हुई। हुकूमत ने छोटे टैक्स दहिंदगान के लिए गैर मुल्की असासों के इंकशाफ की स्कीम शुरू की है। और शतरंज में आलमी नंबर 1 मैग्नस कार्लसन ने ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रखा है। इसी के साथ आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 483.1 मीटर यानी 621 किलोहर्ट्ज पर, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है, बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस, तो प्लस F और थोड़ा कम है ना, सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट।
3: खाद्य संरक्षा आयुक्त, स्वास्थ्य विभाग बिहार और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: अगर आपके योग्यता के अनुकूल हो नौकरियों का अवसर, तो आप क्या करेंगे?
5: मैं तो तुरंत अप्लाई करूंगा।
4: और अगर ये मौके हो बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिटेल और अन्य संबद्ध क्षेत्रों में,
5: फिर तो ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा।
4: तो सुन लीजिए, बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग बिहार कौशल विकास मिशन लेकर आ रहा है रोजगार मेला 2026, जहां है लगभग 20,000 रिक्तियां। दिनांक 19 से 23 अगस्त 2026, स्थान ज्ञान भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना।
5: रोजगार है तैयार, अपने भविष्य को दे आकार।
4: पंजीकरण के लिए detjob.bihar.gov.in/registration पर जाएं और आज ही अपना पंजीकरण करें। बिना पूर्व पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आप इस मेले में भाग नहीं ले सकते हैं। साथ अपने निर्धारित तिथि और समय पर ही साक्षात्कार के लिए आएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1-800-296-5656 पर संपर्क करें।
5: आपकी सफलता हमारी प्रतिबद्धता। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। इससे देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया जाएगा गठन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल आज राज्य के दो दिवसीय दौरे पर पटना आ रहा है। और राज्य सरकार ने अब 50 लाख से अधिक लागत वाले मकानों और दुकानों से ही उपकर सेस लेने का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने के मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई न बनाएं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जल्द से जल्द 33% प्रतिनिधित्व मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की नीतियों को आकार देने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: जल्द से जल्द हमारी माताओं बहनों को 33% विधानसभा और लोकसभा में उनको प्रतिनिधित्व मिले, ये भारत की नीति घड़तर के अंदर अपना योगदान दे, समय की मांग है। और मैं सभी राजनीतिक दलों से फिर से आग्रह करता हूं, आइए महिला आरक्षण लागू करके महिला सम्मान में आप भी जुड़िए, लेकिन मेरी माताओं बहनों को हक दीजिए।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कल पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की बात कही।
2: परीक्षा कैसे सख्ती से लिया जा सकता है, परीक्षा के गुणवत्ता को कैसे ठीक किया जा सकता है और निष्पक्ष होकर कैसे इसकी पूरी चीजों को स्थापित किया जा सकता है, इसमें एक हाई कोर्ट के जज के नेतृत्व में कमेटी बनाएंगे और जो इस पूरी कमेटी की संरचना बनाकर बिहार के बच्चों के भविष्य का पूरी तरह निष्पक्ष काम करने का काम बिहार की सरकार करेगा। साथ
0: मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने कहा कि राज्य के सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस दीदी की तैनाती की जाएगी। इसकी शुरुआत रक्षाबंधन के दिन से होगी। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहा है। दल में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मेशीस गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल और महानिदेशक आईटी डॉक्टर सीमा खन्ना सहित आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज पहले दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पत्रकारों से बातचीत करने के साथ ही निजी कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वहीं कल नालंदा विश्वविद्यालय के सभागार में मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमार लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के साथ संवाद करेंगे। चुनाव आयुक्त उसी दिन शाम को पटना के ज्ञान भवन में निर्वाचन साक्षरता क्लब के दूसरे चरण के शुभारंभ और ईसीआई नेट पर आयोजित 1 दिवसीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सम्मेलन में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के प्राचार्य एवं संस्थान प्रमुख भाग लेंगे। राज्य में अब भूमि सुधार उप समाहर्ता DCLR प्रत्येक माह कम से कम 4 अंचलों का नियमित और प्रभावी निरीक्षण करेंगे। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने बताया कि राज्य में नव पदस्थापित 47 भूमि सुधार उप समाहर्ताओं का 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण समाप्त हो गया है। उन्होंने अधिकारियों को राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंचल कार्यालयों का निरीक्षण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 जारी कर दिया है। इस योजना के तहत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। यह योजना आज से लागू हो गई है। इसके तहत घोषणा दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। इसके बाद कोई घोषणा दाखिल नहीं की जा सकेगी। यह एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। आयकर विभाग ने योजना को समझने में करदाताओं की मदद के लिए अक्सर पूछे जाने वाले सवाल भी जारी किए हैं। राज्य के रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन में 30 टन क्षमता वाले आधुनिक दूध पाउडर संयंत्र के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री नंद किशोर राम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह ने कल वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया। मंत्री श्री राम ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी किसानों के लिए डेयरी विकास, मत्स्य विकास और पशु संसाधन विकास के क्षेत्र में कार्य कर रही है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के अध्यक्ष श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार के मार्गदर्शन और NDDB के सतत प्रयास एवं तकनीक की सहायता से बिहार दुग्ध सहकारी

शिक्षा के क्षेत्र में लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शाहबाद दुग्ध संघ आरा की इकाई रोहतास डेयरी प्रोजेक्ट डेहरी ऑन सोन के अंतर्गत कार्य करेगी। राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। ऊर्जा विभाग के सचिव अजय यादव ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद राज्य के शेष घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। श्री यादव ने बताया कि स्मार्ट मीटर से बिजली की खपत पर निगरानी रखने की सुविधा मिलेगी। सचिव ने बताया कि मीटर लगाने के मामले में बिहार देश भर में सबसे आगे है। राज्य में कुल 2,22,00,000 उपभोक्ता हैं। इनमें से 92,00,000 उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर से बिजली दी जा रही है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज यूजीसी नेट जून 2026, सीएसआईआर नेट और आईसीएआर की अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगी। पीएचडी कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा की उत्तर कुंजी भी आज जारी की जाएगी। एजेंसी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। एजेंसी ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे केवल एजेंसी की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

Akashwani at 90. समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। राज्य में श्रम संसाधन और प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग ने अब 50 लाख से अधिक खर्च कर मकान दुकान बनाने वालों से ही उपकर शेष वसूलने का निर्णय लिया है। अभी 10 लाख से अधिक खर्च कर दुकान मकान बनाने वालों से 1% शेष लिया जा रहा है। विभाग के अनुसार बिहार भवन और अन्य स्वनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से सभी निजी और सरकारी निर्माण कार्यों के विरुद्ध कुल निर्माण लागत का 1% उपकर शेष की वसूली होती है। नियमानुसार कार्य आरंभ होने के 30 दिनों के अंदर प्रपत्र 1 में सूचनाएं भरकर उपकरण निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष शेष का भुगतान करना होता है। सरकार ने नगर निकायों को यह जिम्मेदारी दी है कि नक्शा पारित करते समय ही शेष की वसूली शुरू कर दें। शेष का भुगतान उपश्रमायुक्त सह उपकर निर्धारण पदाधिकारी के समक्ष किया जा सकेगा। वहीं देरी पर 2% की दर से ब्याज देना होगा। नियोक्ताओं से मिली राशि बोर्ड में जमा की जाएगी। पटना लॉ कॉलेज का 117वां स्थापना दिवस सह सम्मान समारोह आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन करेंगे। प्राचार्य प्रोफेसर योगेंद्र कुमार वर्मा और सहायक प्राध्यापक सह पूर्ववर्ती छात्र संघ के सचिव डॉ. वीरेंद्र पासवान ने बताया कि इसमें न्यायपालिका और विधि जगत की कई प्रमुख हस्तियों के साथ देश भर से पूर्ववर्ती छात्र शामिल हो रहे हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी का वर्ष 2018 में आज ही के दिन निधन हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वर्ष 2015 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

0: दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई सदस्य मौजूद थे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि वे राष्ट्र सेवा, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रखर प्रहरी थे। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनके विचार और आदर्श आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग NCH ने कहा कि होम्योपैथिक डॉक्टर किसी दूसरी चिकित्सा पद्धति की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, हालांकि वे जरूरी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और केंद्र तथा राज्य सरकार की अन्य स्वास्थ्य योजनाओं के तहत काम कर सकते हैं। अररिया के जिलाधिकारी विनोद दुहन ने जनता दरबार में 84 मामलों की सुनवाई के बाद उनके निष्पादन का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जनता दरबार राज्य सरकार के 7 निश्चय 3.0 के अंतर्गत संचालित सबका सम्मान जीवन आसान कार्यक्रम के तहत आयोजित किया गया था। पटना के साइबर थाना ने पीएम मुद्रा लोन समेत अन्य योजनाओं के नाम पर सोशल मीडिया के जरिए साइबर ठगी करने वाले 9 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 22 मोबाइल, 4 सिम कार्ड, 12 ATM कार्ड, 1 लैपटॉप, पासबुक और 51,000 रुपये से अधिक नकद बरामद किए गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा STET में गलत उत्तरों पर निगेटिव मार्किंग नहीं करने का निर्णय लिया है। STET परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिणी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सीवान के रघुनाथपुर में सबसे अधिक 158.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि आज राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य हिस्सों में आंधी बारिश और वज्रपात की आशंका है।
1: दिनांक 16 अगस्त को राज्य के उत्तर पश्चिम भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की बहुत संभावना है एवं राज्य के उत्तर मध्य भाग के जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: राष्ट्रपति भवन स्थित अमृत उद्यान अगले महीने 15 सितंबर तक आम जनता के लिए खोल दिया गया है। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा, जबकि अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रखरखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए EKYC कराने की तिथि बढ़ा दी है। कंपनी के अनुसार अब 23 अगस्त तक उपभोक्ता अपना EKYC करा सकते हैं। इससे पहले EKYC कराने की तिथि आज समाप्त हो रही थी। EKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से EKYC की प्रक्रिया को कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी करने की अपील की है। पटना जिले के बाढ़ स्थित जिला और अपर सत्र न्यायाधीश पंचम की अदालत ने हत्या के एक मामले में 2 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की है। इससे देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया जाएगा गठन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहा है। और राज्य सरकार ने अब 50 लाख से अधिक लागत वाले मकानों और दुकानों से ही उपकर शेष लेने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: गन्ना किसानों के लिए सुनहरा अवसर।
3: गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना के अंतर्गत आधार बीज के उत्पादन पर 70,000 प्रति हेक्टेयर, प्रमाणित बीज उत्पादन पर 70 रुपए प्रति क्विंटल, प्रमाणित एवं सत्यापित बीज के उपयोग पर 260 रुपए से 310 रुपए प्रति क्विंटल तथा सिंगल बर्ड प्लांट।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद और राज्य विधानसभाओं में महिला आरक्षण लागू करने के लिए सभी

0: ऐसी सहयोग की अपील की है। कहा इससे देश की नीति निर्धारण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।
1: एवं जनसंपर्क
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा प्रतियोगी परीक्षाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति का किया जाएगा गठन। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय दल आज राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर पटना आ रहा है और राज्य सरकार ने अब 50 लाख से अधिक लागत वाले मकानों और दुकानों से ही उपकर सेस लेने का फैसला किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।

सामिन, अभी आप समात फरमा रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को। टूटे तारों से फूटे बसंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयले की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। सामीन, जिन सत्रों को भी हमने पढ़ा वो वज़ीर आज़म जहानी अटल बिहारी वाजपेयी के थे, जिनकी वफ़ात आज ही के तारीख में 2018 में हो गई थी। ये मुल्क के 10वें वज़ीर आज़म थे। और आज के इस बज़्म में हम अजीम सियासतदान माया नाज ख़तीब और मुखलिस वतन परस्त भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। सामीन, वो एक सियासतदान ही नहीं थे बल्कि उर्दू और हिंदी ज़ुबान व अदब के दिलदादा, एक हसास दिल रखने वाले बेहतरीन शायर भी थे। आइए अटल बिहारी वाजपेयी की पैदाइश 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुई थी और उन्होंने तालिब इल्मी के ज़माने से ही मुल्क की सियासत और सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू किया। उनके गुफ्तगू का जो अंदाज़ था और खिताबत का जादू बचपन से ही लोगों को अपना दीवाना बना लेता था। वाजपेयी जी 3 बार हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। उन्होंने मुल्क की बागडोर ऐसे वक्त में संभाली जब मुल्क को एक मजबूत और दूरंदेश क़यादत की ज़रूरत थी। उन्होंने जमाती सियासत से ऊपर उठकर मुल्क के तरक्की के लिए काम किया। यही वजह है कि हिज्ब मुखालिफ के लीडरान भी उनका बेहद एहतराम करते थे। अमन के अलमबरदार के तौर पर भी हम तमाम लोग उन्हें जानते हैं सामीन, क्योंकि वाजपेयी जी पड़ोसी ममालिक के साथ खुशगवार ताल्लुकात के हमेशा हामी रहे। 1999 में उनका दिल्ली से लाहौर तक का बस सफ़र और पाकिस्तान के साथ अमन कायम करने की जो कोशिश थी वो तारीख का एक सुनहरा बाब है। उन्होंने हमेशा ये माना कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। उर्दू ज़ुबान से उनकी मोहब्बत भी हमें जा बजा देखने को मिलती थी, क्योंकि उर्दू ज़ुबान से उन्हें दिली लगाव था और वो अक्सर अपने खितबात में उर्दू अशआर का खूबसूरत इस्तेमाल किया करते थे। उनकी हिंदी कविताओं में भी उर्दू की मिठास साफ झलकती थी। अल्फाज का जादू और उनकी जादुई आवाज़ रेडियो के सामीन को हमेशा महसूर कर देती।

0: उनकी एक मशहूर नज़्म का ये मिसरा जो हमने अभी आपको सुनाया, ज़िंदगी की बेहतरीन अक्कासी करता है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। मुल्क और कौम के लिए उनके बेलौस खिदमात के तराफ में हुकूमत हिंद की जानिब से उन्हें मुल्क के सबसे बड़े शहरी एज़ाज़ भारत रत्न से नवाजा गया था और 16 अगस्त 2018 को ये दरख्शंदा सितारा हमसे हमेशा के लिए जुदा हो गया, लेकिन उनकी यादों और नज़रियात के जो पहलू हैं वो आज भी हम तमाम के दिलों में जिंदा हैं। आइए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब लीजिए मुतवज्जे हुए चाहते हैं। ये सेहतनामा आपकी समातों के हवाले है, मुलाहिजा फरमाएं।
1: आदाब सामीन, आपका अंजुमन की आज की खास नशस्त सेहतनामा में खैर मकदम है। हमारी हुकूमत की ये कोशिश जारी है कि वो आवाम में सेहत की अहमियत को लेकर उन्हें बेदार करे। इसी कोशिश के तहत हुकूमत हर साल नई नई थीम के साथ आवाम को सेहतमंद गिजा और सेहतमंद जिस्म की अहमियत बताने में कोशा है। इसके बारे में तफसीली गुफ्तगू के लिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर जमाल अख्तर को मदऊ किया है। डॉक्टर साहब, सेहतनामा में हम आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे सामीन के लिए खास वक्त निकाला।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस स्टूडियो में इस प्रोग्राम के लिए मदऊ किया। मैं इस टाइटल पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि ये टाइटल जिसका नाम सेहतनामा है, इस टाइटल के तहत जैसा कि ये टाइटल दिख रहा है, इतनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को बेदार करने की कि जो ग़िज़ा के ताल्लुक से हमारे समाज के अंदर या हमारे लोगों के अंदर एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर किया जाए।
1: जी, इसी के तहत हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है और हमारी कोशिश रहती है कि हम सामीन को अच्छी सेहत के बारे में बताएं और उन्हें बेदार करें और वो अपनी सेहत को ज़्यादा बेहतर कर सकें ताकि वो ताहयात सेहतमंद रह सकें। सबसे पहले तो सामीन को बताइए कि इंसानी जिस्म के लिए ग़िज़ा क्यों ज़रूरी है।
2: मैं बात करूँ थोड़ा सा उससे पहले की, ग़िज़ा से पहले की, कि एक जो कंसेप्ट है हमारे यहाँ सेहत का, जिसको यूनानी के अंदर असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर रखा गया है कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिस कर ले, न कि अपनी सेहत को वो बरकरार रखे बल्कि अपनी सेहत की वो हिफाजत भी कर सके। असबाब सित्ता ज़रूरिया के अंदर 6 चीज़ें रखा गया है, जिसमें पहला है आबो हवा, दूसरा है माकूलो मशरूब, तीसरा है हरकत सुकून बदनी, चौथा है हरकत सुकून नफसानी, पांचवा है नींदो बेदारी और छठा है एतबास व इस्तफराग। ये जो असबाब सित्ता ज़रूरिया है, अगर इंसान इसको अपनी ज़िंदगी में नाफिस कर ले तो वो अपनी सेहत को बरकरार भी रह सकता है और सेहत को अपनी हिफाजत भी कर सकता है। इस नाहिये से अगर देखा जाए तो इस असबाब सित्ता ज़रूरिया में जो दूसरे नंबर पर है माकूल व मशरूब, यानी खाने पीने की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें भी क्या है, इनका असर हमारे जिस्म के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है। आज के टाइटल के ताल्लुक से देखा जाए तो जो उसका दूसरा पार्ट है यानी खाने की चीज़ें, तो इस खाने का जो इफ़ेक्ट है हमारे बॉडी के ऊपर या हमारे सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि असबाब सित्ता ज़रूरिया क्या है, जिस तरीके से मर्ज़ का सबब है वैसे ही सेहत का भी सबब है। ऐसा नहीं है कि सेहत है तो बगैर किसी सबब के है या सिर्फ मर्ज का काज है, बल्कि जिस तरीके से मर्ज का कोई काज होता है, कोई सबब होता है, ठीक उसी तरीके से सेहत का भी सबब होता है। सेहत में जो ग़िज़ा के ताल्लुक से अगर हम बात करें, बहुत सारी ऐसी डिजीज हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम अपनी ज़िंदगी में नाफिस करके बहुत सारी डिजीज से बच सकते हैं। अब जो बात आती है हमारे इसमें कि ग़िज़ा का हमारे ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम के अंदर उम्र को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। पहला, पैदाइश से लेकर उसकी 25 साल की उम्र, जिसके अंदर बॉडी क्या है, ग्रोथ करती है। दूसरा जो सेक्शन है उसका, वो 25 साल से लेकर 40 साल तक की उम्र, और तीसरा सेक्शन है 40 साल से 60 साल की उम्र, और लास्ट जो है फोर्थ नंबर पे है कि 60 साल से लेके आखिर उम्र तक। तो इस जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्से में ग़िज़ा का बहुत अहम रोल है। अगर हम पहले हिस्से की बात करें जिसको हम सिन नमो कहते हैं, उम्र के इस हिस्से में ग़िज़ा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। क्यों? इसकी वजह यह है कि जो बच्चा ग्रोइंग एज में है, एक तो उसको डाइट इस हिसाब से चाहिए कि जो उसकी डेली रूटीन है, जो उसकी बॉडी की एक्टिविटी है वो तो हो ही, साथ ही साथ उसकी ग्रोथ भी उसी के अकॉर्डिंग हो। इस

0: जिनने नमू के अंदर या इस पैदाइश से लेकर 25 साल तक की उम्र में गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी अगर पाई गई या गिजा के अंदर किसी भी तरह की कमी होगी तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट बच्चे की ग्रोथ पर होगा।
1: यानी हर उम्र के लिए ग़िज़ा बहुत अहमियत रखता है। ये मेरा
0: बिल्कुल
1: सवाल
0: बिल्कुल
1: होता आपसे, लेकिन खैर आपने बहुत अच्छे से इस बात को बता दिया, और आपने ये भी बताया कि हर उम्र को अलग अलग तरीके से डिवाइड करने के साथ साथ में उसके बारे में उसकी ग़िज़ा की भी अहमियत अलग अलग होती है। और यकीनन हुकूमत हमारी लगी हुई है कि हम हमारी आवाम को किस तरीके से सेहतमंद रखें। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हम चलते हैं उस जानिब जहाँ हमारे सामीन को बताइए कि दुनिया में सबसे जो बेहतरीन ग़िज़ा है, जो कहते हैं कि एक इंसान के पैदाइश से लेकर के आखिर तक में बहुत तरह की ग़िज़ा हमें मिलती है, लेकिन जब इंसान की नशोनुमा जब होती है, जिस वक्त वो जब पैदा होता है, तो एक पैदा हुए हुए किसी भी इंसान के लिए वो सबसे बेहतरीन ग़िज़ा कौन सी हो सकती है?
0: इस बेहतरीन गिज़ा की तरफ अगर हम जाएं, पैदा होने वाले बच्चे की अगर हम बात करें, तो उस बच्चे के लिए जो सबसे बेहतरीन गिज़ा होगी वो माँ का दूध होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो माँ का दूध तो सिर्फ बच्चे के लिए है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी, तो माँ के दूध के साथ उसके लिए और भी गिज़ाओं की ज़रूरत पड़ती है। डेली डाइट की अगर हम बात करें, तो हमारे डाइट के अंदर जो दो कंपोनेंट मेनली होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर कंपोनेंट गिज़ा का, और दूसरा होता है माइनर कंपोनेंट। मेजर कंपोनेंट में के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और जो माइनर कंपोनेंट है उसमें मिनरल्स और विटामिन्स हैं। इनमें जो हमारे गिज़ा का जो मेजर कंपोनेंट है, यही मेजर कंपोनेंट क्या है, बॉडी के अंदर इनर्जी और ग्रोथ के जो प्रोसेस हैं वो मेजर कंपोनेंट करता है, जबकि जो माइनर कंपोनेंट है ये बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन जो बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शन है, जो मुख्तलिफ अफाल है अज़ा के, उस मुख्तलिफ अफाल को प्रॉपर तरीके से अंजाम देने के लिए जिम्मेदार होता है।
1: जिस्म के लिए अगर प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स है तो उसके साथ साथ में हमें मिनरल्स विटामिन्स इसकी भी सख्त ज़रूरत है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बगैर
1: ताकि हमारी
0: उसके
1: बॉडी जो है वो, हमारा जो जिस्म है वो अच्छे से अपने नशोनुमा को कर सके। ये बहुत अहम है सामीन, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा। और इसके साथ ही हम चलते हैं उस सवाल की जानिब जहाँ आज के वक्त के जो वालदेन हैं वो बहुत परेशान हैं। जैसे आपने कहा कि माँ के दूध के बाद बच्चों को एक उम्र आती है जिसके बाद में उन्हें ज़रूरत होती है कि उन्हें बाहर से भी कुछ खाने दिए जाएँ, तभी तो फिर वो आगे बढ़ेगा और अच्छी उसकी नशोनुमा होगी। आज के वक्त में वालदेन बच्चों के ना खाने से ज़्यादा ना बच्चों के फास्ट फूड के खाने से ज़्यादा परेशान हैं। कैसे वो अपने बच्चों को अच्छे खाने की तरफ उसको ले करके जाएँ, और कैसे वो बच्चों को फास्ट फूड से थोड़ा दूर करें, क्योंकि फास्ट फूड पेट तो भर देता है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हमें चाहिए मिनरल्स, विटामिन्स और सारे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, तो ये सारी चीज़ें फिर उनको कैसे मिलेंगी? फास्ट फूड में तो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। थोड़ा हमारे सामीन को बताइए इसके बारे में।
0: मैं समझता हूँ कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो वालिदैन की है। इसके कई एक फैक्टर्स हैं, चूंकि आज के वक्त में जो वालिदैन हैं दोनों लोग जॉब करते हैं, दोनों लोग काम करते हैं, टाइम की कमी होती है अपने इस टाइम को पूरा करने के लिए। जैसे अगर ऑफिस जाना है, पेरेंट्स को भी, बच्चे को भी स्कूल जाना है, जो कम टाइम है, तो पेरेंट्स क्या करते कि उस कम टाइम में ऐसी गिज़ा बना के बच्चों के लिए देते जो जल्दी से तैयार हो जाए, जैसे नूडल्स है, मैगी है, पास्ता है, ये तमाम चीज़ें जो बनाई। ये सबसे बड़ी गलती इसमें क्या है, ये पेरेंट्स की है कि वो बच्चे की सेहत को ना रख के तरजीह किसको दे रहे हैं, टाइम को दे रहे हैं कि हमारा टाइम बच जाए। लेकिन जब वही बच्चे को आदत पड़ जाती है वो चटपटा खाना खाने की, तो फिर वही वालिदैन के लिए सबसे बड़ी परेशानी
1: मुश्किल,
0: बन
1: हाँ
0: जाती है।
1: बिल्कुल, उनकी मुश्किल
0: तो
1: बढ़ा देता है।
0: इसमें मेरा कहना यह है कि जो वालिदैन को इस बात का ख्याल रखा जाए कि जहां अपना थोड़ा टाइम है, थोड़ा सा टाइम अगर आप ज्यादा दे दें तो उन बच्चों के लिए आप खाना भी अच्छा बना देंगे, और साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि उसके अंदर जो हम बच्चे को दे रहे हैं क्या उसमें प्रॉपर तरीके से प्रोटीन है, फैट है, क्या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट उतना है, उसमें मिनरल्स और विटामिन्स प्रॉपर तरीके से हैं या नहीं है।
1: अच्छा, यहाँ पर मैं कहूँ कि ठीक है, माँ बाप दोनों जॉब पर हैं, दोनों काम पर लगे हुए हैं, लेकिन वो अपने लिए भी तो लंच बनाते होंगे ना सुबह के वक्त में आखिर, और बच्चों के लिए फिर अलग से, तो क्यों ना उसी लंच में कुछ अलग वो कर दें और फिर अपने बच्चों को उसी में से कुछ दें जिससे कि उनको सेहत भी मिल सके। आखिर वो अपने लिए तो वो पास्ता नूडल्स नहीं लेके जाते होंगे, चपातियाँ बनती होंगी घरों में, सब्जी या जो भी चीज़ें बनती होंगी। तो ये बहुत अच्छी मतलब गुफ्तगू से ये बहुत बेहतरीन निकल करके आया कि हमें थोड़ा सा वक्त मैनेज करके अपने बच्चों को अच्छी सेहत का ख्याल रखते हुए उनके लिए अच्छे लंच यानी कि उनके टिफ़िन का बेहतरीन इंतज़ाम कीजिए। इसके साथ ही डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके से हमारे जिस्म में जा करके वो काम करता है?
0: ये जो गिज़ा जिसको हम न्यूट्रिशन या फूड या हम गिज़ा कहते
1: या
0: हैं,
1: गजा जी,
0: ये गिज़ा जो है बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मराहिल से गुजर

यानी जब कोई भी चीज़ जब हम अपने माउथ के अंदर रखते हैं तो उसको हम फिर दांतों से क्रश करते हैं, उसके साथ जो माउथ का जो सलाइवा है उसके साथ मिक्स होता है, फिर वो गिजाई अज्जा हमारे ओसोफेगस से होते हुए स्टमक के अंदर जाता है, तो कुछ चेंजेस क्या हैं स्टमक के अंदर होते हैं, स्टमक से फिर वो इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, तो वहाँ इंटेस्टाइन में फिर चेंजेस होते हैं। तो जो चीज़ें हमने खाई है वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट या फैट का ही कोई मिश्रण, जैसे हमने चावल खाया रोटी खाई तो वो क्या है एक तरह से कार्बोहाइड्रेट भी है उसमें, थोड़ा बहुत फैट भी है, थोड़ी बहुत प्रोटीन भी है, लेकिन मैक्सिमम उसमें मेजर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कार्बोहाइड्रेट जब तक अपने सिंपलेस्ट यूनिट में टूटेगा नहीं तब तक ये बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब ये कंप्लीट इसके मेटाबोलिज्म के बाद ये एब्जॉर्ब होके जिस्म का हिस्सा बन जाए वो चीज़ गिजा कहलाता है। अगर इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो फिर वो गिजा के जुमरे में नहीं आएगी, वो चीज़ तो ऐसे ही एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जीआईटी से या हमारे इंटेस्टाइन से जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो गिजा का ये पहला वसूल है कि वो जिस्म के अंदर जाए और मेटाबॉलिज्म के बाद जिस्म का हिस्सा हो जाए, ऐसी चीज़ गिजा के जुमरे में आती है।

0: जाए वो चीज़ ग़िज़ा कहलाता। अगर इसका कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तो फिर वो ग़िज़ा के ज़ुमरे में नहीं आएगी, वो चीज़ तो ऐसे ही एज ए वेस्ट प्रोडक्ट जीआईटी से या हमारे इंटेस्टाइन से जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो ग़िज़ा का ये पहला वसूल है कि वो जिस्म के अंदर जाए और मेटाबॉलिज्म के बाद जिस्म का हिस्सा हो जाए, ऐसी चीज़ ग़िज़ा के ज़ुमरे में आती है।
1: इसीलिए फास्ट फूड जो होता है वो हमारे जिस्म के साथ कहीं भी मैच नहीं कर पाता है, मतलब हमारी जो जिस्म है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, और हम फास्ट फूड खा के बिल्कुल फास्ट फास्ट से और फैट फैट से हो जाते
0: नहीं,
1: हैं।
0: उसमें ये बात नहीं है। रियल में उसमें क्या है, जो फास्ट फूड है, उस फास्ट फूड के अंदर अगर आप देखें तो मैक्सिमम चीज़ें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
1: कार्बोहाइड्रेट्स जी
0: लेकिन हमारे बॉडी के लिए सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत नहीं है, ये अलग बात है कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस एनर्जी का 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से होता है। लेकिन अगर हम अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट की अगर मकदार बढ़ा दें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा,
1: कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो
0: कार्बोहाइड्रेट का
1: जाएगा
0: लेवल ज़्यादा हो
1: जी।
0: जाएगा। तो ये हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह है। कार्बोहाइड्रेट फिर फैट डिपॉजिट के अंदर तब्दील होता रहता है, तो आदमी क्या होता है कि ओबीज हो जाता है, यानी मोटापा आ जाता है। और मोटापा क्या है, एक खुद बीमारी है, बल्कि बीमारी क्या, मैं तो कहूँगा मोटापा क्या है, एक सिंड्रोम है, यानी बीमारियों का मिश्रण है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, या इसी तरह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हाइपरटेंशन, ये तमाम बीमारियां, मोटापा जो है इन बीमारियों को दावत देता है।
1: ये कहा जाए कि मोटापा एक छोटा सा बीज है जो हमारे जिस्म अगर दाखिल हो गया तो उसके साथ पता नहीं कितनी सारी बीमारियों की शाखें निकल आती हैं। ये अगर
0: बिल्कुल
1: कहा जाए
0: बिल्कुल
1: तो ज़्यादा ही सही है। लोग जो हैं जो वो समझना नहीं चाहते हैं कि मोटापा दरअसल बस थोड़ा सा तो बढ़ गया, ये सोच करके लोग ध्यान नहीं देते हैं अपने बॉडी के ऊपर। अच्छे लग रहे हैं क्योंकि बॉडी फैलती है तो कहीं ना कहीं स्किन थोड़ा ग्लो करने लग जाता है, और लोग समझते हैं कि हम तो स्मार्ट लग रहे हैं, खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनकी बॉडी जब फैली तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ही फैल गई तो मोटापे में शामिल हो गए। तो सामीन, हमें इस बात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि अगर हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तो ज़रूर ये ध्यान दीजिए कि हमारी बॉडी कोई और बीमारी तो साथ में शामिल नहीं कर रही है, लेकर तो नहीं आ रही है। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमारे सामीन को और हमें ये बताइए, जिस्म है जो हमारा, जो हमारे जिस्म की सेहत ख़राब होती है, इसकी खास वजह क्या क्या होती है?
0: मैंने अभी सबसे शुरुआत में ही आपको असबाबे सित्ता ज़रूरिया का एक एग्जाम दिया था। तो ये ऐसे फैक्टर हैं कि इंसान जब तक जिंदा रहेगा इन फैक्टर से उसको दो चार होना पड़ेगा। जैसे पहला मैंने बताया हवा, अगर हवा अच्छी होगी सेहत होगी। हवा के अंदर किसी भी तरह का चेंजेस आए, चाहे उसके कंपोजिशन में कोई हार्मफुल गैस उसके अंदर दाखिल हो जाए, कोई पॉल्यूटेंट उसके साथ शामिल हो जाए, जैसा कि अभी, चाहे कोई ऐसे इन्फेक्टियस सब्सटेंस जैसा कि अभी बहुत करंटली हमने देखा कोरोना
1: कोरोना
0: वायरस का, एक
1: जी
0: कि उसके जो ड्रॉपलेट थे उस एयर में थे, और उस एयर को जितने लोग इनहेल करेंगे सब उससे इन्फेक्टेड होंगे। तो जहाँ पर ये हवा के, इसके बिना जिंदगी का तसव्वुर ही मुमकिन नहीं है, तो ये इसका असर हमारे जिंदगी के ऊपर या हमारी सेहत के ऊपर डायरेक्ट है। इसी तरीके से जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, इस पानी में अगर आप बॉडी को देखें तो बॉडी के अंदर लगभग 40 लीटर्स वाटर होता है, और ये वाटर क्या है, जो हम पीने से या कुछ मेटाबॉलिज्म के नतीजे से बनता है। तो पानी के बिना भी हमारे जिंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं, तो अगर पानी कंटामिनेटेड है, पानी खराब है, उसके अंदर कोई हार्मफुल सब्सटेंस है, उसके अंदर किसी मिनरल्स की कमी है, तो जाहिर है कि जो कमियां उसके अंदर होंगी उसका इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर डायरेक्ट दिखेगा। उसी तरीके से जो हमारी गिजा है, उस गिजा के अंदर जिस भी चीज़ की कमी होगी, आयरन की कमी है तो आयरन की कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर मुरतब होंगे, कैल्शियम की कमी है तो उसके असरात मुरतब होंगे, प्रोटीन की कमी होगी तो प्रोटीन माल एनर्जी न्यूट्रिशन जो सभी लोग जानते हैं। तो जिस तरीके की चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे, उसी तरीके की जो उसका इफेक्ट है डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आता है।
1: तो जब भी हम कुछ खाने की चीज़ें हों, या हम जिन जिसे कहते हैं दिखती तो नहीं है हवा लेकिन हम सांस तो लेते हैं, पानी से जैसे आपने बताया, तो पानी से ही बहुत तरह की बीमारी होती है, जैसे इकोलाई, आजकल टाइफाइड बहुत चला हुआ है, बहुत वायरल हो जाता है, कुछ कुछ बीमारियां तो बिल्कुल कहते हैं वायरल हो गया। वायरल वो होने का मतलब ही है कि वो हवा के ज़रिए या पानी के ज़रिए अक्सर हमारे जिस्मों में पहुँचती है, और उसके बाद फिर हमारे जिस्म में बीमारी मुरतब होती है। इसके साथ ही साथ सामीन को बताइए कि हमारे जिस्म के लिए जिस तरह की ग़िज़ा आपने बताई कि बहुत ज़रूरी है, तो उन ग़िज़ाओं में कोई ऐसी ख़ास चीज़ जो सुबह नाश्ते के वक्त में वो लें, दोपहर के खाने के वक्त में लें, शाम में बहुत लोगों को कुछ हल्का फुल्का खाने की आदत होती है, तो वो उस वक्त ऐसी क्या अशिया लें जिससे उनके जिस्म को तवानाई मिले, सेहत मिले, और फिर रात में खाना कैसा होना चाहिए?
0: देखिए, डाइट के अंदर अगर सुबह के हम नाश्ते की बात

0: करें तो उम्र के लिहाज से मैंने कहा कि सबसे पहला फैक्टर होता है जब हम देखेंगे कि किसके लिए हम बना रहे हैं, बच्चे को दे रहे हैं, अपने पेरेंट्स को दे रहे हैं, या जो वर्किंग आवर्स है या जो लोग काम कर रहे हैं। और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा वर्क है वो सिडेंट्री है, मॉडरेट है, हैवी वर्क है। जैसे कोई किसी को फिजिकल वर्क ज़्यादा है, कोई ऐसी जगह काम कर रहा है जहाँ फिजिकल वर्क ज़्यादा है, तो हर एक के लिए गिज़ा का तयन जो है वो अलग अलग होगा। लेकिन अगर सबसे बेहतरीन अगर गिज़ाओं की अगर हम बात करें, अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको नाफिज कर ले तो बहुत सारी बीमारियों से उसको छुटकारा हासिल हो सकता है। उसमें सबसे बेहतरीन गिज़ाओं के अंदर अंडा और बच्चा है, ग्रोइंग एज है, जवान है, तो वो यक के साथ ले सकता है। लेकिन अगर एल्डर एज है या ओल्ड एज है तो विदाउट यक, यानी सिर्फ उसकी जो अल्बुमिन है वो इस्तेमाल करे। इसी तरह दूध का इस्तेमाल हर उम्र के लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से चने का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल, सोयाबीन का इस्तेमाल, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल हम अपने नाश्ते के अंदर कर सकते हैं। इसी तरह रात का जो खाना है, उस रात के खाने के अंदर भी मिक्स डाइट, यानी उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये तमाम चीजें उसके अंदर होना चाहिए। तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये तमाम चीजें हमारे डाइट के अंदर जरूरी है, क्योंकि कुदरत ने ये बनाया है कि किसी जैसे चावल के अंदर जो चीज नहीं है वो चीज दाल के अंदर है। तो आप दाल चावल दोनों चीज खाएंगे तो एक की कमी दूसरे से पूरी हो जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि डाइट को मिक्स डाइट आप खाइए, एक ही चीज आप हमेशा नहीं खाइए कि उसके अंदर जो कमी हो तो उस कमी के असरात हमारे जिस्म के ऊपर पड़े।
1: जो भी खाना हम खाएं इसमें हमें इस बात का ख्याल रखने की बहुत सख्त ज़रूरत है सामीन, कि जिस खाने से हमारे जिस्म में तवानाई हासिल होगी वही खाना दरअसल ग़िज़ा से भरपूर खाना कहलाता है, और वही खाना हमारे जिस्म को तवानाई भी देगा और वही खाना फिर हमारे जिस्म के हर एक हिस्से की नशोनुमा करेगा, चाहे वो बढ़ते बच्चों के लिए हो, एज वाले लोग हों। जैसे कि कहते हैं कि अंडा, सही, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों को अंडा नहीं खाते हैं महाकराई या जो भी तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन वो खाना चाहिए और वो इस तरीके से लें जिस एज में वो हैं, जिस उम्र के हैं, उस हिसाब से उनको लेना चाहिए। और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जिनका जितना वर्क है, जो जिस तरीके से काम करते हैं, अगर कहा जाए कि एक मजदूर है तो उसे तो ज़्यादा हर एक चीज़ लेने की
0: हाँ,
1: ज़रूरत है,
0: उसको
1: उसे
0: 100% उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।
1: जैसे फील्ड वर्क होता है, जो लोग बाहर मार्केट में बहुत घूम रहे हैं उनके लिए इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके साथ साथ हमारे सामीन को ये बताइए कि कोई ऐसी चीज़ जो हमारे जिस्म में कमी होती है, जैसे आजकल बहुत तरह की बीमारियां हो रही हैं और हर बार नई नई बीमारी आ जाती है हमारे सामने, तो क्या हम खाने से, अपनी उस ग़िज़ा से भरपूर जो हमारा जो खाना होता है उससे हम बीमारी पे कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा कुछ कम कर सकते हैं?
0: थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारी बीमारियों को हम 100% क्योर कर सकते हैं। ये यूनानी के अंदर तो इलाज बिल गिज़ा सदियों हजारों साल से है, मॉडर्न के अंदर ये कंसेप्ट नहीं था, बल्कि मॉडर्न के अंदर एक ब्रांच डाइटोथेरेपी की खुल गई कि वो लोग दवा के बजाय गिज़ा से इलाज करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो एब्जॉर्प्शन चीज़ों का, जैसे मान लीजिए कि आप एक आयरन की टेबलेट दे रहे हैं और एक ऐसी गिज़ा जिसमें आयरन मौजूद है, जिसको हम कहते हैं गुड़, जिसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है, तो जितना बेहतरीन एब्जॉर्प्शन नेचुरल गिजा का होगा उतना अच्छा एब्जॉर्प्शन दवा से नहीं होता है। तो अगर इस तरह की डाइट को, जैसे कैल्शियम की कमी, आमतौर से आप देखते होंगे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या लैक्टेटिंग मदर हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, पहले से अगर अवेयर रहें तो बजाय उसको कैल्शियम की टेबलेट देने के हम ऐसी गिजाओं का इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर कैल्शियम पाया जा रहा हो। इस तरह का पहले से अगर हमारे पास ये कंसेप्ट है, पहले से हमको अगर पता हो तो बहुत सारी बीमारियों से हम खुद बच सकते हैं, बजाय इसके कि बीमार होने के बाद हम उसका इलाज करें।
1: ये बहुत अच्छी बात है और हमें इस बात से तो बिल्कुल सीखना चाहिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें अल्लाह पाक ने जो हमें जो नेमत दी है खाने की शक्ल में, उसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं। ये बहुत अच्छी बात निकल करके आई कि हम बाद में जा करके दवाइयों से अपनी बीमारी को ठीक करें, उससे बेहतर है कि हमारे पास जो खाना है उससे हम सेहतयाब रहें। ये भी हमें पता होना चाहिए सामीन हजरात कि किस खाने से हमें कैल्शियम मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहा है, आयरन मिल रहा है। और इसके साथ ही साथ हम इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाना चाहते हैं और ये कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि आप हमारे सामीन को जाते जाते एक कोई ऐसी बात बता के जाइए जिससे कि वो सेहतयाब रहे ताहयात और उनकी सेहत अच्छी रहे, उनके अपनों की सेहत अच्छी रहे। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं एक शेर से ही इसको ख़त्म कर दूं कि
1: जी
0: गालिब ने
1: इरशाद।
0: कहा था कि तंग दस्ती अगरचे हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो इस तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपनी गिज़ा का ध्यान रखें। आपकी गिज़ाओं में प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स हों, विटामिन्स हों, इन चीज़ों को अगर हम रखते हैं तो ना ये कि हम अपनी सेहत को बरकरार रखेंगे बल्कि अपनी सेहत की हम हिफाजत भी करेंगे।

0: बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे सामने के लिए निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पर हमें बुलाया ताकि लोगों के अंदर इस बात की बेदारी पैदा हो सके और लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करके अपनी सेहत को बरकरार रख सके। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: सामीन अभी आप सेहतनामा समाअत फरमा रहे थे जिसमें जिस्मानी निज़ाम सेहत और ग़िज़ाइत के उनवान से डॉक्टर जमाल अख्तर से शगुफ्ता परवीन की गुफ्तगू पेश की जा रही थी। और अब लीजिए सामीन हमारी अगली पेशकश आपकी समातों के हवाले हम किए दे रहे हैं। जगजीत और चित्रा सिंह की हवाले में ये आवाज़ के साथ गज़ल, मुलाहिज़ा फरमाए।

0: समीन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल आप समाप्त फरमा रहे थे, और इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र यहीं तमाम होता है। कल फिर हमारी मुलाकात होगी। इस वादे के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
1: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है, मीडियम वेव 231।

0: 7.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारे, मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

0: तन्हा रात के अंधेरे में गीतों के रंग। बुधवार रात 10:30 पर आकाशवाणी दरभंगा की प्रस्तुति।
1: कीजिए दिन का आरंभ पवित्रता, भक्ति और आस्था के साथ। प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी दरभंगा से भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम वंदना। रेडियो सेट के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी।

0: भोर होते उठ जाओ किएक ता इजोतक पहल किरण संग फुलाए लगत फूल प्रकृति में घोराए लगत ऊर्जा आबा वाला काल ले
1: प्रगति तखने भ सकैए जखन पुरुष और महिला समान रूप से सब क्षेत्र में एक रंग हुनका अधिकार प्राप्त हेतन
2: आ मनुख लेल त बुझो अत्यंत जरूरी पानी बुन्नी नहीं है त खेती नहीं है आ खेती जो नहीं है उपजा नहीं है त हमरा लोकन खाब की
3: मामा बने जाने बाबा देने जादा।
4: नमस्कार मिथिला, सुबह 7:05 पर सुनते रहिए आकाशवाणी

0: जिंदगी है तो है समस्याएं भी, समस्याएं हैं तो हम तलाशते हैं समाधान के उपाय। आपकी इस तलाश को थोड़ा आसान हम बनाते हैं अपने कार्यक्रम हेलो जिंदगी के माध्यम से। आकाशवाणी दरभंगा से सुनिए फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी, रविवार दिन में 11 बजे।
1: होती रही कुछ बातें गीतों की और कुछ उनसे जुड़ी हस्तियों की।
2: रंगत तेरी सूरत से किसी में नहीं, नहीं।
1: कानों से जब टकराई सुरों की शीतल फुहारें,
3: तुम नाचो रस बरसी।
1: मुंदी हुई आंखों में जागने लगी कई तस्वीरें।

मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

0: ये आवाज़ थी किशोर कुमार की फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में। गीत रचना अनजान की थी और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से सुन रहे हैं।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे।
7: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैराग का गीत सुन रहे थे। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आशा से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

Yavasti Muhammad Rafiki film Asha में आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म सरगम का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

ये आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की फिल्म सरगम में। अगला गीत हेमलता की आवाज़ में फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई से लिया गया है। गीत और संगीत रचना रविंद्र जैन की है।

ये आवाज़ थी हेमलता की फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर एवं साथी को फिल्म राम तेरी गंगा मेली में। हसा जयपुरी के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है रविंद्र जैन ने।

और साथी की फिल्म राम तेरी गंगा मेली में। आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म सावन भादो से लिया गया ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। बर्मा मलिक के लिखे इस गीत की धुन बनाई है सोनिक ओमी ने।

यह आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की फिल्म सावन भादो में। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी।

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद।
1: जय हिंद भैया।
0: बच्चों, हम उपस्थित हैं आपका पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी लेकर। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी सेहतमंद होंगे, स्वस्थ होंगे। नन्हे दोस्तों, छुट्टी का दिन ही क्यों ना हो, खेल मस्ती मनोरंजन सब कुछ की सुविधा ही क्यों ना हो, मजा तभी आता है जब आपके पास दोस्त हो, क्योंकि दोस्त के बिना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। मतलब हमें अच्छे दोस्त अवश्य ही बनाने चाहिए। एक सच्चा और अच्छा साथी हमेशा ही हमारी भलाई की सोचता है। नन्हे दोस्तों, ये दोस्ती सिर्फ इंसानों से ही नहीं की जाती है। आप चाहें तो किताब, पेड़ पौधे, साफ सफाई, पशु पक्षी आदि से भी कर सकते हैं। ये सभी आपको लाभ पहुंचाते हैं। अब जैसे कि इन दिनों विश्व के प्रायः अधिकांश देश पर्यावरण संबंधी समस्या से परेशान हैं, हमारा देश भारत भी पर्यावरण प्रदूषण से ग्रसित है, तो क्यों न इसका समाधान ढूंढा जाए। बच्चों, हम यदि पर्यावरण को अपना दोस्त बना लें तो इसका समाधान आसान हो जाएगा। जैसे ही हम उसका दोस्त मान लेंगे तो उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय लाभ की सोचेंगे। हम उस पर काम करना शुरू कर देंगे। बिजली संबंधी उपकरण को ही लें तो उसका इस्तेमाल जरूरी होने पर ही करेंगे, जरूरत नहीं होने पर उसे बंद रखेंगे। बच्चों, यही तो दोस्ती है ऊर्जा की बचत के साथ। इसी तरह प्लास्टिक के सामान और पॉलीथीन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। खुद के लिए या छोटे भाई बहनों के लिए खिलौने चाहिए तो क्यों ना लकड़ी के खिलौने उपयोग करें। मम्मी पापा के साथ बाजार जाना हो तो कपड़े की थैली लेकर जाएं, ताकि पॉलीथीन बैग लेने से बच सकें। इसी तरह गत्ते के बॉक्स को फेंकने से अच्छा है कि उसका उपयोग फनी आर्ट प्रोजेक्ट में करें। आप इससे तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। ये काम करने में आपको मजा भी आएगा। आप यदि इसका कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो उसे फेंकें नहीं। कभी कभी सामान लाने पहुंचाने में उसका उपयोग किया जा सकता है। बच्चों, पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं। आप सभी को भी इन पेड़ पौधों से बहुत लगाव है ना? तो छुट्टी के दिनों में अपने बगीचा में समय समय पर पौधे अवश्य ही लगाएं। अपने हाथ से पेड़ पौधे लगाने पर बहुत अच्छा लगता है। आप उनकी देखभाल भी करते रहें, उसमें पानी डालें, घास फूस उगने पर सफाई कर दें। ये पेड़ पौधे बड़े होंगे तो बगीचा में घूमने पर अच्छा लगेगा, आसपास का वातावरण भी स्वच्छ लगेगा। नन्हे दोस्तों, बीज बोना और उसे बड़ा होते देखने से ज्यादा दिलचस्प और रोचक भला क्या हो सकते है। ये आपके लिए काफी रोमांचकारी होगा। तो आप फल सब्जी या अन्य किसी पेड़ पौधे का बीज अवश्य ही लगाएं। बच्चों, अभी भले ही बरसात का मौसम है, फिर भी गर्मी तो पड़ती ही है, तो पानी की अहमियत आप समझ सकते हैं। नल से पानी यूं ही नहीं बहने दें, नहाने ब्रश करते समय या फिर साफ सफाई के समय इस पर अवश्य ही ध्यान रखें। तो बच्चों, ये सभी प्रयास पर्यावरण से दोस्ती करने में आपके लिए मददगार हैं। आप अपनी दैनिक चर्या में इसे अवश्य ही शामिल करें। हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे और खुश रहेंगे। फिलहाल आपकी खुशी के लिए सुनवाते हैं एक प्यारा सा गाना।

तो बच्चों पसंद आया ना गाना? कार्यक्रम में अब शामिल है बच्चे मन के सच्चे। आज सुनिए उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर सदर दरभंगा के बच्चों की प्रस्तुति।

0: नाम बताइए।
1: अभिषेक कुमार।
0: अभिषेक, अपना क्लास बताइए।
1: 8।
0: आप स्कूल रोज जाते हैं?
1: यस सर।
0: पढ़ने में मन लगता है ना?
1: यस सर।
0: कौन सा विषय आपको पढ़ने में सबसे अच्छा लगता है?

0: सेंस ऑर्गेनिक।
1: अच्छा। और खेलकूद में भी हिस्सा लेते हैं?
0: यस सर,
1: कौन सा खेल पसंद है आपको?
0: क्रिकेट।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपको जब भी समय मिले, मौका मिले, तो आपको खेल में भी हिस्सा लेना चाहिए। खेलने से आपका शरीर जो है स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है। लेकिन अभी बारिश का मौसम है, तो ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ आप खेल रहे हैं वहाँ पानी जमा ना हो, गंदा पानी ना हो, कीचड़ ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप खेलकूद में हिस्सा लें अपने दोस्तों के साथ, है ना?
0: यस
1: अभी बरसात का मौसम है, तो स्कूल जाते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं आप?
0: स्कूल जाते समय पहले देखते हैं कि मौसम कैसा है। अच्छा मौसम रहता है तो स्कूल जाते हैं, छाता ले लेते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जब आपको लगे कि बारिश होने की संभावना है, बारिश हो रही हो थोड़ी बहुत, तो आप अपने पास छाता अवश्य रखें। छाता रहने से आप भीगेंगे नहीं, भीगने से शरीर गीला हो जाता है, सर्दी जुकाम की संभावना बनती है ना? तो इन सब से बचने के लिए आपको छाता अवश्य रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। और चलिए, बातें हुई, कुछ सुनाइएगा।
0: यस सर,
1: क्या सुनाइएगा
0: प्रार्थना।
1: जी, सुनाइए।

0: पर वो
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा गाते हैं।
0: नमस्ते सर,
1: नमस्ते, अपना नाम बताइए।
0: मेरा नाम आदर्श कुमार मिश्रा है। सेवन
1: आदर्श, आप किस वर्ग में पढ़ाई करते हैं? वर्ग सातवीं में आप पढ़ाई करते हैं। क्या सब पढ़ते हैं?
0: हिंदी ये सब।
1: अच्छा, हिंदी आप रोज पढ़ते हैं, लिखते भी हैं?
0: यस सर,
1: बिल्कुल, पढ़ने के साथ साथ लिखना भी बहुत जरूरी है। आपकी लिखावट अच्छी होगी, सभी आपकी तारीफ करेंगे, है ना? आपके स्कूल परिसर में पेड़ पौधा लगा है, आप सब उसकी देखभाल करते हैं?
0: पानी देते हैं उसमें।
1: बिल्कुल, जब भी जरूरत हो उसमें पानी डालना है, मिट्टी डालना है। अकेले ये सब काम नहीं करना है, अपने शिक्षकों की उपस्थिति में ये सब काम करना है ना? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी बरसात का समय है, तो आप नए नए पौधे भी लगा सकते हैं, है ना? तो जहाँ पौधा नहीं है, पेड़ नहीं है, आप वहाँ छुट्टी के दिन, जिस दिन आप बागवानी करते हैं, तो आप उसे अवश्य लगाएं। खेलकूद में हिस्सा लेते हैं कि नहीं? कौन सा खेल खेलते हैं?
0: और क्रिकेट।
1: क्रिकेट खेलते हैं आप भी? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आप अपनी पसंद के मुताबिक जो है, आज जो भी खेल है, आप उसमें हिस्सा ले। कुछ सुनाइएगा,
0: यस सर।
1: सुनाइए।

0: इतलाऊ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फिर मातृभूमि की शीश चराना, जिस पथ पर जाए वीर अनेक।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस कविता को किसने लिखा है?
0: माखनलाल चतुर्वेदी।
1: माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता को लिखा है। बहुत अच्छी कविता।
0: सर प्रणाम।
1: प्रणाम। क्या नाम है आपका?
0: शारदा कुमारी।
1: शारदा, अपना वर्ग बताइए।
0: एट
1: स्कूल।

0: जाती हैं आप?
1: यस सर।
0: स्कूल जाने से पहले किस तरह से आप तैयारी करती हैं बताइए।
1: सबसे पहले हम जाते हैं, फिर नहा धोकर, फिर पूजा पाठ कर, फिर ड्रेस पहनकर, फिर आ जाते हैं स्कूल। देखते हैं मौसम अच्छे है तो चले आते हैं, नहीं तो छाता लेकर फिर आते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अभी बरसात का मौसम है तो इसका ख्याल अवश्य ही रखा जाना चाहिए। और आप साथ में छाता रखती हैं, ये भी अच्छी बात है। बिल्कुल, छाता आपको भीगने से बचाते हैं। और घर पर जब आप फुर्सत में होती हैं तो आप क्या सब करती हैं?
1: थोड़ा मोरा सर खेल लेते हैं, नहीं तो मम्मी के काम में हाथ बढ़ाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। जब भी आपको फुर्सत मिले, समय मिले, आप अवश्य ही अपनी पसंद का खेल खेलें। और मम्मी पापा के काम काज में तो हाथ बटाना ही चाहिए। उनके साथ काम करने से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो आने वाले समय में आपको काम देता है ना?
1: यस सर।
0: बहुत अच्छी बात है। और आपके दोस्त हैं कि नहीं?
1: यस सर।
0: कितने दोस्त हैं?
1: सर दो।
0: दो दोस्त हैं, आपस में मिलजुल कर रहते हैं?
1: यस सर।
0: बिल्कुल, दोस्तों के साथ मिलजुल कर रहना है और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करनी है ना?
1: यस सर।
0: चलिए कुछ सुनाइएगा।

0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताइए, बागवानी से आपको लगाव है या नहीं?
1: सर।
0: बागवानी में आप क्या सब करती हैं?
1: तो खेतिया सब फूल लगाते हैं सर, पेड़ पौधे लगाते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
1: सर।
0: बगीचे में तरह तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वे सब के सब लाभप्रद हैं, है ना?
1: सर।
0: कुछ फल देते हैं, कुछ फूल देते हैं,
1: सर।
0: और सबसे बड़ी बात यह है कि जीवनदायिनी ऑक्सीजन जो है वो पेड़ पौधे से ही प्राप्त होते हैं, है ना?
1: सर।
0: तो अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पौधा लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारा वातावरण जो है स्वच्छ रहे, साफ रहे, है ना?
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका?
1: आशीष
0: अपना वर्ग बताइए,
1: सेवन देशभक्ति
0: क्या सुनाइएगा?
1: गाना।
0: देशभक्ति गाना सुनाना है, सुनाइए।
1: ओ देश मेरे तेरी शान पिसड़ के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के,

0: की एक रोज वही मेरी सांग, कभी याद करे जो जवाना, माटी पे मर मिट जाना, जिगर में शामिल मेरा नाम हो, ओ देश मेरे तेरी शान सड़के, कोई विधान है क्या तेरी धूल से भटके, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा हूँ।
1: बहुत बढ़िया।

बच्चे मन के सच्चे, इसके अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्क्रमित राजकीय मध्य विद्यालय भगवानपुर सदर दरभंगा के बच्चों की प्रस्तुति। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाते हैं कहानी हठ का फल। बच्चों, एक घना जंगल था, उसमें एक पुराना तालाब बना हुआ था। वह तालाब गहरा भी था। तालाब के किनारे जल मुर्गियां और उनके बच्चे घूमते रहते थे। वे कभी पानी में तैरते थे तो कभी पंखों से एक दूसरे पर पानी उछालते थे, कभी एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करते थे। तालाब के किनारे एक चिंटू नाम के चूहे

बिल था। चिंटू के दो तीन छोटे छोटे बच्चे थे। जब चिंटू उनके लिए खाना जुटाने बिल से बाहर निकल जाता था तो बच्चे भी बिल से बाहर निकल आते थे। वे तीनों तालाब के किनारे आकर बैठ जाते थे। वहाँ वे देखते थे कि पानी में जल मुर्गियाँ और उनके बच्चे तैर रहे हैं। उन्हें पानी में खेलते हुए देखकर चूहे के उन तीनों बच्चों का मन ललचा जाता था। उनका मन भी करता था कि वे भी तैरें, पर वहाँ एक बड़ी सी जल मुर्गी थी, वह उन्हें पानी में नहीं आने देती थी। आगे शाम को चूहे के बच्चे घर लौटे। चिंटू के साथ बैठकर सबने खाना खाया। चिंटू के बड़े बच्चे का नाम था मिंटू। वह बोला, मुर्गा भी काकी बड़ी खराब है। क्यों, क्या बात है बेटा, उन्होंने क्या किया, चिंटू ने पूछा। पिताजी, वह खुद तो सारे दिन पानी में खेलती रहती है, उनके बच्चे भी पानी में तैरते रहते हैं, उन्हें तो वह मना नहीं करती। हम किनारे पर बैठे बैठे उनका खेल देखते रहते हैं। हमारा मन करता है कि हम भी उनके साथ खेलें, पर मुर्गाबी काकी ने मना कर दिया। उन्होंने हमें तालाब में पैर तक भी नहीं रखने दिया। मिंटू की बात सुनकर चिंटू चूहे ने उसे समझाया कि बेटा, मुर्गाबी काकी तुम्हारी भलाई की बात कहती हैं। हम पानी में तैर नहीं सकते, पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे। तुम अभी छोटे हो, ना समझ हो, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए। दूसरे दिन जब चिंटू बिल से बाहर चला गया तो उसके दोनों बच्चे भी बाहर निकले। इधर उधर घूमकर वे तालाब के किनारे आकर बैठ गए। बड़ी देर तक वे मुर्गाबी के बच्चों का खेल देखते रहे। कुछ देर बाद बड़ी मुर्गाबी खाना खाने चली गई। मिंटू ने सोचा कि अब तो हमें कोई रोकने वाला है नहीं, क्यों ना हम आज पानी में तैरें। वह अपने छोटे भाइयों से बोला, नीतू चलो आज हम भी तैरेंगे। प्रीतु बोला, भैया पिताजी ने मना किया था ना। मिंटू बोला, पिताजी को हम बताएंगे ही नहीं, तुझे पानी में खेलना है तो जल्दी चल। प्रीतु की बात बिना सुने ही मिंटू तालाब में तेजी से उतर गया। उसके पीछे पीछे धीरे धीरे नीतू पीतू भी आगे बढ़े। वे अभी पानी में उतरने की सोच ही रहे थे कि एक आवाज सुनाई दी। कोई जोर से कह रहा था, बचाओ बचाओ। उन्होंने ध्यान से सुना तो पता चला कि वह आवाज उनके बड़े भैया मिंटू की ही है। बात ये हुई कि तालाब था गहरा, मिंटू जैसे ही उसमें उतरा तो डूबने लगा। अब वही सहायता के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज सुनकर दूसरे किनारे पर तैर रहे मुर्गाबी के बच्चे भी दौड़े आए। उन्होंने गोता लगाकर मिंटू को निकालने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार गई। तालाब गहरा था, मिंटू का कुछ पता नहीं लग पा रहा था। नीतू पीतू ने भी तालाब में उतरने की कोशिश की, पर मुर्गाबी के बच्चों ने रोक दिया। वे बोले कि यदि तुम उतरोगे तो तुम भी डूब जाओगे। विवश होकर दोनों तालाब के किनारे बैठकर रोने लगे। थोड़ी देर में मुर्गाबियां घर से लौटकर आई। नीतू पीतू ने उन्हें रोते रोते सारी बात बताई। मुर्गाबी काकी बात समझ गई। तभी उसने अपने बच्चों के पास डूबते बहते मिंटू को देखा। काकी ने झपट कर अपनी चोंच से उसकी पूंछ पकड़ ली। उसने मिंटू को किनारे पर धूप में लिटा दिया। नीतू प्रीतू भी सहमे से उसके पास बैठ गए। शाम तक मिंटू में चलने फिरने की हिम्मत नहीं आ सकी। चिंटू चूहा तीनों बच्चों को घर में न पाकर ढूंढता हुआ तालाब के किनारे आया। सारी बात जानकर वह मिंटू को उठाकर ले गया। भीगने से मिंटू को बुखार भी आ गया था। कई दिनों तक उसने शीलू लोमड़ी की कड़वी दवाई खाई, भूखा प्यासा रहा। तब कहीं जाकर मिंटू ठीक हुआ। उसने और नीतू पीतू ने सोच लिया कि अब हम सदैव बड़ों की आज्ञा मानकर काम करेंगे। तो बच्चों, अभी आप कहानी सुन रहे थे हट का फल। कार्यक्रम में अब बारी है सामान्य ज्ञान की। आज का विषय है, क्यों होती है बारिश की बूंदें गोल।

0: बच्चों, बारिश किसे पसंद नहीं है। जब भी बारिश होती है मौसम सुहाना हो जाते है। बूंदों की बौछार लोगों को चारों ओर दिखाई देती है। पर आपने कभी सोचा है कि बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? ये सीधी या तिरछी क्यों नहीं होती? इसके पीछे भी वैज्ञानिक सिद्धांत है। बच्चों, बारिश की बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अब ये पृष्ठ तनाव क्या होते हैं और इसकी वजह से बारिश की बूंदें क्यों गोल हो जाती है? दरअसल में ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। जब पानी ऊंचाई से गिरता है और वो जैसे जैसे पृथ्वी के पास आता है वो बूंदों में बदल जाता है और पृष्ठ तनाव के कारण हमेशा गोल होता है। अब ये पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन क्या होते हैं? तो बच्चों, सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड की सतह का वह गुण होता है जिसके कारण ये प्रत्यास्थ की तरह फैल जाती है या सिकुड़ जाती है। इसमें इलास्टिसिटी गुण भी होता है। लिक्विड के इस गुण को आप गोलाकार बूंदों के पास या साबुन के बुलबुलों के पास भी देख सकते हैं। बच्चों, आकाश से नीचे आ रही बारिश की बूंदें धरती की तरफ आती है तो वो पृष्ठ तनाव के कारण न्यूनतम आकार ग्रहण करती हैं। और गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से देखें तो गोलाकार का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम आकार का होता है, इसलिए बारिश की बूंदें गोल होती हैं। अब जब भी बारिश हो तो आप ध्यान दीजिएगा, बारिश की बूंदों पर वो आपको गोल नजर आएगी। सामान्य ज्ञान के तहत आज का विषय था, क्यों होती है बारिश की बूंदें गोल। बच्चों, इसी के साथ फुलवाड़ी कार्यक्रम का आज का ये समय अब समाप्त होता है। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सूत्रधार अमलनाथ ठाकुर और प्रस्तुतकर्ता असद दौद को आज्ञा दीजिए। बच्चों, जय हिंद,
1: जय हिंद भैया।

अभी आप नन्हे मुन्ने बच्चों को संबोधित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम फुलवारी सुन रहे थे। प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया गया है।

0: घर नहीं रह गुजर में रहता है, घर नहीं रह गुजर में रहता है, पाँव मेरा सफ़र में रहता है, चारागर का करम तो है फिर भी दर्द ही दर्द सर में रहता है। ज़ख्म हो, दर्द हो या कोई बीमारी हो, हम में से कोई भी इसकी गिरफ्त में कभी भी आना नहीं चाहता, लेकिन ये ज़िंदगी न जाने हम इंसानों को किन शर्तों पर मिली है कि हर किसी को कभी न कभी कुछ ऐसे दर्द से गुजरना ही पड़ता है जो हमें परेशान हाल बना देता है, बेजार कर जाता है। हमारे सिर में होने वाला दर्द भी एक ऐसा ही मर्ज है जो जब उठता है तो मत पूछिए क्या हाल बना देता है। सामान्य सिर दर्द की अवस्था में लोग चिकित्सक की सलाह के बिना भी अक्सर दर्द निवारक गोलियां खाकर तत्काल राहत की सांस तो ले लेते हैं, मगर अलग अलग लक्षणों के साथ होने वाला अत्यंत तेज सिर दर्द कई बार खतरनाक भी साबित हो सकता है और स्थिति घातक भी बन सकती है। लगातार रहने वाले हल्के या तेज सिर दर्द के ज्ञात अज्ञात जो भी कारण हो, इसकी अनदेखी कतई ठीक नहीं। सवाल यह है कि ये सिर दर्द आखिर होता क्यों है? कभी कभार होने वाले सिर दर्द से लेकर आधे हिस्से में या किसी खास हिस्से में होने वाले सिर दर्द के संकेत क्या हैं? क्या ये संकेत सामान्य हैं या किसी जटिल जानलेवा बीमारी के संकेत? क्या ऐसा तेज सिर दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हल्के में लेना हमारी कोई बड़ी भूल हो सकती है? सिर दर्द की किन अवस्थाओं में हमें विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह और मदद लेने में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए? इन जैसे कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। कुछ इन्हीं बेहद महत्वपूर्ण तथ्यों पर केंद्रित है आज का हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है हेलो जिंदगी। श्रोताओं नमस्कार, संजय की तरफ से। सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज, यही है आज की हेलो जिंदगी का विषय। और इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आप श्रोताओं को जरूरी जानकारी और उचित परामर्श देने के लिए हमारे स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं जाने माने न्यूरोसर्जन डॉक्टर भुवन जी झा। डॉक्टर भुवन जी झा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट DMCH दरभंगा में। श्रोताओं, आप या आपके कोई परिजन सिर दर्द की किसी भी तरह की किसी भी पीड़ा से जूझ रहे हैं, पीड़ा को झेल रहे हैं, या फिर सिर दर्द को लेकर किसी भी तरह की कोई जानकारी या परामर्श चाहते हैं तो इसी वक्त आप हमें फ़ोन करें, डॉक्टर भुवन जी झा से परामर्श लें। संपर्क के लिए हमारे फ़ोन नंबर हैं 9430029353, 9430029353, 9430029353। आपकी सुविधा के लिए दूसरा नंबर है 06272222481, 06272222481। ये दोनों नंबर खुले हैं और समय हेलो ज़िंदगी का 12 बजे तक का है। एक बार फिर से विषय बता दें हेलो ज़िंदगी में, आज का विषय है सिर दर्द कारण, लक्षण और इलाज। बतौर विशेषज्ञ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी DMCH दरभंगा डॉक्टर भुवन जी झा आमंत्रित हैं हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर भुवन जी झा, आकाशवाणी दरभंगा के स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार। हेलो ज़िंदगी में पहली बार आप पधारे हैं, कैसे हैं सर?
1: ठीक है सर, थैंक यू।
0: आज बहुत सारी बातें होंगी सिर दर्द को लेकर। सिर दर्द को लेकर बहुत सारी बात ये होती है कि लोग बताते हैं, बच्चे बताते हैं कि होमवर्क करना सिर दर्द है,

0: भारी सिर दर्द है, कुछ लोगों के लिए पारिवारिक समस्याएं जो हैं वो सिर दर्द होती हैं, है ना। कुछ लोगों को धूप में निकलना हो तो बताएं कि ये तो बड़ा सिर दर्द है भाई, कौन निकले। यानी सिर दर्द का जो सामना है ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में, कहीं भी कभी भी हमें होता ही रहता है। लेकिन आज कार्यक्रम में सिर दर्द को हल्के से लेने की बात नहीं है, क्योंकि ये दर्द कई बीमारियों के लक्षण के तौर पर भी होते हैं, जिसकी हम लगातार अनदेखी करते हैं। आज बहुत सारी बातें होंगी। डॉक्टर भुवन जी झा, न्यूरोसर्जन बनने के पीछे जिज्ञासा तो होगी हमारे श्रोताओं को, जो डॉक्टर भुवन जी झा कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं और जहाँ तक आप पहुँचे हैं, ये सफ़र कैसा रहा, संक्षेप में बता दीजिए, फिर सर दर्द की बात हम करेंगे।
1: मैं यहाँ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में उमरी गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। आरंभिक शिक्षा दीक्षा सैनिक स्कूल तिलैया से हुई
0: जी,
1: फिर MBBS मैंने मुंबई से किया और फिर न्यूरो सर्जरी की जो फर्दर पढ़ाई है वो मैंने मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई से की है।
0: अच्छा,
1: और उसके बाद अभी मैं DMCH में एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट कार्यरत हूँ।
0: आपकी विशेषज्ञता का लाभ हमारे श्रोताओं को मिलेगा और सर दर्द को लेकर के जितनी बातें होती हैं वो बातें भी हम करेंगे। हमारे श्रोता भी जुड़ चुके हैं, देखिए एक साथ दो कॉल हमारे पास लगभग आ गए हैं। पहले फ़ोन जो मोबाइल लाइन है उस पर जो हमारे श्रोता हैं उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब आपसे जिज्ञासा तो होगी कि ये सर दर्द मर्ज है क्या। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, हाँ मोहन पासवान जी, कैसे हैं ये बताइए।
2: अच्छा,
0: जी आज सिर दर्द को लेकर क्या जिज्ञासा है मोहन पासवान जी।
2: लोगों को कभी कभी सिर दर्द कुछ देर रहने के बाद सतर्क समाप्त हो जाता है सर
0: जी,
2: किसी किसी को बिना दवा का दर्द ठीक नहीं होता सर, ऐसा क्यों होता है और इसका अस्थायी निदान क्या है सर। दूसरा व्यक्ति शरीर में किस कोशिका में किस विटामिन में रोज कमजोर होने के कारण सिर दर्द होता है सर, किस तरह का खान पान करना चाहिए जिससे ठीक हो जाए। ठीक सर, दैनिक जीवन और लॉन्ग लाइफ में किस तरह के कारण स्क्रीन दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द आदि से परेशान रहते हैं, बचने के लिए क्या करना चाहिए।
0: ओके,
2: मुख्य किसी को कपारी दर्द होता है तो किसी को थोड़ी कपारी, अगर कपारी और उन कपारी से छुटकारा पाने के लिए
0: आपका अंतिम सवाल, अंतिम सवाल, अंतिम सवाल जो अभी आपने कहा वो एक बार फिर से दोहरा दें।
2: अधकपाली,
0: हाँ ठीक ठीक, चलिए आज मोहन पासवान जी जितने सवाल आ गए हैं पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। ठीक है, आवाज़ आपकी डिस्टॉर्टेड आ रही है। ठीक है, जो मूल सवाल है उन सवालों को लेते हुए और जो अन्य सवाल है जैसे कि माइग्रेन है, अधकपाली दर्द, उसके बारे में कार्यक्रम में पूरी चर्चा होगी। क्या हो जाए जी, हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है, ओके धन्यवाद धन्यवाद मोहन पासवान जी। मोहन पासवान जी लगातार कई सवाल करते हैं, लेकिन जो पहला सवाल है कि कुछ दर्द ऐसा होता है जो स्वयं ठीक हो जाता है, थोड़ी सा आराम कर ले, थोड़ा सो जाए, है ना, तो ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दर्द सर दर्द ऐसा होता है जो बगैर दवा खाए सुनता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है, वो लोग कहते हैं कि जब तक हम 2-3 टैबलेट नहीं खा लें तब तक इस दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है, तो ये बात सवाल है। और कुछ विटामिन की कमी की बात कर रहे हैं कि क्या खान पान में अगर कुछ विटामिन और मिनरल्स हमें नहीं मिले तो क्या सर दर्द हो सकता है। दैनिक जीवन शैली की बात भी आज इस कार्यक्रम में करेंगे और अधकपाली की चर्चा उन्होंने की है कि पूरे सर का दर्द, आधे सिर का दर्द जो होता है, तो हम समझते हैं कि एक एक कर कार्यक्रम में ये सारे सवाल शामिल होंगे ही। एक बार फिर से अपने श्रोताओं को बता दें कि आज की हेलो जिंदगी का विषय है सिर दर्द, कारण, लक्षण और इलाज। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर भुवन जी झा न्यूरोसर्जन हैं, वो आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं, उपस्थित हैं। श्रोताओं 9430029353 इस नंबर पर आप फ़ोन कर इनसे संपर्क कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं, जिज्ञासा कर सकते हैं। और दूसरा नंबर है 06272222

0: 2481, ये दोनों नंबर हमारे आज खुले हुए हैं 12 बजे तक का समय। इस कार्यक्रम का एक और श्रोता जुड़ गया है। जी नमस्कार, हेलो, हमें लगता है रेडियो की आवाज़ बंद कर दें। हेलो हेलो, हम ऐसे में तो सुन पाएंगे नहीं। डॉक्टर साहब, जब हम सरदर्द कहते हैं तो सरदर्द का अर्थ क्या है? लोग कहेंगे ना कि ये सरदर्द ही है, कैसे समझे पहली बात, और ये जो होता क्यों है, कौन कौन से कारण हैं, ये पहला सवाल है।
1: अभी जैसे मोहन जी ने क्वेश्चन किया, वो एक्चुअली वो पूरे हमारे टॉक का समरी उन्होंने क्वेश्चन, हाँ, सारा क्वेश्चन
0: ऐसा ही करते हैं,
1: क्वेश्चन पूछा है उन्होंने। हाँ। तो सबसे पहले ये देखिए कि सर दर्द क्या है। सर दर्द जैसे कि नाम से ही है कि हेड में, मतलब आपके हेड के किसी भी पोर्शन में, जैसे आगे हो, पीछे हो, साइड में हो, बीच में हो, कहीं पे भी दर्द हो उसको सर दर्द बोलेंगे। अब नेक्स्ट ये होता है कि ये होता क्यों है। तो ब्रॉडली जब हम इसको मेडिकली डिफाइन करते हैं तो इसमें बोलते हैं कि एक प्राइमरी हेडेक है, एक सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक का ये मतलब है कि इसमें जो हमारा पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर है हेड में, जैसे कि मान लीजिए स्किन है, सबक्यूटेनियस टिश्यू है, पेरियोसियम है, उसमें यदि कोई पैथोलॉजी हो उसके कारण हो सकता है। सेकेंडरी का ये मतलब है कि अंडरलाइंग कुछ कॉज है। अंडरलाइंग कॉज में जो सबसे खराब कॉज होती है, जो कि हम लोग सबसे पहले हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है जब भी किसी को हेडेक होता है, तो एज ए न्यूरोसर्जन हमारे दिमाग में ये रहता है कि हमें सबसे पहले उस चीज़ को रूल आउट करना है जो कि सबसे डेडली है। तो उसमें जो सेकेंडरी कॉजेज में है कि मान लीजिए किसी का ब्रेन में नस फट गया हो, जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया हो, किसी को ट्यूमर हो, किसी को एनरिजमल रप्चर हो, तो ये सब चीज़ को हम लोग सबसे पहले रूल आउट करते हैं। तो जैसा कि मोहन जी ने क्वेश्चन किया, तो जो उनका जो दर्द है वो प्राइमरी हेडेक में आता है। तो प्राइमरी हेडेक में उन्होंने जैसे कहा कि किसी का दर्द कुछ दवा लेने से ठीक होता है, किसी का दर्द
0: बगैर दवा
1: के ठीक हो जाता है।
0: लेकिन तो देखिए एक बात और भी है, एक श्रोता अभी उनका जुड़ाव हो चुका है, लाइन पर है, उनको कहेंगे थोड़ी देर और होल्ड कर ले,
1: तो उनसे भी ले सकते हैं,
0: ले सकते हैं। लेकिन एक बात तो है ना कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय में होने वाला जो सर दर्द है ना, उसकी स्थिति भी अलग अलग हो सकती है। कभी बगैर दवा का भी ठीक हो सकता है, कभी दवा लेने के बाद भी ठीक हो सकता है, कभी दवा लेने के बाद भी 2 से 3 दिन तक दर्द बना रहता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: और एक ही व्यक्ति है, उनकी अलग अलग कंडीशन हो सकती है।
1: इसमें समझिए कि ये जो आपको होता है कि एक ही व्यक्ति में तीन अलग अलग तरह का हेडेक है, तो इसमें है कि आप पहले ये देखिए कि अंडरलाइंग कॉज क्या है। एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई आदमी है जो रात भर नहीं सोया है, तो जब वो सुबह उठेगा उसको काफ़ी दर्द होगी।
0: सही।
1: वही आदमी यदि जैसे आपने शुरू में ही कहा कि काम के बोझ के कारण हेडेक है, तो मान लीजिए किसी को वो एक्यूट ऑनसेट कोई टेंशन थोड़ा सा हुआ तो उसका जो दर्द होगा वो थोड़ा कम होगा। रात भर जो नहीं सोया है उसका ज्यादा दर्द होगा। मान लीजिए किसी पार्टी में गया, 2 रात नहीं सोया, तो उसको दर्द ज्यादा होगा। तो मान लीजिए जो छोटा सा जो एक्यूट जो कम समय के टेंशन के लिए दर्द है, उसमें हो सकता है कि वो अच्छे से आराम करे, सोए, तो उसका दर्द ठीक हो जाएगा।
0: इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बुरी खबर ने दर्द दिया, एक अच्छी खबर ने दर्द समाप्त कर दिया। अगर हमने 4 घंटे 5 घंटे की नींद ले ली, तो एक अच्छी खबर है, उससे स्ट्रेस खत्म हो गया।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: या फिर जिस सिचुएशन में आप थे उसका निदान हो गया, अब आप रिलैक्स फील कर रहे हैं।
1: अब जैसे अब ये भी है कि जैसे आप
0: एक श्रोता बने हुए। जी नमस्कार, हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: जी नमस्कार, कौन बोल रही है?
2: ज्योति कर्ण बोल रहा हूँ।
0: जी ज्योति कर्ण जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
2: सीतामढ़ी से।
0: सीतामढ़ी से, बताइए क्या जिज्ञासा है, क्या सवाल है?
2: डॉक्टर साहब से पूछना था कि मतलब जो सर दर्द होता है बहुत ज्यादा होता है, बिना दवा का ठीक नहीं होता। एक डॉक्टर से भी हम दिखाए थे, माइग्रेन बोले हुए थे, इसमें हम दवा प्रोवेनोल प्लस और मैग्रियम और टोपास 25 लगभग हम 6 महीना इलाज करवाया, ठीक रहता था। जब दवाई छोड़ देते थे फिर दर्द।
0: अच्छा, ये
2: वीकली होता था।
0: ज्योति जी हमें ये बताइए कि आपकी ये जो तकलीफ है वो कितने अरसे से है, क्या कुछ साल से है, कुछ महीने से
2: है? जी सालों से, मतलब दो ढाई साल से।
0: आपने इलाज बहुत दिनों से है। इलाज आपने कब कराया? आपने इलाज की शुरुआत जो है
2: पिछले साल करवाए थे।
0: अच्छा, बहुत साल से ये दर्द बना हुआ था, आपने पिछले साल इसका इलाज कराया, 5-6 महीने आपने दवाइयाँ ली, जो दवाइयाँ डॉक्टर साहब को आपने बताई हैं, है ना? आपका कहना ये है कि अब भी ये

0: दर्द जो है बना रहता है, क्या ये दर्द वैसे ही बना हुआ है? ज्योति जी, डॉक्टर साहब के हवाले से हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे पहले था, इलाज से पहले जैसा दर्द था, क्या अब भी आपको वैसा ही दर्द आ रहा है? और दूसरी बात ये बता दीजिए कि इलाज के दौरान जब दवाएं आप ले रही थी, तो क्या ये दर्द खत्म हो गया था या थोड़ा बहुत हो ही रहा था? ये दो कंडीशन बता दीजिए डॉक्टर साहब।
1: कम हो गया था, पहले वीकली होता था, उसके बाद 15 दिन के होने लगा, मतलब कम हो गया था, लेकिन दवा छोड़ देने के बाद फिर वही हफ्ता में 2 दिन ऐसे बिना दवा का दर्द जब शुरू होता है तो बिना दवा का
0: ठीक नहीं होता है।
1: नेक्स्टम खाते हैं, जब दर्द होता है तो नेक्स्टम खाते हैं।
0: अच्छा, अब एक एक जानकारी और दे दीजिए, ये जानकारी ये दे दीजिए कि क्या डॉक्टर साहब ने आपको कहा था कि दवा बंद कर दें?
1: हेलो,
0: क्या डॉक्टर साहब ने आपको सलाह दी थी कि अब दवा खाने की जरूरत नहीं है, या आपने अपने मन से बंद कर दिया?
1: नहीं, वो बोले हुए थे तो दिखा लेने के लिए आपको, पर उस दवा से बहुत वजन बढ़ता था, फिर सोचे थे कि कुछ प्रॉब्लम वसन नहीं जा पाए,
0: जी
1: कुछ प्रॉब्लम हो गया था तो नहीं इलाज से कंटिन्यू कर
0: अच्छा
1: पाए।
0: नहीं कर पाए। डॉक्टर साहब, सारी स्थितियां आपने समझ ली होंगी।
2: हाँ ज्योति जी, हाँ हेलो, हाँ हाँ, जो आपने ट्रीटमेंट जो आपने बोला वो तो ठीक ही ट्रीटमेंट है, लेकिन इसमें क्या, जैसे आप बोल रहे थे कि जब दवाई ले रहे थे तब ठीक था और जब दवाई छोड़े तब आपका वो फिर से रिकर हो गया। देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी एक नाम की चीज़ है, जैसे जो चीज़ आपको ये करता है, जैसे कि धूप में जाने से किसी किसी को सर दर्द होता है, किसी को फास्टिंग रहने में, जैसे हाँ,
1: अब तो मतलब कुछ करते भी नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, फिर अचानक दर्द शुरू हो जाता है, कहीं जाते भी नहीं फिर भी दर्द शुरू हो जाता है, अब तक दवा नहीं लेते हैं तब तक नहीं आराम होता है।
2: तो इसका ये मतलब हुआ, देखिए एक ये है कि यदि धूप में जाने से होता है तो आप छाता लेके जाएं, आपके लिए भी नहीं किसी दूसरे श्रोता के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन तो आएगा ही। तो माइग्रेन में जैसे लोग धूप में जाते हैं तो होता है, तो धूप से बचें, फास्टिंग से होता है तो फास्टिंग ना करें, जैसे आप सुबह में उठते हैं तो 1 घंटे के अंदर में कुछ खाना जरूर खा लें, अच्छी नींद लें, तो ये सब तो हुआ। बाहर का खाना ना खाएं, जैसे पेय पदार्थ होते हैं जो बिवरेजेज होते हैं बाहर के, वो सब ना लें। और जैसा कि आप बोल रहे हैं तो आपको इसका मतलब है कि दवा की ज़रूरत है, और दवा ये सब जो दवा होती है ब्रेन की, ओवरऑल जो ब्रेन की दवा होती है उसको हम तुरंत बंद नहीं करते हैं। एग्जाम्पल की तरह समझिए कि जैसे गैस की कोई दवा है तो उस वो आज हम खाए और कल से बंद कर दिया हमने, और ये सब जितनी भी ब्रेन की दवाइयाँ होती हैं उसको एब्रप्ट बंद नहीं करते हैं। तो जो भी आपके डॉक्टर हैं उनके पास आप जाएं और उनको बोलें कि धीरे धीरे डोज को कम करते हुए उसको बंद करें। तो एक तो यह है कि जो वो नियर बाय आपके डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर से आप दिखा रहे हैं उनके पास जाएं, और यदि आपको आपका हेडेक उस दवाई से रिलीफ हुआ है तो धीरे धीरे उस डोज को वो कम करेंगे, कम्प्लीटली बंद ना करें। तो आपके लिए यही है कि दवा को कम्प्लीटली बंद ना करें, दवा अभी आप कंटिन्यू रखें, ठीक है? देखिए क्या है कि कोई भी दवा जो है, कोई भी दवा होती है, वो हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, लेकिन उसमें ये देखना है कि कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें पहले पॉजिटिव देखते हैं या नेगेटिव देखते हैं। यदि आपको दर्द हो रहा है तब तो आपको लेना ही पड़ेगा, आप समझ रहे हैं? तो पहले तो देखना है कि उस दवा से हमको कितना आराम मिल रहा है, लेकिन यदि उस दवाई को हमको बार बार लेने की ज़रूरत पड़ी, इसका मतलब है कि उसके अलावा भी कुछ दवाई लेना पड़े जिससे कि हमको आराम हो। और जहाँ तक क्वेश्चन आपने पूछा, कुछ भी कोई भी पेन किलर आप लेते हैं तो उस पर किडनी पे थोड़ा असर पड़ता है, तो जो आपके नियर बाय डॉक्टर होंगे वो आपको अच्छे से बता देंगे, वो बीच बीच में चेक भी करेंगे कि आपका किडनी डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए घबराए नहीं, नियर बाय डॉक्टर के पास जाएँ, आप ठीक हो जाएंगे।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति जी। माइग्रेन की समस्या औरतों में थोड़ी ज़्यादा होती है क्या?
2: हाँ हाँ होती है
0: ना, ये सवाल है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको लेकर के औरतों में इसकी संख्या ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे दर्द भी हैं जो पुरुषों में ज़्यादा होते हैं। एक और हमारे श्रोता हैं, जी नमस्कार, हेलो, जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: महाकांत सिंह हनुमानगढ़ राजस्थान से बोल रहा हूँ सर।
0: जी महाकांत सिंह जी, बताइए क्या जिज्ञासा है?
3: जिज्ञासा ये है कि आँख के कारण भी क्या पीठ में दर्द हो सकता है?
0: आँख के कारण अगर आँख की गड़बड़ी है तो डॉक्टर साहब?
2: हाँ बिल्कुल हो सकता है महाकांत जी, आँख
3: जी सर,
2: हाँ बिल्कुल हो सकता है। और हम लोग जब पेशेंट हमारे पास हेडेक का लेके आता है

0: तो हम लोग इस चीज़ पे जोर देते हैं, पहले आँख का भी चेक करवाते हैं। यदि आपको आँख में कोई प्रॉब्लम हो, यदि आपको देखने में कोई दिक्कत हो, तो होता ऐसा है कि जब आपको देखने में दिक्कत होती है तो आप बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड होकर उस चीज़ को देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जब इतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन होते हैं तो उस पर आपके ब्रेन पर असर पड़ता है और इसी कारण आपको सर दर्द होता है। तो आपने जैसा क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर हाँ है, और यदि आपको ऐसा है तो बिल्कुल आप सबसे पहले आँख के डॉक्टर के पास जाएं और आँख का चश्मा का पावर एक बार चेक करवा लें।
1: एक और आँख में समस्या हो सकती है डॉक्टर साहब, ग्लोकोमा।
0: हाँ,
1: ग्लोकोमा एक ऐसी बीमारी है जो अमूमन पेशेंट को पता नहीं होती है कि ये बीमारी है, उनके साथ लगी हुई है, और जब ये दर्द शुरू होता है तब जाकर जागते हैं, और जब दिखाते हैं तो मालूम होता है कि उन्हें काला मोतियाबिंद हो चुका है।
0: ये इसीलिए
1: हाँ
0: ज़रूरी है कि जब आपको सर दर्द हो तो आप एक बार ज़रूर किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं। ये आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या बीमारी है, और जब आप किसी नियर बाय डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि आपको आँख में दिक्कत है, कि आपको ब्रेन में दिक्कत है, उसके कारण हो रहा है। तो इसलिए यदि आपको सर दर्द आपको है और बहुत दिन से है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ज़रूर एक बार नियर बाय जो भी आपके MBBS डॉक्टर हों, जो स्पेशलाइज डॉक्टर हों, उनके पास जाएँ और ज़रूर चेक करवाएँ।
2: डॉक्टर साहब का ठीक रहा है सर, हमें तो बहुत लाभ मिलता है हेलो जिंदगी से। एक बार डॉक्टर ओम प्रकाश को लाए थे तो सैकड़ों लोगों को फायदा मिला है सर।
1: महाकांत सिंह जी, अगर कार्यक्रम को आपने शुरू में सुना होता तो हमने बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी DMCH दरभंगा में, ये HOD हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, विभागाध्यक्ष हैं। DMCH में जाकर इनसे आप मिल सकते हैं, है ना डॉक्टर साहब? OPD होगा आपका,
0: OPD है सोमवार और बृहस्पतिवार।
1: सोमवार और बृहस्पतिवार को डॉक्टर भुवन जी झा OPD में रहते हैं, है ना? तो
2: जी सर,
1: जितने भी हमारे श्रोता हैं बार बार ये सवाल करें, उससे बेहतर है कि एक बार
0: सुपर
1: जान लें।
0: स्पेशलिटी बिल्डिंग में, हाँ
1: सुपर स्पेशलिटी
0: बिल्डिंग में
1: बिल्डिंग जो
0: जाना है।
1: है DMCH में, उसमें जाकर दिखा सकते हैं डॉक्टर साहब से, है ना?
2: बहुत धन्यवाद, आभार सर, और विशेषज्ञ महोदय को सादर प्रणाम सर।
0: प्रणाम प्रणाम।
1: चलिए, उनके तरफ से भी प्रणाम निवेदित है मेरी तरफ से भी, और धन्यवाद आपका भी कार्यक्रम सुनने के लिए, कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाकांत जी।
2: थैंक यू सर।
1: डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा हेडेक की जो समस्या होती है ना, आपके पास तो पेशेंट्स आते होंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कब सबसे ज़्यादा संख्या किन लोगों की होती है, किस तरह के मतलब हेडेक को लेकर के लोग आते हैं?
0: ज़्यादातर मेरे पास फीमेल आती हैं,
1: जी
0: और एज ग्रुप 20 to 40 years एज ग्रुप होता है।
1: जी हेलो हेलो जी, हम आपकी आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं। दोबारा से अगर इस नंबर से श्रोता, अगर आपको दिक्कत हो रही है, हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, किसी और नंबर से ट्राई करें, क्योंकि बार बार इसी नंबर से कॉल आ रहे हैं और हमें ठीक से बात नहीं हो पा रही है आपसे बात करने में। दूसरे नंबर से ट्राई करेंगे तो शायद बढ़िया रहेगा।
0: हाँ, और बहुत सारे ऐसे
1: जी
0: केसेस हैं जो मेजोरिटी केस हम लोग हेडेक का देखते हैं, उसमें मेजोरिटी है कि उसमें जो अंडरलाइंग कॉज जो है वो सीवियरिटी कम होती है,
1: अच्छा
0: तो मेजोरिटी मोर देन 90% जो है वो दवाई से ठीक होने वाली बीमारी है हेडेक। तो इसलिए बहुत घबराएं नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हेडेक हो तो आप नियर बाय डॉक्टर के पास जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट हेडेक में, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आपने शुरू में बताया था कि एक होता है कि वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ। वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ का ये मतलब हुआ कि आपको अभी तक ऐसा दर्द अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आया है। यदि आपके साथ ऐसा है तब आप, ये इमरजेंसी है,
1: हाँ
0: ये इमरजेंसी है,
1: चलिए
0: यदि आपको ऐसा है तो।
1: इस बात पे हम थोड़े आराम से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत अहम बात है, और इसमें लोग चूक कहाँ करते हैं, कहाँ गलती हो जाती है, कहाँ भूल हो जाती है, और उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। डॉक्टर साहब, ये पूरी बात हम आपसे जानेंगे, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी है जानना। एक श्रोता जुड़ गए, उनसे हम बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, हेलो हेलो
3: हेलो,
1: जी नमस्कार, अपना नाम बताएं।
3: मेरा नाम सुचिता है, मैं बिरौल दरभंगा से बात कर रही हूँ।
1: सुचिता जी, है ना, बताइए क्या जी। जी क्या नाम बताएं?
3: सुचिता, सुचिता
1: सुचिता, सुचिता ही ना, हाँ बताइए क्या जिज्ञासा है।
3: मेरे सर में कभी कभी पेन
1: हाँ
3: होता रहता है,
1: अच्छा,
3: हेडेक होता रहता है।
1: हाँ, ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है, और ये दर्द कब से है, कैसे दर्द होता है, क्या रोज़ होता है, या बीच बीच में होता है, या सुबह जगने के साथ शुरू हो जाता है, या फिर,
3: मेरे
1: हाँ
3: 23 है।
1: जी

0: डेली होता, कभी कभी होता है, वीक में लाइक 2 बार।
1: वीक में 2 बार? किस हिस्से में, सर के किस हिस्से में दर्द होता है आपको?
0: बैक में,
1: जी बैक में, पीछे की
0: और
1: तरफ?
0: सर के पीछे वाले हिस्से में।
1: पीछे। अच्छा ये बताइए कि जब ये दर्द शुरू होता है तो हल्के हल्के शुरू होता है, फिर बाद में तेज हो जाता है, फिर दवा खाती हैं या फिर दवा के ही आराम हो जाता है?
0: कभी कभी मेडिसिन लेना पड़ता है, कभी कभी बिना मेडिसिन के भी आराम हो जाता है।
1: इसके साथ और कोई दिक्कत होती है क्या आपको? नहीं। अच्छा ये बताइए कि क्या मतलब आपने कभी गौर किया है कि जो दर्द है किसी खास वजह से भी होता हो? आपने कभी सोचा हो कि ठीक से आप सो नहीं पाई हो या फिर कोई स्ट्रेस हो, इस तरह की कोई बात नहीं? या गर्दन मूवमेंट में कोई पेन हो, ऐसा कुछ नहीं है?
0: हाँ, गर्दन मोमेंट में पेन होता है थोड़ा सा,
1: अच्छा,
0: बट बाकी कुछ नहीं।
1: चलिए बाकी बातें डॉक्टर साहब आपसे पूछेंगे और बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर
2: हाँ
1: साहब।
2: सुचिता जी, सुचिता
0: हाँ
2: जी,
0: जी,
2: ये दर्द जब होता है तो मॉर्निंग में ज़्यादा होता है आपको कि आफ्टरनून इवनिंग, कब दर्द ज़्यादा होता है, सुबह में होता है कि शाम में होता है?
0: कभी कभी मॉर्निंग, कभी कभी आफ्टरनून।
2: अच्छा कभी भी हो सकता है। और उल्टी जैसा लगता है जब दर्द होती है तो? कभी कभी उल्टी जैसा भी लगता है। और दवा खाती हैं तो
0: वो
2: आराम हो
0: रहता है,
2: जाता
0: हाँ
2: है?
0: आराम हो जाता है। मेडिसिन कौन
2: कौन सा मेडिसिन खाते हैं?
0: सा एक्चुअली बताती हूँ।
2: अच्छा कोई भी मेडिसिन जाते हैं लेते हैं तो उससे ठीक हो जाता है?
0: मोस्ट ऑफ द टाइम पीसीएम लेती हूँ।
2: अच्छा, ठीक है। तो जो जैसा आपने दर्द की जो क्वालिटी और दर्द का जो सिम्टम आपने बताया है, इसमें ऐसा हिस्ट्री से तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको कोई सीवियरिटी अंदर से कुछ ज़्यादा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराए नहीं। और यदि महीने में आपको दर्द की दवा 4 बार 5 बार लेनी पड़ती हो, तब तो
0: हाँ, लेनी
2: आप
0: तो
2: नियर
0: पड़ती
2: बाय
0: है। अच्छा,
2: डॉक्टर से वो ज़रूर दिखाएं। और यदि आपको महीना में 1 या 2 बार पैरासीटामोल लेने से ठीक हो जाता है तो बहुत घबराने की बात नहीं है। और जैसा आपने बोला कि आपको गर्दन में भी दर्द होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है जो इसको सर्वाइकल होता है उसके कारण भी उसको दर्द होता है, तो एक बार आप सर्वाइकल भी जो नियर बाय डॉक्टर आपके होंगे उनसे एक बार जाके चेक करवा लें, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन लेकिन आपके केस में जो आपने हिस्ट्री बताई उसमें बहुत घबराने वाली बात ऐसी नहीं दिख रही है। ठीक है। हाँ और ज़्यादा दिक्कत हो तो एक जो नियर बाय आपके डॉक्टर होंगे उनसे आके एक बार मुलाकात कर लीजिएगा।
0: थैंक यू।
2: ठीक।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुचिता, कार्यक्रम सुनने के लिए, फ़ोन लगाने के लिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। अगला कॉल आए इसके लिए हम फिर से बता दें अपने सुनने वालों को कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो जिंदगी। हेलो जिंदगी में आज का विषय है सिर दर्द, कारण, लक्षण और निदान यानी इलाज। विशेषज्ञ हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, DMCS दरभंगा, डॉक्टर भुवन जी झा। श्रोताओं, सिरदर्द को लेकर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके पास है तो आप साझा करें। डॉक्टर भुवन जी झा आपकी समस्या को सुनेंगे और सही सलाह मशविरा आपको देंगे। जुड़ जाइए हमारे साथ 9430029353 इस नंबर पर। एक श्रोता जुड़े हुए हैं, एक और नंबर है 0627222481, 0627222241। एक श्रोता है जी। नमस्कार। हेलो हेलो
3: हाँ, रात सर, हम
1: जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
3: तलवारा स्टेशन से सके पूरा रतनपुरा गांव से कासिम बोल रहे हैं सर।
1: हाँ कासिम भाई, बताइए क्या है दिक्कत, क्या सवाल है, क्या जिज्ञासा है, बताइए।
3: सर दिक्कत यह है कि हमको मैंने DMCS में 4 महीना तक इलाज हुआ, वो गर्दन का हमको जो है बेल्ट भी लिख दिए बाहर से, सब खरीदे लगाए, लेकिन आज तक दर्द नहीं दिया है
1: कहाँ दर्द रहता है कासिम जी आपको?
3: सर। गर्दन में, दाया साइड गर्दन में।
1: गर्दन में दर्द रहता है, सर में दर्द नहीं रहता है, गर्दन में दर्द रहता है ना?
3: जी सर, गर्दन
1: अच्छा,
3: में।
1: एज क्या है आप?
3: बहुत ही सर परेशानी होता है
1: हाँ एक बात बताइए कासिम जी, आपकी उम्र कितनी है?
3: सर। हमारी उम्र लगभग 75 मान के चलिए।
1: आपने कहा है कि बहुत दिनों तक आप DMCH में भर्ती थे, है
3: आप
1: ना?
3: सर DMCS में हड्डी वाले ने जो है तो
1: हाँ।
3: एक्सरे करवा है, तो हमको शीशा रहता है, डॉक्टर साहब जो बैठते हैं बगल में शीशा, उस शीशा में एक्सरे

0: हटा के देखते तो बोले कि आपका हड्डी सब चपा हुआ है। अच्छा, जो जो दवाई बाहर से लिखे यहाँ अंदर से दिए सब दवाई हम खाए। गर्दन का पट्टी भी सर अभी है हमारे पास में जो हम लगाते हैं
1: जी,
0: हमें कोई सुनवाई नहीं है, कोई दर्द नहीं जा रहा है। सारा दर्द जो उठता है तो बुझाता है कि एकदम दिमाग को चकरा दिया। और हर 5 मिनट 7 मिनट पर दिन हो या रात वो झुनझुनी टाइप से गर्दन से आता है आधा पौना आधा पांच तक, फिर वहां से लगता है।
1: कासिम जी, कासिम जी,
0: डॉक्टर साहब को जो ये बात बोले सर कि हमको ऐसे ऐसे झुनझुनी आता है, तो डॉक्टर साहब बोले कि नस जाम है आपका, इसलिए खून पार नहीं कर पाता है।
1: हाँ,
0: तो ये दवाई सब लिखते हैं देते हैं खाइए, तो सब दवाई तो खाते खाते तंग आ जाए।
1: कोई बात नहीं है कासिम जी, आपने आपने मुझे लगता है

0: बात बोले सर कि हमको ऐसे ऐसे झुंझुनी आता है, तो डॉक्टर साहब बोले कि नस जाम है आपका, इसलिए खून पार नहीं कर पाता है।
1: हाँ।
0: तो ये दवाई सब लिख कर देते हैं खाइए, तो सर दवाई तो खाते खाते तंग आ गए, लेकिन
1: कोई बात नहीं है कासिम जी,
0: कोई
1: आपने आपने मुझे लगता है स्पाइन न्यूरोलॉजी का ये मैटर है, स्पाइन सूटर, डॉक्टर साहब आपको बेहतर बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा डॉक्टर साहब आपको कौन सी सलाह दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। जी
2: हाँ कासिम जी, ये जो जो प्रणाम प्रणाम, झुंझुनाहट दोनों हाथों में होती है? अच्छा देखिए, हाँ कासिम जी, ये देखिए आपको एक्चुअली क्या है कि गर्दन में नस दबी हुई है, उसी का ये सिम्टम होता है। तो आप जब नस दबती है तो इसका देखिए जो भी ट्रीटमेंट होता है वो दो ही तरह का ट्रीटमेंट होता है। एक होता है कि आप दवाई से ट्रीटमेंट करें, और दवाई से यदि इम्प्रूव ना हो तो सर्जरी करवाएं। तो जैसा आप बता रहे हैं और 4 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है आपका और दवाई से इम्प्रूव नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब होता है कि इसमें सर्जरी की ज़रूरत है। सुनिए सुनिए सुनिए कासिम जी, सुनिए, देखिए ट्रीटमेंट जो होता है वो तो कोई भी हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए बराबर ही होता है। तो इसमें लेकिन जैसा आप बता रहे हैं सिम्टम, उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो एक बार आप आएँ, हम लोग DMCH में उसको देखते हैं, और ये जो स्पाइन में जो दिक्कत होती है उसको हम ही लोग देखते हैं। लेकिन इसमें जैसा आप सिम्टम बता रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है कि आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन एक बार आप आएँ और हमको दिखाएं, DMCH में आके सोमवार और बृहस्पतिवार को हम बैठते हैं, तो एक बार आएँ दिखाएं, फिर देखेंगे ऑपरेशन की ज़रूरत होगी तो फिर उसको फर्दर कुछ किया जाएगा। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत लग रही है मुझे। सुनिए सुनिए, आप सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग में आएँ, न्यूरो सर्जरी में आएँ, ब्रेन और स्पाइन हम लोग देखते हैं। एक बार आप आएँ, हम आप हमको दिखाएं, सोमवार और बृहस्पतिवार को हम रहते हैं वहाँ, एक बार आप आ जाइए उधर।
1: कासिम जी का सोमवार और गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को डॉक्टर साहब सुपर स्पेशलिटी जो ये है उस बिल्डिंग में आप आ जाइएगा सोमवार और गुरुवार को, है ना, बृहस्पतिवार को, तो वो देख लेंगे, डॉक्टर साहब स्वयं भी देख लेंगे, आप देख दिखवा लीजिए एक बार तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। हाँ, हो सकता है आप वहाँ आ जाइएगा, बोलिएगा न्यूरो डिपार्टमेंट में जाना है, है ना, न्यूरो सेक्शन में, न्यूरो में नस नस वाले विभाग में दिखाना है, माथा और नस वाले विभाग में, है ना, माथा और नस वाले
0: विभाग में,
1: हाँ हाँ माथा और नस विभाग में, उस विभाग में चले जाइएगा, डॉक्टर साहब देख लेंगे। और ज़्यादा उम्मीद है जैसा बता रहे हैं कि एक सर्जरी की ज़रूरत हो सकती है आपको, लेकिन सही सलाह जब रिपोर्ट देखेंगे डॉक्टर साहब अच्छे से तो आप। हेलो हेलो,
0: नमस्कार
1: जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना।
0: मैं दिनेश मिश्रा, सरसपाई
1: जी, दिनेश।

0: हेलो
1: हाँ
0: हेलो
1: नमस्कार सर। हो
0: जी, नमस्कार। नाम बताएं अपना।
1: मैं दिनेश मिश्रा से सपाही
0: जी दिनेश मिश्रा जी, बताइए क्या जिज्ञासा है।
1: जिज्ञासा आज का ये रहता है कि जैसे मैंने मस्तिष्क पेन का बात चल रही है, तो
0: जी हाँ,
1: जैसे दिन में कभी कभार, मैंने जैसे आज हुआ तो फिर 5 दिन नहीं, फिर कभी कभार तो लगता है, अगर जैसे घर में बैठे हुए हैं
0: जी
1: तो एकाएक लग रहा है कि घर जैसा घूम रहा है और चक्कर आ जाएगा
0: अच्छा,
1: और फिर अपने आप 2 मिनट में वो ठीक भी हो जाएगी।
0: ब्लड प्रेशर की स्थिति क्या है आपकी और उम्र कितनी है, डॉक्टर साहब को बता दीजिए।
1: अच्छा जी, धन्यवाद सर।
0: उम्र कितनी है आपकी, डॉक्टर साहब को
1: उम्र
0: बता।
1: है 45,
0: 45,
1: हाँ 45 के आसपास।
0: 45 साल की उम्र है और बीपी कितना रहता है, ब्लड
1: जैसे घर में
0: प्रेशर।
1: कभी कभी रहते हैं, पेपर वगैरह पढ़ते हैं
0: हाँ बीपी की बात कर रहा हूँ
1: तो
0: मैं।
1: ऐसा लगेगा कि एकाएक जैसे घर जो है घूम रहा है
0: हाँ, ये बात हमने समझ
1: और
0: ली है।
1: चक्कर आ जाएगी। ब्लड
0: ब्लड प्रेशर जो है, ब्लड प्रेशर कितना रहता है आपका, ब्लड प्रेशर कितना रहता है।
1: तो नहीं, जांच नहीं करवाया सर।
0: अच्छा
1: ब्लड प्रेशर या
0: ठीक,
1: ये जो है शुगर जो है ये वगैरह नहीं है,
0: लेकिन जांच कराइएगा। ठीक
1: जांच
0: डॉक्टर
1: वगैरह
0: साहब।
1: करवाए नहीं है, लेकिन
0: अच्छा
1: अपने आप जो सिम्टम से ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन हो सकता है ब्लड प्रेशर हो।
0: हाँ डॉक्टर साहब, और भी चीज़ें पूछेंगे आपसे। जी बात कीजिए। जी
2: हेलो दिनेश जी,
1: नमस्कार
2: नमस्कार नमस्कार। आपको जब ये होता है तो उसमें उल्टी का एहसास होता है?
1: सर। नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं
2: अच्छा, उल्टी उल्टी नहीं होता है। माथा में उस
1: नहीं
2: समय दर्द होता है?
1: कामाखा में हाँ
2: हाँ
1: बीच में लगेगा कि सर मैंने घर घूम रहा है
2: अच्छा, उस समय बेहोश होते
1: और
2: हैं आप, बेहोश होते हैं?
1: सेकंड बार के लिए
2: अच्छा, सेकेंड बार के लिए बेहोश होते हैं। देखिए जो सिम्टम आप
1: अपने
2: बता रहे हैं, जो
1: आ जाता है ब्लड सर।
2: हाँ, जो सिम्टम आप बता रहे हैं उसको मेडिकली हम लोग बोलते हैं वर्टाइगो। तो इसमें क्या होता है कि
1: अच्छा
2: सडन आपको चक्कर आता है, तो इसके कारण तो बहुत होते हैं। मेन एक कारण जो इसमें होता है, एक ब्रेन हो सकता है, ब्रेन में कोई दिक्कत होने पर ऐसा चक्कर आता है। किसी किसी को सर्वाइकल होने में, सर्वाइकल में कोई प्रॉब्लम है उसमें हो सकता है, या किसी को हार्ट में दिक्कत हो उसको हो सकता है, या हो सकता है किसी को कान में दिक्कत हो उसमें हो सकता है। अब जैसा कि आप उम्र बता रहे हैं 45 ईयर्स, तो कभी कभी क्या होता है कि जब बीपी हाई होता है तो उस केस में भी ऐसा वटाइगो हो सकता है। तो आपको यही सलाह रहेगी, आप नियर बाय एक बार डॉक्टर के पास जाएं और जो बेसिक टेस्ट होता है, बेसिक मिनिमम ब्लड प्रेशर और ये सब एक बार वो चेक कर लेंगे और फिर आपको बताएंगे कि क्या आगे करना है। लेकिन इसमें ज़रूर है कि आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी है, फिजिकली आप किसी डॉक्टर के पास जाएं।
1: दवा भी नहीं लेते हैं बिना जाने में, दवा भी तो नहीं लेना चाहिए,
2: क्या चीज़?
1: इसलिए दवा का तो चलन करते ही नहीं है।
2: नहीं, लेकिन एक बार आप ज़रूर एक बार
1: हाँ
2: किसी नियर बाय डॉक्टर को
1: दिखाना
2: जाएं।
1: दिखाना जरूरी है।
2: हाँ, दिखाएं, क्योंकि चक्कर इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए।
1: नहीं,
2: हाँ
1: बिल्कुल
2: हाँ
1: नहीं।
2: हाँ ठीक, आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर आप अपने नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं।
1: धन्यवाद सर,
2: ओके
1: धन्यवाद।
0: जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये जो बात हो रही थी ना, कि आपने कहा कि किसी को अचानक से ऐसा सर का दर्द हो जो पहले कभी नहीं हुआ है, और ये स्थिति जो है घातक भी हो सकती है, खतरनाक भी हो सकती है, लेकिन हमारे श्रोता जो हैं मौका नहीं दे रहे हैं। एक और श्रोता जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, हमें सहूलियत हो जाएगी आपसे बात करने में। अपना नाम बताएं जी, अपना नाम बताएं। जी
1: पंचायत
0: राम बहादुर जी, रेडियो की आवाज़ बंद कर देंगे तो हमें सहूलियत हो जाएगी आपसे, ठीक से हम बात कर पाएंगे। बंद कर दें रेडियो को। हाँ अब बताइए क्या जिज्ञासा है, क्या पूछना है डॉक्टर साहब से।
1: साल
0: जी हाँ जी, क्या है राम बहादुर जी, 20 साल से किस
1: हाँ
0: हार्ट के पेशेंट हैं 20 साल से। जी समस्या क्या है।
1: 20 साल पहले एक दफा हार हुआ था, लेकिन
0: हाँ
1: ग्रंथा करने के उससे ठीक हो गया था घर पर,
0: अच्छा, ठीक
1: उसके बाद में हुआ है।
0: ठीक है।
1: हमको माने आप खाली स्टॉल में दर्द का बात करते हैं कि आप बीमारी

0: गर्दन सुपर हमको नीचे गर्दन से नीचे ना सब सर सही सलामत है, लेकिन गर्दन सुपर मानो शिकायत है।
1: हाँ कहाँ, देखिए सर दर्द को लेकर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माथे में सर दर्द नहीं होता है तो हाँ।
0: दूसरा बीमारी है।
1: अच्छा तो क्या? आपको क्या तकलीफ है ये बता दीजिए तो हम आपको बता पाएंगे कि आपके लिए बेहतर क्या है।
0: सबसे पहला दिक्कत ये है
1: हाँ
0: कि हमको कभी कभी बैठे रहते हैं कुर्सी पर या बिछावन पर चाहे कुछ पर,
1: जी हाँ
0: लोग प्राण नहीं छूता, छप पटाता है, मैंने खून में माखा में जैसे सामान यहाँ पढ़ना उला जाते हैं, नहीं चलने
1: बेचैनी बदहवासी की तरह है ना, बेचैनी बदहवासी होती है आपको, ऐसा लगता है मन एकदम से विचलित हो।
0: हाँ
1: हाँ
0: सर।
1: अच्छा डॉक्टर साहब क्या ये समस्या है?
2: हाँ हाँ राम बहादुर जी, जैसे आपने कहा कि बेचैनी आपको होती है तो जो आपका हार्ट का कंडीशन है उसकी दवाई तो आप ज़रूर लें, और ये बेचैनी के लिए यह है कि आप दोस्त का एक ग्रुप बनाएं, आप मॉर्निंग इवनिंग उनके साथ वॉक करें, आप प्राणायाम करें। ये बेचैनी जो है कभी कभी क्या होता है कि हम अकेलापन महसूस करते हैं उस समय हमको बेचैनी महसूस होती है, या ज़्यादा सोच लेते हैं, जैसे आपको मान लीजिए हार्ट का प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा सोच लेते होंगे तब फिर बेचैनी का अनुभव होता है। तो इससे बचने का एक उपाय यह है कि आप प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी प्राणायाम करें, दोस्तों के साथ बात करें, जब भी ऐसा महसूस होता है तो तुरंत अपने किसी दोस्त को बुला लें, उनके साथ बात करें, इससे आपकी बेचैनी कम हो जाएगी। बेचैनी के साथ यदि नींद की समस्या हो, हाँ हाँ
1: अच्छी बात है,
2: बहुत अच्छी बात है, तो आप प्राणायाम कीजिए और दोस्तों के साथ बात कीजिए, आपको आराम हो जाएगा। और इसके साथ यदि नींद में कोई समस्या हो तब आप जरूर किसी डॉक्टर साहब से मिलें।
1: हाँ तो उस एज में तो
2: हाँ देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज होती है तो नस थोड़ा सा सूख जाता है, लेकिन जैसा आप अभी हमसे बात कर रहे हैं और जो सिम्टम आपने बताया उसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप प्राणायाम कीजिए, दोस्तों से मिलिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छी बात अपने बारे में सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 84 साल की उम्र में अपनी समस्या बता रहे हैं और बखूबी बता रहे हैं, ये तो अच्छी बात है ना,
2: बहुत बहुत
1: ये तो बात है, और इतना अलर्ट है कि कॉल लगा भी रहे हैं, और इनकी इच्छा हुई कि डॉक्टर भुवन जी से हम बात पूछ ही लें
2: इसमें। लेकिन ये है कि जो भी कोई भी बीमारी आपको हेडेक हो या कुछ भी जो भी बीमारी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें फ्रेंड्स का बहुत रोल है, जब आपको ऐसे बेचैनी होती हो जब तो उस समय आप जरूर किसी को बुलाएं और उनसे बात करें, प्राणायाम करें, इस सबसे बहुत फर्क पड़ता है।
1: एक और श्रोता जुड़ गए जी, नमस्कार। हेलो
3: नमस्ते सर
1: जी, नमस्ते नमस्ते, अपना नाम बता दें।
3: सर मेरा नाम गुरुगोविंद मिश्रा है, मैं उड़ीसा झारखंड से बोल रहा हूँ।
1: एक बार फिर से नाम बता दें, हम ठीक से सुन नहीं पाए आपको।
3: गुरुगोविंद मिश्रा, उड़ीसा झारखंड जिला से बोल रहा हूँ।
1: गुरुगोविंद जी है ना, बताइए क्या अच्छा दोनों अच्छा क्या समस्या है ये बताइए गोविंद जी, जी हाँ समझ गया मैंने सुन लिया, मैंने पूछा है कि आप क्या पूछना चाहते हैं, जिज्ञासा क्या है आपकी, क्या सवाल है? देखिए विषय तो हम लगातार कार्यक्रम में बताए आ रहे हैं और कार्यक्रम को सुनिएगा तो विषय भी पता चलेगा, हेडेक को लेकर कार्यक्रम है, सरदर्द को लेकर कार्यक्रम है, आप हम ही से पूछ के अगर सवाल करेंगे।
3: हाँ जी सर, मेरा प्रॉब्लम ये है सर,
1: हाँ
3: मैंने ये सुबह सुबह से सर मैंने जागने से मैंने पहला सर मेरा सिर दर्द करता है
1: उम्र कितनी है आपकी? उम्र जी 42। ये समस्या कितने अरसे से है, कितने दिनों से, कितने महीने से या सालों से है ये बताइए।
3: जी सर ये सर पिछले 3 महीना से है।
1: अच्छा
3: मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया था तो मैंने पैरासीटामोल का जो भी है वो दिए थे और कुछ भी नहीं दिए थे, बोले कि ये खाओ ये ठीक हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा ठीक है डॉक्टर
2: तो
1: साहब,
2: आपको ठीक हुआ कि नहीं हुआ?

0: नहीं ठीक
1: मेरा
0: पैरासिटम
1: वही वो मैंने डेली सर ये सुबह उठने से आधा घंटा चलता, पर टिक टिक टिक टिक करता है सर,
0: देख,
1: दर्द दर्द होता है आधा घंटा,
0: और फिर
1: आधा
0: उसके
1: घंटा
0: बाद,
1: फिर मैंने कुछ पसंद नहीं होता है सर।
0: अच्छा उसके साथ आपको वॉमिटिंग होती है,
1: जी
0: वॉमिटिंग होती है, उल्टी जैसी लगती, उल्टी होती है आपको जब दर्द
1: नहीं
0: होता
1: नहीं
0: है,
1: नहीं नहीं सर, नहीं सर, उल्टी उल्टी सर नहीं है
0: आप
1: सर,
0: पूरे
1: मेरे
0: माथे में दर्द होता है
1: अंदर
0: कि?
1: मेरे या सर ये बीच में सर, ये साइड पेट में और थोड़ा सा बीच में।
0: अच्छा, देखिए ये जो आप बोल रहे हैं कि सुबह में उठने से होता है और यदि उल्टी इसके साथ हो तो वो ज़्यादा तो ख़राब होता है, लेकिन इसमें यह है कि जो आपको हो रहा है उसमें मोस्ट कॉमनली स्ट्रेस इंड्यूस्ड है, आपको स्ट्रेस होता होगा, आपको नींद सही से नहीं आती होगी, नींद कैसी है आपकी?
1: सर नींद थोड़ा सा गड़बड़ है सर, नींद थोड़ा सा मेरा बीच बीच में सर नींद टूट जाता है सर मेरा, खाली नींद सर मैंने रात को जो सोता हूँ सर 2 घंटा स्लीप नींद होता है, उसके बाद सर नींद थोड़ा सा
0: हाँ
1: नहीं
0: तो
1: होता है
0: ये
1: सर।
0: जो आपके आपके आपका जो कारण है उस कारण में वही है कि स्ट्रेस के कारण आपको नींद नहीं आ रही है, उसके कारण आपको ये सर दर्द हो रहा है, ऐसा हमको हिस्ट्री में
1: सर
0: लगता है।
1: इसको क्या करना पड़ेगा सर,
0: इसमें
1: क्या
0: देखिए
1: करेंगे इसके
0: आपको
1: बाद?
0: आपको नींद अच्छी लानी पड़ेगी, तो यदि आपको नींद नहीं आती हो, कोई स्ट्रेस हो, तो आप जो डॉक्टर को, डॉक्टर साहब को दिखा रहे हैं उनको जाके बोलें कि हमको नींद नहीं आती है, तो कुछ दिनों के लिए आपको वो कुछ
1: अच्छा
0: दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे जिससे आपको नींद हो। देखिए इसका
1: अच्छा
0: कारण जो आपका है वो नींद नहीं आने के कारण आपको सर में दर्द हो रहा है, तो आप सर दर्द की दवा खाएंगे तो उस समय तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका मेन इसमें नींद आनी चाहिए, तो आप अभी अपने डॉक्टर के पास जब जाएं तो उनको ये ज़रूर बताएं कि हमको नींद नहीं आती है रात में, तो वो कुछ दिनों की दवा देंगे,
1: अच्छा
0: जैसे ही कुछ
1: अच्छा
0: दिनों की दवा आप खाएंगे और आपका नींद अच्छा हो जाएगा तो फिर आपका जो सर में दर्द हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगा।
1: ठीक सर,
0: ठीक ठीक
1: धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब, ऐसा दर्द जो पहले कभी नहीं हुआ, इतना तेज़ दर्द, और इस अवस्था में लोग उस हालत में होते हैं कि उनकी हालत आप देख नहीं सकते और वो बयां भी नहीं कर सकते हैं कि वो किस स्थिति में है। ये दर्द कितना ख़तरनाक है और इसको लेकर के लोगों को सचेत कितना रहने की ज़रूरत है ये बता दीजिए।
1: देखिए ऐसा दर्द जो आपको पहले कभी नहीं हुआ हो, ये इसमें हम लोग बोलते हैं कि आपको आपका नस, ब्रेन के अंदर में नस आपका फटा हुआ है, तो जब भी आपको ऐसा दर्द हो जो पहले कभी नहीं हुआ है, इसमें आप समझिए कि आपका ब्रेन का नस फटने का चांस है, और आप तुरंत जो नियर बाय आपके डॉक्टर होंगे उनके साथ उनके पास जाके मिलें। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब नस आपका फटता है, चाहे किसी तरह का कोई स्ट्रोक होता है, तो उसमें जितना जल्दी आप डॉक्टर साहब के पास जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके ओवरऑल ब्रेन हेल्थ के लिए। और इसमें हम लोग बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड, ब्रेन में गोल्डन पीरियड 1 घंटा से 4.5 घंटे के बीच होता है, तो जब भी आपको ऐसा लगे कि ये मेरा वर्स्ट हेडेक है लाइफ का, तो इसका मतलब आप यही समझें कि आपका ब्रेन का नस फटा है, और आप तुरंत ही जो नियर बाय डॉक्टर आपके होंगे, जो भी MBBS डॉक्टर होंगे, यदि स्पेशलाइज डॉक्टर न्यूरो के हैं तो आप उनसे जाके मिलें, स्पेशलाइज नहीं है कोई MBBS ही हैं तो उनसे जाके मिलें। और इसमें मोस्ट कॉमनली कॉज जो हमने देखा है कि कभी कभी BP बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, किसी तरह का आपने टेंशन लिया, BP बहुत हाई हो गई, और BP हाई होने के कारण जो नस है वो फट जाता है ब्रेन का, तो उसके कारण होता है। तो जो नियर बाय आपके डॉक्टर हों, चाहे वो MBBS ही हों, उनके पास जाएँ और तुरंत ही उनके पास जाएँ और इलाज करवाएँ।
0: यानी कुल मिलाकर ब्रेन हेमरेज की स्थिति भी हो सकती है।
1: वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ को हम लोग ब्रेन हेमरेज ही मानते हैं
0: अच्छा
1: अनटिल
0: अच्छा
1: प्रूव अदरवाइज। इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई बोलता है कि हमको वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ हुआ है, तो हम स्कैन करवाते हैं, उसमें रूल आउट पहले करते हैं कि ये रप्चर है कि नहीं है,
0: बेस
1: ये
0: लाइन
1: खून का
0: से,
1: थक्का
0: जी
1: है कि
0: जी
1: नहीं है,
0: जी
1: उसके बाद ही
0: बेस
1: आगे।
0: बेस लाइन से एक श्रोता जुड़ गए। जी नमस्कार, हेलो हेलो हेलो हेलो, फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, हम चाहेंगे दोबारा से लगा लें, लेकिन एक फ़ोन लाइन पर है। जी नमस्कार, हेलो हेलो
1: नमस्कार,
0: जी, अपना नाम बताएं,
1: मैं राजीव शर्मा बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से बात कर रहे हैं राजीव शर्मा जी?
1: दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड गांव नौसरा से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए क्या जिज्ञासा है राजीव जी?
1: ऐसा ही है जो कभी कभी मेरे सर में जो है ना दर्द होते रहता है, नस में लगता है दर्द होता है वैसे, और शरीर बिल्कुल जाम की तरह लगता रहता है, कुछ करता हूँ तो हाँफने लगता हूँ
0: दो बातें बता
1: ज्यादा।
0: दीजिए, दो बातें बता दीजिए। पहले उम्र कितनी है आपकी,
1: 45,
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं दिव्यांग हूँ, ब्लाइंड मैन हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, घर पे बैठा ही रहता हूँ,
0: अच्छा जी।
1: तो काम धाम नहीं है, तो घर पे यही है।

0: कहाँ दर्द होता है, किस हिस्से में दर्द होता है आपको?
1: ज्यादातर राइट साइड में, ब्रेन में, माथे में दर्द, ऊपर से नस की तरफ से लगता है, दर्द होता है। उस वहां से जो फफड़ाते हैं ना, कुछ आराम मिलता है।
0: अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे बात कर रहे हैं, है ना जी?
2: दर्द, हेलो राजीव जी, नमस्कार नमस्कार। आपको जब दर्द होता है तो उस समय उल्टी होती है आपको? अच्छा, घबराहट होती है, नींद आती है आपको? अच्छा, कभी
1: चार
2: आपको
1: बजे 3 बजे बच्चे
2: कभी आपको चोट लगी है?
1: में लगा होगा, याद
2: हाँ।
1: नहीं आ रहा है।
2: अच्छा, और कोई बीमारी आपको? ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, चीनी? लेकिन
1: बल्कि
2: नहीं है
1: कोई
2: अभी।
1: काम करते हैं ना तो हाँफने लगते हैं, सांस फूलने लगता है। तो जैसे कोई काम किए भारी भरकम या तेज चले, तो इसके लिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, 1 घंटा घूमता हूँ टहलता हूँ। ऑलरेडी मैं ब्लाइंड हूँ, बल्कि क्या करूँ, घर दरवाजे मेरी आना जाना सरादर में, चक्कर लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ।
2: नहीं, आप अच्छा करते हैं। आपने जो दो चीज़ बताई, एक तो सर दर्द बताया, एक आपने बोला कि हाँफ रहे हैं। तो पहले जो हाँफते हैं आप, वो उसमें जो सबसे प्रमुख कारण होता है, किसी मान लीजिए किसी को एनीमिया है, ब्लड की कमी है, तो उसमें वो सिम्टम होता है। तो मोस्ट कॉमन कारण ये है कि यदि आप खान पान सही से नहीं रखते हैं, खान पान नहीं खाते हैं, आपको एनीमिया है, उसके कारण आपको हाँफने का है, ये मोस्ट कॉमन कारण है। दूसरा जो कारण आपने बताया सर दर्द, तो सर दर्द में यह है कि नींद ज़रूरी है। इससे भी जो पहले श्रोता थे गोविंद जी, तो उनका भी यही था कि नींद ज़रूरी है आपको। यदि आप 3 घंटा 4 घंटा सोएंगे तो तब आपको हेडेक होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें रात में। नींद
1: नींद
2: नहीं
1: रहता
2: आती
1: तो
2: हो,
1: रहता,
2: नींद
1: मैं
2: नहीं
1: थोड़े
2: आते हो
1: ज्यादा
2: तो
1: सोता हूँ ना,
2: हाँ
1: नींद नहीं आता है, 10 से ज्यादा सोता हूँ ना, अचानक 3 बजे 4 बजे तक नींद टूट जाता है दोबारा, या ठीक नहीं है, 1 घंटे के बाद भी नींद टूटता है तो फिर दोबारा नींद आता नहीं है।
2: तो आप समझिए कि जो आपको दर्द हो रहा है, माथे में जो दर्द है, सर दर्द है, इसका कारण आपकी नींद ही है। तो पहले नींद को ठीक करें। तो जो आपके नियर बाय डॉक्टर होंगे, जो पीएचसी पे होंगे, तो उनसे एक बार जाके मिलें और उनको कहें कि हमको नींद की समस्या है, उसके कारण दर्द हो रहा है, सारा चीज़ बताएं। और उसके बाद वो नींद, जैसे ही नींद आपकी अच्छी होगी तो आपका सर दर्द ठीक होने की संभावना ज़्यादा है। फिर भी यदि सर दर्द होता है तो फिर नियर बाय डॉक्टर से आप मिलें, ठीक है? घबराने की बहुत बात नहीं दिख रही है आपको, लेकिन आप नियर बाय डॉक्टर से मिलें, घबराइए नहीं। ठीक,
0: बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद राजीव जी।
1: धन्यवाद।
0: एक और श्रोता अभी हमारे बेसलाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो हेलो, लगता है हमारी बातचीत हो नहीं पा रही है, चाहेंगे दोबारा से लगा लें, आवाज़ हम तक नहीं आ रही है उसकी। दूसरी एक कॉल फिर से आ गया है हमारे मोबाइल लाइन पर। जी नमस्कार, अपना नाम बताएं। हेलो, रेडियो की आवाज़ बंद कर दें, हमें सहूलियत हो जाएगी आपसे बात करने में। जी नमस्कार, हेलो हेलो हेलो, दोबारा से कॉल लगा लीजिएगा, समय निकला जा रहा है, दोबारा से कॉल लगा लीजिएगा। लगता है कि जहाँ वो हैं वहाँ नेटवर्क ठीक से काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर साहब, जब समस्या की बात है, हेडेक की बात है, तो उसके बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे कारण हैं, और उन सब कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्ट्रेस, TTH जिसे बोलते हैं, टेंशन टाइप हेडेक।
2: हेडेक
0: उसकी समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है, और कई बार हमें लगता है कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि सुबह उठा, दर्द हुआ, कुछ देर के बाद दर्द आराम हो गया, अब तो दवा की ज़रूरत नहीं है। और धीमा धीमा रहने वाला दर्द जो है वो मर्ज को बढ़ाने वाला भी होता है क्या? और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जब जांच हुई, सीटी स्कैन या MRI टेस्ट कराया गया, तो मालूम हुआ कि ट्यूमर है उनके ब्रेन में। ये क्या है डॉक्टर साहब?
2: क्या होता है कि मतलब ट्यूमर के कारण दर्द हो सकती है, जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं, जो कि
0: जी
2: बहुत धीरे धीरे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो जो सिम्टम आपने बताया है, तो जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, जैसे कि कुछ मेनिन्जियोमास होते हैं, उसमें ऐसा सिम्टम पाया जाता है कि आपको धीमा धीमा दर्द होगा, उसमें उल्टी भी नहीं होगी, सिर्फ दर्द होगा। तो ये ज़रूर है ऐसा कि यदि आपको बहुत दिन से दर्द हो रहा है तो आप स्कैन ज़रूर करवाएं। दूसरी बात है, जो कि रैपिडली ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर दो तरह के होते हैं, एक बिनाइन
0: जी
2: होते हैं, एक
0: जी
2: मैलिग्नेंट होते हैं। तो जो कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं उसमें आपको बहुत रैपिड ग्रोथ होता है, तो उसमें आप

0: उसके साथ साथ उल्टी का भी रहेगा, उसके साथ साथ आपको सीजर की भी बीमारी हो सकती है। तो जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हैं उसमें जैसे आपने बताया धीमा धीमा दर्द होगा, डेली होगा, ऐसा हो सकता है। और जो रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर्स उसमें उसके साथ उल्टी का होगा। तो इन समरी यदि हम बताएं तो कुछ भी दर्द हो जो कि परसिस्ट आपको कर रहा हो तो आप ज़रूर नियर बाय डॉक्टर को
1: यानी
0: दिखाएं।
1: आपके कहने का मतलब डॉक्टर भुवन जी झा, वो दर्द, वो सर दर्द जो लगातार बना रहे, वो दर्द जो आपको, आपकी ज़िंदगी को, आपके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा हो, वो दर्द जिसमें आपको बार बार दवा की ज़रूरत महसूस हो रही हो, वो दर्द जिसमें आपको बार बार बोलना पड़े कि अभी शांत हो जाओ, दर्द कर रहा है।
0: इसमें आप कंसल्ट ज़रूर करें नियर बाय डॉक्टर को,
1: ये ज़रूरी
0: इसमें
1: है।
0: ज़रूरी है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है जैसे कि अभी आपने जितने भी कॉल्स अभी आए हैं हमारे पास उसमें मेजोरिटी में तो स्ट्रेस इंड्यूस्ड ही हैं,
1: अच्छा,
0: मेजोरिटी जो कॉल आए
1: हाँ
0: हैं हमारे पास जो हिस्ट्री से हम लोग को लगता है।
1: जी जी
0: लेकिन इसमें ज़रूर है कि यदि आपको बार बार दवाई लेनी पड़ती हो तो ज़रूर आप नियर बाय डॉक्टर से मिलें, क्योंकि
1: जी
0: आपने बताया कि जो धीमा धीमा जो रैपिडली जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स हो उसमें धीरे धीरे दर्द होता
1: सही बात है। एक श्रोता जुड़ गए
0: है।
1: जी। नमस्कार, हेलो
2: नमस्कार जी, हम पिंडारू से बोल रहे हैं,
1: जी, नाम बता दीजिए।
2: सरेंद्र चौधरी। हम
1: शैलेंद्र
2: स्वास्थ्य सरेंद्र चौधरी, हम स्वास्थ्य मंदिर से हट करके हम
1: जी हाँ,
2: कुछ कहना चाहते हैं, कंप्लेन राकेश नंदन जी को कहे हैं।
1: कंप्लेन करने के लिए ये कार्यक्रम नहीं है शैलेंद्र चौधरी जी, उसके लिए आप उचित मंच, हम हमें खत लिख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, है ना। इसमें हेडेक की बात करिए, और जो इस तरह शैलेंद्र
2: बोल
1: जी,
2: रही हूँ आकाशवाणी से, मोबाइल
1: शैलेंद्र जी, शैलेंद्र जी, ये कार्यक्रम के लिए हेडेक मत बनाइए, है ना। उचित जगह पर कॉल लगाइएगा। हमें लगा कि हेडेक को लेके चर्चा होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये हेडेक, हम ये हेडेक कॉल हो सकता है। खैर, शैलेंद्र जी, अगर
2: लेकिन आपके
1: हेडेक को,
2: माध्यम से जानकारी जानकारी
1: हाँ
2: दे देते हैं आकाशवाणी में, आवाज बहुत मोबाइल पर बहुत आवाज कम
1: जी,
2: निकलता
1: ये
2: है।
1: समस्या आई है और हमारी हमारी जो टेक्निकल विंग है इस पर काम कर रही है, बहुत सारे कार्य चल रहे हैं अभी, है ना। तो ये कमिंग डेज में बहुत जल्दी ये सुविधा आपको मिल जाएगी, अच्छी आवाज़ क्वालिटी आपके मोबाइल पर भी मिलेगी। और एक श्रोता और जुड़ गए हैं जी। बहुत धन्यवाद शैलेंद्र चौधरी जी, आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन सहृदयता पूर्वक कार्यक्रम में आप सहयोग करते रहिएगा, इसका ख्याल रखेंगे। एक श्रोता है, चलते चलते उनसे जुड़ जाएँ। हेलो हेलो, हम तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है, फेडर। ठीक है, अब हम कॉल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब चलते चलते अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं डॉक्टर भुवन जी झा, जहां पर छोटे छोटे टिप्स जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं, एकदम से 1 से 2 मिनट में बता दीजिए
0: देखिए, यदि आपको सुबह में हेडेक होता हो और उसके
1: जी।
0: साथ उल्टी होती हो तो एक ये रेड फ्लैग साइन है, इसका मतलब ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, तो
1: सही।
0: आप ज़रूर जाएं डॉक्टर साहब को दिखाएं। यदि आपको ऐसा दर्द हो जो कि शाम तक दिन भर ना रहे और शाम में आए तो इसका मतलब है कि ये टेंशन टाइप हेडेक हो सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि ये परसिस्ट रहता हो तो भी ज़रूर आप डॉक्टर साहब को दिखाएं। कोई भी सरदर्द जिसके साथ उल्टी हो उसमें आपको डॉक्टर साहब को दिखाने की ज़रूरत है, पहला। दूसरा, कोई भी दर्द जो एकदम बहुत लंबे समय तक आपको रह रहा है उसमें भी आपको डॉक्टर साहब को दिखाने की ज़रूरत है।
1: ये भी बात है कि अधकपाली दर्द, उसको लेकर के लोग झाड़फूँक के चक्कर में रहते हैं, और कभी नाक में कुछ डालते हैं तेल आदि, और ये सारी चीज़ें वो सब कुछ कर लेने के बाद आपके पास आते होंगे,
0: हाँ, बहुत
1: उनके
0: सारे
1: लिए
0: ऐसे
1: क्या
0: ऐसे
1: कहेंगे।
0: देखिए, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है कि इस सबसे आपका दर्द अच्छा होगा, लेकिन इसमें तो हम लोग ये कहेंगे कि आपको दर्द होता हो और आप उससे परेशान हो, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हैम्पर हो रही हो, तो आप तुरंत किसी न्यूरो
1: तो
0: डॉक्टर को
1: आज
0: दिखाएं।
1: की हेलो ज़िंदगी का विषय था सिरदर्द, कारण, लक्षण और इलाज। बतौर विशेषज्ञ डॉक्टर भुवन जी झा, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी, DMCH दरभंगा। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे श्रोताओं के लिए समय निकाला, आपका हृदय से आभार, बहुत
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सर,
1: धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, मिलेंगे अगले रविवार को किसी और विषय, किसी और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मितेश कुमार मिश्रा, संयोजक अमित कुमार के साथ मुझे संजय को अनुमति दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे हमारा फोन इन कार्यक्रम हेलो जिंदगी। विषय था सिरदर्द, कारण, लक्षण और इलाज। विशेषज्ञ थे डॉक्टर भुवन जी झा। प्रस्तुत है कार्यक्रम सखी बहिन।

0: सखी बही।
1: नमस्कार, कार्यक्रम सखी बहिनक संग हम छी माला झा। रवि दिन बड मन भावन दिन होइत अछि। रवि दिनक बाट सबके रहैत अछि। बच्चा सबके छुट्टी के दिन तो बाकी सदस्य के ऑफिस से छुट्टी आ हम सखी बहिन सबहक छुट्टी के आनंद में बनबई में मोन सँ लागल रहैत छी जे किनको कोनो तरह के दिक्कत नहीं होइन। अपन सबक पहिल प्राथमिकता मुख्यतः परिवार होइत अछि। परिवार के देखैत बुझैत काज करैत ई कार्यक्रम तो सुनिए सकै छी जे सब रवि के 12 बजे दिन सँ 12:30 बजे दिन धरि न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यमे वा रेडियो सेट पर प्रसारित होइत अछि, जाहि मे समसामयिक चर्चाक संग गीत संगीत, स्वास्थ्य रक्षा, भानस भात, शून्य लगबाक किछु टिप्स आ आजुक एकटा कन्याक मोनक किछु गप वा विचार। तें जुड़ल रही हमर संग। अपन सबक सौभाग्य अछि जे स्वतंत्र भारत में जन्म लेने छी। स्वतंत्रता शब्दे में अछि असीम ऊर्जा आ उत्साह। स्वतंत्रता प्राप्त भेलाक बाद बहुतो अधिकार आ कर्तव्यक ज्ञान हुअ लगैत अछि। अधिकार के ज्ञान अवश्य हेबाक चाही, ताहिसँ पहिने मातृभूमिक प्रति किछु कर्तव्य किछु ऋण चुकेबाक गप सेहो हुए तऽ अति उत्तम। अखुनका धियापुता वा कही युवा वर्ग मे ऊर्जा तऽ बड्ड अछि आ अपन भारत सर्वाधिक युवा वाला देश सेहो अछि। विचारी जे एतेक पैघ युवा शक्ति के सदुपयोग जँ उचित रीति सँ कयल जाय तऽ कमाल भऽ जायत। जँ सब सखी बहिन मिल किछु छोट सन प्रयास करी तऽ पैघ बदलाव आबि सकैत अछि। जेना

0: सखी बहिन एहि कार्यक्रम के जँ छोट छिन किताब मानि ली तऽ अतिशयोक्ति नहि हैत। एकै ठाम विविध चर्चा पाबनि तिहार सेहो लेग चल जा रहल अछि। पाबनि तिहार तऽ अपन बेर पर आबि जायत, बेर पर आबि नहि रहल अछि तऽ ओ थिक बरखा। साउन बीतल जा रहल अछि, मुदा एहि साउन बरखा बिन वातावरण में हरियाली कतौ देखा भेट रहल अछि। मेघ तऽ बड जोर कखनो के आबि जाइत अछि, मुदा बिन बरस ने घुरि सेहो जाइत अछि। जलवायु परिवर्तन के याह सब तऽ परिणाम थिक। आबो नीक हवा बसात भेटै ताहि लेल खूब गाछ वृक्ष लगाबी, नदी पोखरि के संरक्षण करी, ओकर जीर्णोद्धार कराबी, प्रकृति के विभिन्न रूप के संगी बनाबी। पृथ्वी आ माँ एक जकां मानल गेल अछि, जेना माँ अपन दुख धियापुता के नहि कहऽ चाहैत छथि तहिना पृथ्वी पर एतेक प्रदूषण पसरल अछि। हवा बसात में शीतलता नहि अछि, तैयो पृथ्वी गुमसुम छथि। काल्हि धरि कतेको बहिन मधुश्रावणी पाबनि मनौलनि, जाहिमे नाना प्रकारक फूल पात के पूजा भेल, महादेवक सपरिवार के पूजा अर्चना भेल। कामना यह जे हम सब प्रकृति के संग छी, सबक कल्याण हुए। जैव विविधता के साक्षात उदाहरण ई पाबनि सँ जानल जा सकैत अछि। अपन मिथिला में जतेक पाबनि तिहारक कल्पना अछि प्रकृति सँ जुड़ल अछि, पौराणिक कथा सँ जुड़ल अछि आ परिवारक मध्य आपसी तालमेल सँ सम्बद्ध करयवला मानल गेल अछि। जेना रक्षाबंधन लिखियाल अछि, बहिन लोकनि अखने सँ कतेको योजना बनबैत हेती। भाय लेल सनेस की दी, के कीनी, व्यंजन की बनाबी आओर बहुत किछु। एहन में जो अपन हाथ में पाई रुपया रह तो ओकर आनंदे विशेष, आ जँ पति महोदय सँ पाई रुपया मांग पड़ तो बिन नेहोरा किछ प्राप्त भेट सके हैत। बड नेहोरा करू, हुनकर पसीनक किछ बनाऊ तो किछ आशा कैल जा सकैत अछि। सखी बहिन एकरा अन्यथा नहीं लेब। सखी बहिन अपने सब में कखनो के किछ हसी ठहक तो भइए सकैत अछि, मुदा अहू में किछ तनु कैल अछि। जो अपने सब किछ काज व्यवसाय क के मुद्राक व्यवस्था क ली तो वास्तव में स्वतंत्रताक वास्तविक अनुभव प्राप्त हैत। एहि लेल वित्तीय जागरूकताक ज्ञान, डिजिटल साक्षरता जेहन ज्ञान हेबाक काज हैत। किएक तऽ शिक्षा, अस्पताल, नियमित खर्च आ आन काज सब लेल पहिने सँ आब किछ बेसी पाई के काज होइत अछि। तैं अपन परिवार में सामंजस्य बैसायब लेल, आनंदपूर्वक रहबाक लेल, वित्तीय भविष्य सुरक्षित रखनाय जेहन काज लेल खूब सोच विचार आ योजना अनुरूप कोनो काज करी। गृहिणी सबके मास में प्रायः एक बेर घर खर्च लेल रुपया भेटैत छनि आ बड सम्हारि के ओ खर्च करैत छथि। गृहलक्ष्मी के संज्ञा ओना नहि न देल गेल अछि। वित्तीय जागरूकता लेल अपन आमदनी बढ़ाओल जा सकैत अछि, बचत में वृद्धि कयल जा सकैत अछि, संगहि निवेशक उचित रीति जाहिसँ लाभ भेट सकनि एहि पर विचार। कतेक गोटे मासक अंत में किछ बचल पाई रुपया के कात कऽ के रखैत छथि। एहिसँ बेसी नीक हैत जखन मास के आरंभे में किछ रुपया निकालि के कात राखि ली, कनी कनी बुन सँ घैल भरैत अछि। तहिना प्रयास राखी। आइ एहि विषय पर एकटा सखी सँ भेंट भेल जे छथि आजुक कन्या, तऽ सुनै छी हुनक मन्तव्य।
1: नमस्कार, हमर नाम पूजा मिश्रा अछि। हमर नैहर झोजी और सासुर ढंगा अछि। हम एखन दरभंगा में रहि रहल छी। आइ हम अहाँ सब संगे बचत पर अपन विचार साझा कर जा रहल छी। बचत सिर्फ पैसा के नहीं, बल्कि बिजली, पानी, गैस, पेड़ और भी बहुत चीज के करे के चाही। बिजली के बचत, अनावश्यक पंखा के चलेनाई, लाइट चला कर छोड़ देनाई, बार बार

0: फ्रिज के बंद चालू केनाए, एसी हाई कूलिंग में इस्तेमाल केनाए, ई सब अनावश्यक बिजली के खर्च अछि। बिजली के बचत में भोर के समय में बाहर के प्रकाश के घर में आबा देबा के चाही, जाहिसँ सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश सेहो होइत अछि और साथे बिजली के बचत सेहो होइत अछि। मशीन वाला चीज खरीदा काल में 5-स्टार रेटिंग देख कर मशीन के खरीदारी केनाइयो समझदारी के लक्षण अछि। ओहि के साथ साथ LED बल्ब के इस्तेमाल केनाइयो अति उपयोगी अछि। आप बात करै छी पानि के, पानि के बचत सेहो अति आवश्यक अछि। अनावश्यक ब्रश करै काल मे पानि चालू कऽ कऽ छोड़ देनाइ, बर्तन माजै काल मे पानि चालू छोड़नाइ, नहा के शावर चालू कऽ कऽ छोड़ देनाइ और कम कपड़ा रह पर वॉशिंग मशीन में कपड़ा लगाबसँ पानि के सेहो खर्च बेसी होयत और बिजली के खपत सेहो अनावश्यक होयत। ताहि लेल जतबा प्रयोग हुए ततबा पानि के इस्तेमाल करबा के चाही। पानि के दिक्कत नहि हुए तऽ किछु पानि के स्टोर हमेशा अपना घर में कऽ कऽ रखनाइ यो समझदारी के लक्षण होइत अछि। आप बात करै छी गैस के, गैस के बीतल समय में जे हमरा अहाँ के कष्ट भोगऽ पड़ल से एकर बारे में अहाँ सब भली भांति जानैत अछि। ताहि लेल गैस के अनावश्यक जला कऽ छोड़ देनाइ यो गलत अछि। गैस के उपयोग केनाइ ओतबे करय के चाही जतबा ओकर जरूरत होइत अछि। गैस के बचत लेल अति आवश्यक अछि कि अहाँ प्रेशर कुकर के इस्तेमाल करी, खाना ढक्कन लगा कऽ बनाबी और धीमी आँच पर बनाबी, जाहिसँ 20-30% तक गैस के बचत कैल जा सकैत अछि। आप बात करै छी पेड़ के बचत, पेड़ के बिना जरूरत हो पर कटबाक नहीं चाही। पेड़ हमरा अहाँ के छाया, हरियाली और ऑक्सीजन प्रदान करवात अछि। पेड़ के बचाव से पर्यावरण में संतुलन बनल रहैत अछि। पेड़ के कारण समय पर बारिश होइत अछि, जीव जंतु के रह लेल जगह सेहो भेटैत अछि। ताहि लेल पेड़ लगेनाई बहुते जरूरी अछि और जे पेड़ अछि हरियाली तकरा कटवाक सेहो नहि चाही। तऽ ई भेल पेड़ के बचत। आप बात करै छी धन के बचत के बारे में, धन के बचत अतिये आवश्यक होइत अछि। अनावश्यक खर्च केनाइ बहुत ही गलत होइत अछि। धन के बचत अपन साथ साथ बच्चा के सेहो सिखबा के चाही। बच्चा के धन के कीमत पता चले के साथ साथ बच्चा अपन एकत्रित धन से अपन सपना के केना साकार करत ओहो बतबा के चाही, जाहि से बच्चा के अंदर अनुशासन सेहो आबि जायत और ओ अपन उज्ज्वल भविष्य के निर्माण सेहो कऽ सकैत अछि। और सिर्फ बच्चा ही नहीं, ये हरेक व्यक्ति के होवा के चाही। धन के बचत हमरा अहाँ के जीवन में आपातकालीन स्थिति में सेहो और उज्ज्वल भविष्य में साथ दैत अछि। आहि क्रम में हम अपन वाणी पर विश्राम द कऽ अहाँ सबसे विदा लै छी। धन्यवाद।
1: सुनि रहल छलहुँ आजुक कन्या से हुनक मनतब। सखी बहिन, आई अपने लोकन वित्तीय जागरूकता से संबंधित गपसप कऽ रहल छी, आर्थिक स्वतंत्रताक गप कऽ रहल छी। एहि लेल इहो आवश्यक अछि जे ऑनलाइन जे खरीदारी करै छी अपने लोकनि, ओ कम से कम करी। सेल आ ऑफर के चक्कर में बिन काजक कोनो चीज वस्तु के ढेर नहीं लगा ली। अपन खर्च के हिसाब जे किछ करै छी एकटा डायरी में लिख के रखने रही आ मास में एक बेर कम से कम ओकर आकलन करी जे खर्च में से कतौ किछ कम भऽ सकैत अछि। मुदा ध्यान राखी, शिक्षा आ भोजन पर उचित खर्च अवश्य करी, ओहिमे कटौती नहि करी। बच्चाक पोषण, स्वास्थ्य आ शिक्षा पर यथोचित खर्च करी आ अवश्य करी। हाँ, फालतू काज में बेसी खर्च सो बची। किछ बचत कऽ के सरकारी बैंक वा डाकघर में कोनो योजना में जमा कयल जा सकैत अछि। एक बरख वाला वा ओहिसँ बेसी समय सीमा वाला बचत योजना में जमा कऽ सकैत छी। 18 से कम बरखक बेटी सब लेल सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, पेंशन योजना समेत और योजना से लाभ उठाओल जा सकैत अछि। कतेक सखी त बेर पर सोन चानी धरि बेच दैत छथि, त दोसर दिस निवेश के रूप में सेहो सोन किनै छथि। जँ निवेशक रूप में किनऽ चाहै छी त सरकारी ई स्वर्ण किनी, जाहि में सोना हाथ में नहीं रहत मुदा कागज में बॉन्ड रूपे स्वर्ण रहत।

सुनि रहल छलहुँ हमरा लोकनि ई फिल्म सङ्गीत। जखन गीत सङ्गीत सुनै छी तऽ मोनमे स्फूर्ति आओर बढ़ि जाइत अछि, मानसिक स्वास्थ्य सेहो उत्तम रहैत अछि। बरखा हुआ वा नहि, प्रकृति पर कोनो वस नहि, मुदा अपन सौन्दर्यके निखारब वा साज श्रृंगारमे अपन कला को

0: असल देखायब। अपने सब खूब जनै छी जेना एहि मास मेहंदी के खूब प्रयोग करै छी। कोनो पाबनि हुए वा उत्सव मेहंदीक रंग शोभा बढ़ा दैत अछि, बुझल अछि न? मेहंदी मात्र हाथक सुंदरता बढ़ेबाक काज नहीं करैत अछि, अपितु ई केश आ त्वचा लेल उत्तम प्राकृतिक औषधि अछि। केश के प्राकृतिक रंग दैत अछि, रूसी सँ बचबैत अछि, मथ दुखी मे सेहो आराम भेटैत अछि। त केश मे बिना खर्च के नहि प्राकृतिक निखार आ रंगत आनि अपने लोकनि अपन शोभा श्रृंगार बढ़ा सकै छी। केश के कोमल चमकदार आ सिल्की बना सकै छी, एके नहि चाहतथि। एतबे नहि, मेहंदी मे एंटी फंगल गुण माथक त्वचा आ कही जे स्कैल्प के संक्रमण सँ बचबैत अछि। केश के उचित पोषणक संग झरनाई कम करैत अछि, संगहि दुमुहा नहि हुए एहि लेल उचित पोषण दैत अछि। जँ किनको माथ दर्द बेसी होइ छनि तऽ सप्ताह मे एक बेर जँ माथ मे लगा लेब तऽ बड्ड राहत भेटत, किएक तँ एकर तासीर ठंडा होइत अछि। तँ एतेक गुण आ सौंदर्य सँ परिपूर्ण जे आब एकटा उत्सव के रूप मे सेहो मनाओल जाइत अछि। सखी बहिन राखी सेहो लगि जायल अछि, फेर मेहंदी लगायब। ओहि दिन भ्या लेल असीम उत्साह, ताहि संगे नीक नुकुत व्यंजन, किछु मिठगर तँ किछु चहटगर। अपनो लोकनि करी आब किछु भानस भातक गप। पाबनि लगि जायल अछि तँ किछु सुखायल पकवान जँ बना लेब तँ किछु दिन राखियो सकै छी। एहनमे मिथिलाक प्रसिद्ध पकवान अनरसा बनायब अइ। एहि लेल सबसँ पहिने अरबा चाउर 24 घंटा लगभग फुला के कनी काल पसारि के सुखा के कनी दरदरायल पीस ली। ओरियान मे चीनी सेहो बुकनी कऽ ली। आब ओहि चाउरक पाउडर मे चीनी बुकल, पाकल केरा, दही मिला के सानि ली। सनलाक बाद 5-10 मिनट धरि छोड़ दी। मोन राखी जे पानि आ घी नहि मिलेबाक अछि, दही केरा सँ ओ सना जायत। 10 मिनटक बाद हाथ सँ अनरसाक आकार दऽ के पोस्ता दाना जे अपने लोकनि चकला मे लगा सकै छी वा कोनो थाड़ी मे सेहो लगा सकै छी, हाथ सँ अनरसाक आकार दऽ देबाक अछि आ ऊपर सँ जतय ओ पोस्ता दाना रखने छी ओहिमे लपेट देबाक अछि, ऊपर दिस सँ रह से ध्यान राखी। आब घी मे ओकरा छानि ली। ध्यान राखी जे पोस्ता दाना ऊपर दिस रहै, तैं एकै दिस सँ छनबाक अछि, उलटबाक नहि अछि। जब उलट देब तँ पोस्ता दाना सबटा लोहिया मे रहि जायत। तैं जे दिस पोस्ता दाना रहै ओहि दिस ओहिना रह दी। एक दिस सोनगर रंगके भऽ जायत आ एक दिस कनि उज्जर रहत पोस्ता दाना वाला दिस। ई देखैयोमे नीक लागत। ई पारंपरिक पकवान अछि जे मिथिलाक कोनो उत्सव पाबनि आ भार दौर मे देले जाइत अछि। सखी बहिन अपनो लोकनि जो किछु पकवान बनाबी आ साझा करय चाही बाकी सब श्रोता लेल तँ अवश्य पठाबी पत्रक माध्यमे बनेबाक विध, ओहिसने मोबाइल नंबर सेहो, जाहिसँ हम पहुँचब अहाँ धरि। आ एहि सब लेल पता लिख लेल जाओ, कार्यक्रम सखी बहिन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी दरभंगा, पिन कोड अछि 8460004 वा मेल करी akashwanidarbhanga@gmail.com पर। अपने लोकनिक पत्रक बाट जो हित प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद, ताई संगे हमरा माला झा के आज्ञा देल जाओ। नमस्कार।
1: सखी बहिन।

अभी आप सखी बहिन कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है मैथिली नाटक वाल्मीकि।

0: वाल्मीकिक मुँह सँ निकलल प्रथम छंद माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकि मवधीह काम मोहितम्। जेकर प्रारंभ भेल छल आदि कवि वाल्मीकिक करुणा सँ, जाहि सँ पहिल बेर प्रकाश में आयल छंद लय ताल आ गीत, जाहि सँ रचल गेल विश्वक सब सँ बेसी लोकप्रिय गाथा मर्यादा पुरुषोत्तम रामक कथा, जे अधः पतन होइत मानवताक लेल कर्मक प्रेरणा स्रोत बनि गेल, मात्र एक युगक लेल नहि अपितु युग युगांतरक लेल। ओ रहल महर्षिक पूर्व रूप दस्यु रत्नाकर, लूटब खसोटब हत्या करब जेकर जीवनक उद्देश्य रहल अछि, ओ अखनो केकरो हत्या कऽ के आबि रहल अछि, हाँ इम्हरे आबि रहल अछि।
1: चलैत फिरैत बटोही के लूट लेब, केकरो गर्दन के धार से अलग कऽ देब, ई दस्यु रत्नाकर केर वामा हाथक खेल अछि।

0: चलैत फिरैत बटोही के लूट लेब, केकरो गर्दन के धार से अलग कर देब। ई दस्यु रत्ना करके बामा हाथक खेल अछि, रक्तक पिपासा कतेक तीव्र होइत अछि जे कहियो कम नहीं होइ। हमर हाथक ई आंगुर ककरो गर्दनिक हड्डी के मरोड़वाक लेल फरक रहल अछि, प्राय क्यों आबि रहल अछि। आवा आवा, तब एहि झाड़ी में नुका के प्रतीक्षा करबाक चाही। रुक जाओ, ला जे छौ संग में सब ला। आब लो ले अपन इष्ट देवक नाम और मरे ले भाजो तैयार। जय महाकाल।
1: रुक जो रत्ना कर,
0: के छिया तो एकता है बाग कौन प्रयोजन?
1: नारायण नारायण, हम वह छी जेकरा एखन तो बजेला अछि। कालक काल महाकाल हम ही छी। हमरा चिन्ह वाला एहि संसारक समस्त बंधन से मुक्त भऽ जाइत अछि। हम अंधकारक दीपक छी, मरुभूमिक जल छी, हम सर्वत्र छी, सदा सँ छी आ सब दिन रहब। हम प्रत्येक स्थान पर जाइत छी, ओकर अनुभव करैत छी आ प्रत्येक मनुखकें वह कहैत छी जे ओकरा लेल उपयुक्त छै। तोरा सनहक भोतियाल पथिक के सनमार्ग देखायब हमर कर्तव्य थिक।
0: तो हमरा रास्ता देखे में, हमरा रास्ता देखबै तो अपने ही रास्ता लाइ जमे। हम कोनो निर्बल नहीं छी।
1: नारायण नारायण, तोरा सन निर्बल और के भ सकैत अछि?
0: की अनर्गल प्रलाप करै छै? कि तोरा बुझल नहीं छौ जे ई भूमि दस्यु रत्नाकर के कीड़ा भूमि छी। एतक माइट पाइन से नहीं रक्त से सींचल जाइत अछि।
1: नारायण नारायण, आ ई सब कह के तू अपना के शक्तिशाली बुझैत छे? तोरा में पार्श्विक शक्ति छौ रत्नाकर, जे मनुखक सब से पैघ कमजोरी थी। मनुष्य बन, ऊपर उठ, खसैत के उठा, निर्बलक सहायता कर।
0: अपन प्रलाप बंद कर, अन्यथा हमारी तलवार
1: हमरा हृदयक रक्तपान कऽ लेत, सैह ने? इहो कह के देख ले रत्नाकर, देखियौ कतेक तेज छौ तोहर तलवारक धार।
0: मारवास पहिने चुट्टी के पाइख जनम जाइत छै। लाले अंतिम बेर अपन इष्ट देवक नाम, भाजो तैयार। जय महाकाल।
1: की भेलो, रुकि किया गेले? इम्हर देख।
0: नहीं नहीं,
1: उठा हाथ, चला तलवार।
0: नहीं तो अवश्य कोनो मायावी पुरुष छ, बाज तो के छिए?
1: नारायण नारायण, हमरा तो मनुखे बुझ, हम तोरो मनुख बनवा चाहित छी। बाज तो एहि क्रूर बंधन से मुक्त होमा चाहित छै?
0: मुदा हमरा त रक्तपातक नशा लाग चुकल अछि, ई हमरा से नहीं भ सकैत अछि।
1: सब किछु भ सकैत अछि, मात्र तोरा अपन इच्छा शक्ति के दृढ़ करो पड़तो।
0: मुदा हम तो जीवन भर केवल निर्दोष लोगन के गर्दन पर तलवार चलेलौ अछि, नहीं जान कतेक बच्चा के अनाथ आ निराश्रय बनेलौ अछि। की पापक दाग कहियो धुआ सकत? ई कलंकक टीका कहियो मिटा सकत?
1: अवश्य मेटे तो, अंधकार आब फाट चुकल अछि।
0: किंतु हमरा त चारू कात अंधकारे अंधकार देखबा में आबि रहल अछि। भविष्यक लेल हमरा कोनो मार्ग नहीं सुझैत अछि।
1: ओ हम देखेबो रत्नाकर, रक्त सँ सानल एहि हाथ के तोरा धुअ पड़तौ सदाक लेल, नहीं त

0: तोरौ आत्मा के वह यंत्रणा भोग पड़तौ जे तो दूसरा के दिलहीन अछि। तोरा तलवारक धारक नीचा तड़पैत असहाय मानव तोरा अंगूर से पिसैत ओकर कराह नहीं जानि कतेक भारतीय ललनाक मांगक सिंदूर के तोहर पाप धो देलक। कतेक बच्चा अनाथ भ गेल ओहि निर्बलक आह तोरा मृत्यु पर्यंत चैन नहीं लिया देतौ। मृत्युक बादो तोरा धिक्कारैत रहतौ तो छटपटाइत रह में चिचियाइत रह में।
1: असंभव कदापि नहीं भ सकैत अछि।
0: नारायण नारायण यह हेतु रत्नाकर आर अवश्य हेतु।
1: तखन हमर पापक प्रायश्चित हमर उद्धारक उपाय।
0: नारायण नारायण अवश्य हेतु अवश्य हेतु। तोहर आत्मा अपन पाप के स्वीकार कर लेलक यह तो सबसे पैघ प्रायश्चित थिक। पश्चातापक अग्नि में जड़ के तोहर सब पाप नष्ट भ जेतो। तोरा हृदय में दिव्य आलोकक संचार हेतो। ए बून में तोरा अनेको तपस्वी मुनि महात्मा भेटथुन हुनका सँ सत्कर्मक दीक्षा ले हुनका लोकनिक सेवा कर। भोरक हेरायल जँ साँझ में घूमि आवे तो ओकरा हेरायल नहीं कहल जाइत अछि रत्नाकर।
1: हमरा हृदयक अंधकार में प्रकाश देवा वाला महापुरुष आई पहले बेर क्यों हमर सूतल चेतना के झकझोरल अछि। हम अहाँक शरण में छी हमरा मार्ग दिखाओ।
0: उठ रत्नाकर उठ कह राम। हाँ हाँ कह राम।
1: मरा मरा मरा।
0: नारायण नारायण जीवन भरी दूसरा के मारित मारित एखनो मरा मरा के रट लगा रहल अछि। एक दिन स्वयं राम एकरा हृदय में बास करता। कह रत्नाकर मरा मरा सह कह।
1: मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा मरा
0: उम्हर देख की देखै छै।
1: तमसा नदीक निर्जन तट कल कल करैत ओकर वेगवती धारा।
0: ओही पुण्य सलीला तमसा नदी तट पर तोरा तपस्वी आ ऋषि लोकनि सँ सत्कर्मक दीक्षा लेबऽ पड़तो। हुनका लोकनिक सत्संग सँ तोरा हृदय में दिव्य आलोकक संचार हेतो। तू युग पुरुष बन में आगू बढ़ रत्नाकर आगू बढ़। इच्छा शक्ति के दृढ़ कऽ लेला सँ की नहीं भ सकैत अछि। रत्नाकर सन क्रू डाकू एक बेर निश्चय कऽ लेलक महान बनबाक आ ओ 5 बरखक बच्चा जेका एक एक अक्षर सँ प्रारंभ कऽ वेद उपनिषद योग समस्त विद्या के सीख लेलक। ज्ञान कर्म आ उपासनाक सब पद्धति के ओ आत्मसात करैत गेल। ओकर हृदयक पाप धुआइत गेले। ओकर क्रूरता आपाशविकता मिटाइत गेले। ओ गंभीर बनैत गेल अनुभूतिशील बनैत गेल कोमल बनैत गेल। ओकर हृदयक कोमलता ओहि शिखर पर पहुँच गेल जे तमसा नदीक तट पर एक दिन
2: ओम नमो विवश्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रिये शुचिये सवित्रे कर्मदायिने एकोऽर्घ भगवते श्री सूर्याय नमः।
1: इकी प्रेमालाप करैत अइ क्रौंच पक्षिक जोड़ा पर के निष्ठुराघात केलक अछि। केहन पापी अछि जे तमसा नदीक अइ पवित्र जल के निर्दोष क्रौंचक रक्त सँ दूषित कऽ देलक। मानिषाद प्रतिष्ठान तुम गमः शास्वती समा यत क्रौंच मिथना देकि मवधि काम मोहितम्। इकि दुखक आवेग में ई अनायास सौंदर्यक सृष्टि कोना भ गेल। हृदयक व्यथा सँ आनंदक ई अजस्र स्रोत कोना निकल पड़ल। मानिषाद प्रतिष्ठान तुम गमः शास्वती समा यत क्रौंच मिथना देख मवधि काम मोहितम्। एकर बात की हमर

0: दै कोनो महान रचना के मूर्त रूप देवा चाहत की लिखू की लिखू। मोन पड़ल राम राम जे पिता के वचन पालन करवा के हेतु अयोध्या के राज सिंहासनक त्याग कर दिलन। जंगल आ पहाड़क खाक छनैत ओ एखनहु रघुकुलक मर्यादाक निर्वाह कर रहल छथि। बड्ड मोन सँ तपस्वी लोकनिक सेवा कर रहल छथि। बड़ शूरताक संग असुरक संहार कर रहल छथि। हुनकर धैर्य अडिग अछि, ओ त भगवानों सँ बढ़ि कऽ छथि। हम हुनके गाथा लिखब, हाँ रामायण लिखब रामायण।
1: वह उन्मादक मुहूर्त महर्षि वाल्मीकि के प्रेरणा देलक रामक अमर गाथा के लिपिबद्ध करबाक, आ ओही छंद में रामायणक श्री गणेश भेल। रामायण लिखा जा लागल। रामायणक अंत होइए वाला छल कि रामक कथाक एक नव मोड़ आगू आबि गेल। तत्पश्चात वाल्मीकिक आश्रम में एक दिन
0: आदौ राम तपोवनादि गवनम हत्वा मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बालि निर्दलनम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकरण हननम।
2: कतेक दूर आबि गेलहुँ, आब तो संध्या हुआ वाला अछि। चलू कुमार, आब अयोध्या घूम चली।
3: अयोध्या घूम चली, कोना घूम चली?
2: अहाँक चित्त एतेक उदास कियाक अछि कुमार? भरि रस्ता अहाँ गुमसुम छलहुँ की उर्मिला से रुसि के एलहुँ अछि की?
3: ओहि मुँह से ओ बात कोना कहू देवी, जकरा सुनि के चट्टानो पिघल जायत, जकर कल्पना हम स्वप्नो में नहीं केने छलहुँ, आई हमरा पाषाण बन के करय पड़ रहल अछि। तैयो ही धरती फाटल नहीं, तैयो ही आकाश स्थिर अछि।
2: ई की उन्माद अछि कुमार, हम किछु बुझलहुँ नहीं, स्पष्ट कहू। हमर मन अनेक शंका से घेरा रहल अछि, अहाँ अयोध्या किएक नहीं घूम रहल छी?
3: कोना कहू देवी, अहाँक जीवन अयोध्याक राज्य सिंहासन लेल नहीं बनल अछि, आब अहाँ के ही कांट कूश में जीवन बितेबाक अछि।
2: कांट कूशक बीच?
3: सम्राट राम अहाँ के वनवासक आज्ञा देलनि अछि देवी, और अहाँ के जंगल में छोड़ देबाक आदेश हमरे भेटल अछि, आब अहाँ अयोध्या घूम के नहीं जा सकै छी।
2: लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण।
3: आब अहाँक स्वागत कनक कलश सुशोभित अयोध्याक वैभव में राज प्रसाद नहीं करत, आब अहाँक स्वागत करत एतुका काट कूस का भरल बोन पर्वत गुफा। कहि लिय कहि लिया जनक नंदनी, कहि लिया भागल लक्ष्मणक संग बैस के, कहि लिया अपन अश्रुधारा से समस्त पृथ्वी के डुबा दिया। देवी हमरा क्षमा करब, देवी हम अपन दुर्बलता के नहीं रोक सकल। चलू हम अहाँ के महर्षि वाल्मीकि आश्रम में पहुँचा दी।

0: महारानी सीता एवं स्वामित्र लक्ष्मण प्रणाम स्वीकार हो देव।
1: चिरंजीवी हो आर्यपुत्र, आओ पुत्री आसन ग्रहण करू। कुमार लक्ष्मण, एहि रात्रि के बेला में अहाँक आगमन हमरा हृदय में संशय उत्पन्न कर रहल अछि। कहू, हमरा से की सेवा भ सकैत अछि?
0: सेवा में हम स्वयं उपस्थित भेलहुँ हैं देव, राजरानी सीता के लऽ कऽ अपने एक समक्ष याचक बनि कऽ आयल छी।
1: कुमार लक्ष्मण, आर्यावर्तक अधिष्ठात्री महारानी सीता एहि दरिद्र तपस्वी के कुटी में केहन याचना लऽ कऽ आयल छथि, हमरा और संशय में नहीं राखू, शीघ्र कहू।
0: सम्राट रामदेवी सीता के वनवासक आज्ञा देलनि अछि देव, देवी सीता अहाँक आश्रम में आश्रिता कयल छथि।
1: वनवासक आज्ञा?

0: सम्राट राम दिलें? क्या कौन कारण से? उत्तर दिया कुमार,
1: हमरा क्षमा करब देव, ई राजाज्ञा अछि, तैं हम उत्तर देवा में असमर्थ छी।
0: ठीक अछि, एक साधारण तपस्वी के राजाज्ञाक कारण तकबा कोनो अधिकार नहीं। ठीक अछि, उत्तर नहीं देव तो जाओ कुमार, इतिहास एकर उत्तर देत, भविष्य एकर उत्तर देत। देवी जानकी हमरा आश्रम में निरापद रहती, किंतु रामक कथा एखन समाप्त नहीं हैत, रामायण और लिखल जात। चलू सीते, आश्रम केर भीतर चलू।
2: एहि तरहें राजरानी सीता पुनः वनवासिनी सीता बनि गेली। समय बितैत गेल, किछु दिन पश्चात महर्षिक सुन आंगन सीताक जुड़वा पुत्र लवकुशक किलकारी सँ गूंजय लागल। दुनू भाई माता पिताक संपूर्ण तेज लऽ कऽ महर्षि वाल्मीकिक संस्कार में पलऽ लगलाह। किछुए दिन में महर्षि हुनका वेद उपनिषद आर अन्य धर्म ग्रंथ सभक संग संग शस्त्र विद्या में सेहो निपुण बना देलनि। उम्हर अयोध्या में सम्राट राम अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ कऽ देलनि। यज्ञक घोड़ा छूटल आ ओकरा पाछू छूटल अयोध्याक चतुरंगिणी सेना। समस्त पृथ्वीक परिक्रमा करैत, अनेक सम्राट के धराशायी करैत, एक दिन महर्षिक आश्रम में ओ घोड़ा लवकुश द्वारा पकड़ल गेल आ युद्ध प्रारंभ।

अभी आप सुन रहे थे मैथिली नाटक वाल्मीकि। ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। मंत्रालय ने कहा कि ये बैठक सार्थक चर्चाओं में शामिल होने, आम सहमति बनाने और पर्यावरण सहयोग को मजबूत करने का मंच है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने विदेशी संपत्तियों से जुड़े छोटे करदाताओं के लिए विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इस योजना के अंतर्गत पात्र करदाता निर्धारित कर या शुल्क का भुगतान करके कुछ अघोषित विदेशी संपत्तियों या विदेशी आय की घोषणा कर सकेंगे। छोटे करदाता की विदेशी संपत्ति प्रकटीकरण योजना एक बार की स्वैच्छिक घोषणा योजना है जो वित्त अधिनियम 2026 के अध्याय 4 में शामिल है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी आंदोलन के अगले चरण के तहत छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार

0: सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून की यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रत्येक उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा है कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त ही है। राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान आज से आम जनता के लिए खोल दिया गया है। ये 15 सितंबर तक खुला रहेगा। उद्यान सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहेगा। अंतिम प्रवेश शाम 5 बजे तक होगा। रख रखाव के लिए उद्यान प्रत्येक सोमवार को बंद रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और भाजपा के अध्यक्ष नितिन नवीन भी उपस्थित थे। केरलम का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव तिरुवोणम 26 अगस्त को मनाया जाएगा। उत्सव को लेकर उल्लास का माहौल है। आज अथम के साथ राज्य में ओणम की शुरुआत हो गई है। उधर जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले की मंडी तहसील स्थित प्राचीन बाबा बुद्धा अमरनाथ मंदिर की 12 दिन की वार्षिक श्री बुद्धा अमरनाथ यात्रा कल शुरू होगी। यात्रा इस महीने की 28 तारीख तक चलेगी। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपना पहला मैच कल खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। आयुष शेट्टी पहले दौर में मौजूदा चैंपियन चीन के शी युकी से मुकाबला खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक की उम्मीद है। महिला डबल्स में ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपी चंद चुनौती पेश करेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का दरभंगा केंद्र है। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलो हर्ट्ज पर। अब जानकारी प्राप्त कीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में।

1:05 पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत, 1:15 पर कार्यक्रम आपके अनुरोध पर। दो बजकर 30 मिनट पर पुनः फिल्म संगीत का आनंद आप ले पाएंगे। 3 बजे विद्यापति गीत का समय होगा और शाम 5 बजे गैर फिल्मी गजल या गीत।

5:40 पर फिल्मी गज़ल या गीत, 6:10 पर विद्यापति गीत, 6:30 पर गाम घर के अंतर्गत कार्यक्रम गुनगुनाइत मन।

शाम 7 बजे किसान भाइयों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे, खेती गृहस्थी। 7:50 पर आप फिर से आनंद ले पाएंगे फिल्मी गीतों का।

8:15 का समय होगा क्रीड़ा जगत का। 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा।

अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। सुनिए देशभक्ति गीत स्वर ए आर रहमान का।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत, स्वर A.R. रहमान का है। प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपके अनुरोध पर।

आपके अनुरोध पर इस कार्यक्रम को लेकर आज मैं उपस्थित हूँ विजेता। आज हम आपको आप ही के पसंद के आपके अनुरोध पर कुछ गीत सुनवाएंगे। जो खत हमारे पास हैं उनमें से नाम है गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेग बिरक, मीका बिरक। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। ग्राम पंचायत बठैना से आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा। जिला खंडवा ग्राम लोहारी से आप हैं राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे, गायत्री धनजे। खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद। आप सभी की फरमाइश पर, आप सभी के अनुरोध पर आइए सुनते हैं फिल्म

मासूम का ये गीत। गायक कलाकार हैं, माफ़ कीजिएगा, फिल्म हीर रांझा का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीतकार कैफ़ी आज़मी और संगीतकार मदन मोहन। आइए सुनते हैं आप सभी के अनुरोध पर ये गीत।

डोंगरगांव जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से आप हैं राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बेला गार्डन वार्ड नंबर 3 से दरभंगा बिहार से आप हैं रवि रंजन, विनय रंजन, नेहा रंजन। रहमानिया मोहल्ला से आप हैं रहमानिया मोहल्ला मेहसौल सीतामढ़ी बिहार से आप हैं तलत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, वसीम अकरम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, अमन अकरम। आप सभी के अनुरोध पर सुनते हैं फिल्म अखियों के झरोखे से लिया ये गीत। गायक कलाकार हैं हेमलता, गीतकार रविंद्र जैन और संगीतकार रविंद्र जैन।

फिल्म मासूम के इस गीत के लिए खत है। ताजपुर मोरबा से भाई कारी राय, श्रीमती मीना कारी, पुंज राय आर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी रिंकी रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बैरागी, छत्तीसगढ़ भाटपारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, रामपट्टी गौसनगर से आप हैं शुभ नारायण महतो, राजा बाबू, राजेश कुमार, लक्ष्मी नारायण महतो, जीवन कुमार, आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म मासूम का ये गीत। गायक कलाकार हैं उपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर। गुलजार के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

फिल्म आशा के लिए ये अनुरोध है, लेवा खेल मोहल्ला चांदुर बिस्वा से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, परी खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, देविका कुमारी चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, खुशी वाणी, गड़िया मौजे उस्तु से प्रदीप कुमार मंडल, आशीष मंडल, कुंदन मंडल, करीना कुमारी, पूजा कुमारी, आरती कुमारी, सुनीता देवी, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, चांदनी नाज। आप सभी के अनुरोध पर आइए सुनते हैं फिल्म आशा का ये गीत। गायक कलाकार हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी। शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म आशा का ये गीत।

वंश प्रसाद, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर, धीरज सवासेरे। आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म एक नज़र का ये गीत। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो आइए सुनते हैं फिल्म एक नज़र का ये गीत।

फिल्म जब जब फूल खिले के इस गीत के लिए आप श्रोता हैं पटेल नगर मलौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोदिया, गीता रानी जाजोदिया, गगनदीप जाजोदिया, बेबी आरजू जाजोदिया, मोहम्मद कली दीवाना, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अमन, मोहम्मद सरफराज, मोहम्मद अमाज, सोनी बेगम, शमा प्रवीण, डॉली प्रवीण, मेहर प्रवीण। आदर्श नगर मलौट से आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा। आप सभी की फरमाइश पर आइए सुनते हैं फिल्म जब जब फूल खिले का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन कल्याण जी आनंद जी का।

0: गांव में लगभग 2,70,000 लोग प्रभावित हुए हैं। 95,000 से ज्यादा लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया है और बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए अधिकारी हाई अलर्ट पर है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कल तक तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। इधर राजधानी दिल्ली में आज शाम हल्की वर्षा हो सकती है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हो रही है। ये प्रतियोगिता 23 अगस्त तक चलेगी। भारत दूसरी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु कल अपना पहला मैच खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी से भारत को पदक मिलने की उम्मीद है। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद चुनौती पेश करेंगी। मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो भारत की अगुवाई करेंगे। भारत ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स में कोई पदक नहीं जीता है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में 9 विकेट से हरा दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की धरती पर बांग्लादेश की पहली टेस्ट जीत है और ऑस्ट्रेलिया पर कुल मिलाकर दूसरी। दोनों देशों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 22 अगस्त से मैके में खेला जाएगा।
1: महान संत श्री राम कृष्ण परमहंस के महाप्रयाण दिवस पर गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के महान विचारक और माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस ने भारतीय सनातन परंपरा की गहन शक्ति और आध्यात्मिक चेतना को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। NTA ने इस वर्ष जून में हुई UGC नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी किए। आपत्तियां दर्ज करने के लिए मंगलवार तक का समय। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान में वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने से उत्तरी ओडिशा में बाढ़ का खतरा बढ़ा। BWF विश्व चैंपियन

अभी आप सुन रहे थे चंदन दास को। इसी के साथ गैर फिल्मी गजलों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं कुछ फिल्मी गजलें। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में, फिल्म का नाम है उमराव जान। शब्दकार शहरियार, संगीतकार खयाम।

अभी आप सुन रही थी नरगिस फिल्म की गजल लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की आवाजों में। इसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी बासु चक्रवर्ती ने। फिल्मी गजलों का ये प्रोग्राम अब खत्म होता ही हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं मीडियम वेव 231.5 मीटर पर। आप हमारा प्रसारण न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं।

0: बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। उन्होंने आज राजस्थान के अलवर में कहा कि केंद्र सरकार इन वर्गों पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: किसानों के लिए, पशुपालकों के लिए हर साल एक योजना घोषित की। 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि इन्होंने किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो।
0: इस अवसर पर गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि अंतरित की। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। कालीधर रेंज से होकर बनाई गई ये सुरंग लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम होगा। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी ये सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉ. पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए डॉ. पेम्मा सानी और जिलाधिकारी कांत वर्मा की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन और तेज हो गया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: छात्र नेताओं ने बताया कि उनका आंदोलन 22वें दिन में प्रवेश कर चुका है और उनकी प्रमुख मांगे अब भी लंबित हैं। छात्र जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के साथ साथ कथित

0: नियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को 18 अगस्त तक सकारात्मक पहल करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पहली बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग भी उठाई है। उन्होंने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि मांगे पूरी नहीं होने पर वहीं से आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इस संबंध में कल पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन तथा सतत विकास संबंधी संपर्क समूह के अधिकारियों की बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता वाले ब्रिक्स सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इंडोनेशिया के फ्लोरेस तट के पास कल सुबह आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में 14 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई है। ये स्थिति 28 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार भूकंप में 51 लोगों की मौत हो गई और 113 लोग घायल हैं। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 9 विकेट पर 460 रन बना लिए हैं। बारिश के कारण आज पहले और दूसरे सत्र का खेल नहीं हो सका। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। आइए अभी एक नजर डालें हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आज के शेष मुख्य कार्यक्रम। अब से थोड़ी देर बाद यानी संध्या 6:10 पर आप सुनेंगे विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। मैथिली संवाद 6:25 पर प्रसारित किए जाएंगे।

ग्रामीण भाई अपना कार्यक्रम गांव घर सुनेंगे संध्या 6:30 पर, जिसमें आज आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम ममता का आंचल। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी संध्या 7:00, खेल गतिविधि पर क्रीड़ा जगत आप सुनेंगे रात 8:15 पर, रात 9:30 पर नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात 10:00 रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। ये थे आज के शेष मुख्य कार्यक्रम और अब कल के बारे में।

कल सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे नमस्कार मिथिला कार्यक्रम। 9:05 पर उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित जसराज को दिन में 11 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दिन में 11:30 पर। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे महिलाओं के लिए

नाड़ी संसार कार्यक्रम रोजगार सूचना हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 2:10 पर। लोक गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा अपराह्न 3:00। हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी संध्या 5:00 युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम से। कुछ विद्यापीठ गीत सुनिएगा संध्या 6:10 पर। मैथिली संवाद का समय रहेगा संध्या 6:25। प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद सुनिएगा गांव घर के तहत शाम 6:30 पर। किसान भाइयों के लिए खेती गृहस्थी संध्या 7:00। मैथिली कार्यक्रम सिंगरहार आप सुनेंगे रात 8:15 पर। पब्लिक स्पीक रात 9:30 पर। और फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी रात 10:00। अभी आप हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। प्रस्तुत है विद्यापति गीतों का कार्यक्रम। सबसे पहले सुनिए काशीनाथ झा किरण के सुर में विद्यापति की ये रचना।

विद्यापति गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आज आप सुन रहे थे रामकुमार मल्लिक और काशीनाथ झा किरण को। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

आकाशवाणी का ये दरभंगा केंद्र है। संध्या के 6:25 होने वाले हैं। अब मैथिली संवाद प्रसारित किए जाएंगे।

प्रस्तुत अछि संवाद, संवादक संग हम छी प्रियंका मिश्र। भारत निर्वाचन आयोगक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार कहलनि जे मतदाता शुद्धिकरण प्रक्रिया SIR के सबसँ सफल आयोजन बिहारसँ शुरू भेल। दू दिवसीय दौरा पर पटना पहुँचलाह मुख्य निर्वाचन आयुक्त पत्रकार सबसँ गपशप करैत कहलनि जे बिहार विधानसभा चुनावमे मतदान प्रतिशत आजादीक बादसँ एखन धरिक सबसँ बेसी रहल। ओ राज्यमे मतदाता जागरूकताकेँ लऽ कऽ प्रसन्नता व्यक्त कयलनि। श्री कुमार कहलनि जे राज्यमे मतदानक प्रतिशत अमेरिका, इंग्लैंड एहन कतेको अग्रणी देश सभक आम चुनावक मतदान प्रतिशतसँ बेसी रहल अछि। श्री कुमार कहलनि जे बिहार लोकतंत्रक जननी अछि आ एहि पहचानक अनुरूप राज्यक मतदाता चुनाव प्रक्रियामे सक्रिय रूपसँ भाग लैत छथि। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारक नेतृत्वमे निर्वाचन आयोगक एकटा उच्च स्तरीय टीम आइ राज्यक दू दिवसीय दौरा पर पटना पहुँचलाह। टीममे वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त मेसिस गर्ग, महानिर्देशक मीडिया आशीष गोयल आ महानिर्देशक IT डॉक्टर सीमा खन्ना सहित आयोगक औरो कतेको वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित छथि। मुख्य चुनाव आयुक्त श्री कुमारक दौराक दोसर दिन काल्हि नालन्दामे लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारी BLO लोकनिसँ संवाद करताह। ओतहि पटनाक ज्ञान भवनमे काल्हि आयोजित निर्वाचन साक्षरता क्लबक दोसर चरणक शुभारम्भ आ ECI नेट पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलनमे मुख्य अतिथिक रूपमे सेहो सम्मिलित हेताह। सम्मेलनमे बिहारक 400 बेसी शैक्षणिक संस्थान सभसँ हजारो विद्यार्थी, शिक्षक, विश्वविद्यालय सभक कुलपति तथा महाविद्यालय आ विद्यालय सभक प्रधानाचार्य आ संस्थाक प्रमुख भाग लेताह। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA एहि वर्ष जूनमे भेल UGC नेट परीक्षाक 84 विषयक उत्तर कुंजी जारी कऽ देलक अछि। उम्मीदवार 18 अगस्त धरि ई उत्तर सभकेँ चुनौती दऽ सकैत छथि। एहि लेल UGC नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कऽ सकैत छथि। NTA जनौलक जे अंग्रेजी, वाणिज्य आ समाजशास्त्र विषयक प्रश्न पत्र सभमे संभावित त्रुटिसँ जुड़ल शिकायतक जाँच कऽ रहल समितिक सिफारिशक आधार पर अलगसँ सार्वजनिक सूचना आइ जारी कयल जायत। राज्य सरकार ग्राम कचहरी सचिव लोकनिक मानदेय आ ग्राम कचहरी न्याय मित्र सभक फीसके एके बेरमे भुगतान करबाक निर्णय लेलक अछि। पंचायती राज विभाग एहि सम्बन्धमे एकटा पत्र जारी कऽ कहलक

अछि जे अप्रैल 2026 सँ जुलाई 2026 धरि 4 मासक एकमुश्त भुगतान लेल राशि जारी कऽ देल गेल अछि। 51,51,36,000 टाकाक राशि स्वीकृत कयल गेल अछि। एहि निर्णय सँ ग्राम कचहरी सँ जुड़ल कर्मी सभक बकाया भुगतानक रास्ता खुजि गेल अछि। राष्ट्र आइ पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के हुनक पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक स्मरण कऽ रहल अछि। एहि अवसर पर नव दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभाक आयोजन कयल गेल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आ केंद्रीय कैबिनेटक कतेको वरिष्ठ सदस्य सहित आन गणमान्य लोक प्रार्थना सभा में उपस्थित छलाह। ओतहि पटनाक पाटलिपुत्र पार्क में आयोजित राजकीय कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन आ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व प्रधानमंत्रीक प्रतिमा पर माल्यार्पण कऽ भावहीन श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पोस्टक माध्यम सँ सेहो पूर्व प्रधानमंत्रीक सेवा, राष्ट्र सेवा, सुशासन आ हुनक लोकतांत्रिक मूल्य सभकेँ स्मरण कयलनि। मुख्यमंत्री श्री चौधरी कहलनि जे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयीक विचार आ आदर्श आबयवला पीढ़ी सभक मार्गदर्शन करैत रहत। राज्यक सभ निबंधन कार्यालय मे काल्हि सँ पेपरलेस रजिस्ट्रीक व्यवस्था लागू कयल जा रहल अछि। एहि व्यवस्थाक अंतर्गत रजिस्ट्रीक प्रक्रिया मे कागजी दस्तावेजक आवश्यकता नहि होयत आ डिजिटल दस्तावेज सभक आधार पर निबंधन पूरा कयल जायत। मधुबनी जिलाक सौराठ स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान विश्व रिकॉर्ड बनेलक अछि। मात्र 4 दिन मे एहि संस्थानक छात्र छात्रा सभ द्वारा मिथिला पेंटिंग के स्थापित कलाकार लोकनिक मार्गदर्शन मे 108 मीटर नम्हर कैनवास पर मिथिला पेंटिंग बना कऽ विश्व रिकॉर्ड बनेला अछि आ पेंटिंगक सफल सत्यापनक बाद संस्थानक परिसर मे एकटा भव्य कार्यक्रमक बीच वर्ल्ड रिकॉर्ड्स यूनियन द्वारा संस्थाक महानिर्देशक चंद्रशेखर प्रसाद सिंह के प्रमाण पत्र सौंपल गेल। एहि संग आकाशवाणी दरभंगा FM रेनबो पटना सँ प्रसारित संवादक ई अंक समाप्त भेल।

0: कार्यक्रम गाम घरक अंतर्गत गुनगुनैत मोन सुनयवला सब श्रोता लोकन के मिहिर कुमार झा के नमस्कार स्वागत अभिनंदन संग नमस्कार देवू भाई।
1: नमस्कार नमस्कार मिहिर भाई, संगे समस्त श्रोता लोकन के सेहो नमस्कार। मिहिर भाई, आज तो बुझते छी जे आई रवि दिन अछि और रवि दिन के हमरा लोकन सुने छी साप्ताहिक कार्यक्रम गुनगुनैत मोन। ई कार्यक्रम खास कर जो छै जे हमर श्रोता लोकन जो पत्र भेजे छथिन ठाम ठाम सँ ओहि पर आधारित ई कार्यक्रम होइत अछि। तऽ हमरा लोकन जे श्रोता लोकन के जे पत्र आबै छै तऽ ओ तऽ हमरा लोकन के एकर आनन्द तऽ लेबे करब गीतनाथ के संग संग
0: संगे संगे। देवू भाई, एकटा प्रायोजित कार्यक्रम ममता काँचल सेहो सुनेबनि श्रोता लोकन के।
1: हाँ हाँ, मुदा हमरा लोकन के जे छै मिहिर भाई जे कार्यक्रम के जे शुरुआत करै छी ओ बुझू जे दोहा से करै छी। तऽ हमरा लोकन के कार्यक्रम के जे छै शुरुआत किएक नहि हमरा लोकन के दोहा से करी, तऽ दोहा के जो बोल जो छै की अछि ओ श्रोता लोकन के बता देल जाओ।
0: देखियो देवू भाई, अहम श्रोता लोकन के लेल रहीम दास द्वारा रचित ई दोहा अनलहुँ हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सजहि सुजान। देखियो देवू भाई, रहीम दास ए दोहा के माध्यमे कहैत छथि जे फलदार गाछ जे अछि ओ अपने फल कहाँ खाइत अछि, तालाब जे छै अपने पानि कहाँ पीबैत अछि। एहि तरह समझदार आ नीक व्यक्ति दोसरा के लेल अर्थात

0: परोपकार जे छै हुनका दोसरके लेल परोपकारमे ओ रत रहै छथि। तऽ देखियौ प्रकृति जे छै से अपना सबके परोपकारके एकटा उदाहरण अछि। प्रकृति सब चीज एक तरफा दऽ रहल अछि। देखियौ जे अपना सब जे सांस लै छी जन्मसँ लए कऽ सालो साल कतेक ऑक्सीजन अपना सब लै छै, या जे हॉस्पिटलमे घंटा दू घंटा जे ऑक्सीजन पर किनको रखैए तऽ कतेक हजार पाइप डॉक्टर लऽ लै छथिन। तऽ ई प्रकृति जे छै से ऑक्सीजन अनवरत बैठ रहल छथिन, इएह छियै परोपकार।
1: देखियौ मिहिर भाइ बहुत नीक गप कहलहुँ। कहबितो छै पर हित सरीस धर्म नहीं दूजा। परोपकार से कोनो धर्मे नहि अछि। ताहि दुआरे हमरा लोकनि सामाजिक प्राणी छी, समाजमे रहै छी, आओर समाजमे जे सदखन जे किनको प्रति ईर्ष्या द्वेष नहि रखबाक चाही। जँ हुनका जँ हमरासँ किनको कोनो तरहक त्रुटि हुनका भऽ गेलनि तऽ ओहि लेल जे छै हमरा लोकनिके मनके जो मैल अछि ओ खत्म कऽ लेबाक चाही, मिलजुल कऽ रहबाक चाही। इहे नीति हमरा लोकनिके सिखाबैत अछि
0: परोपकाराय पुण्याय पापाय।
1: हाँ हाँ, तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके सदखन ई प्रयास करबाक चाही जँ हमरासँ किनको जे हित नहि भऽ रहल अछि तऽ किनको प्रति जे अधला सेहो नहि सोचबाक चाही। तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके सदखन ई परोपकार करबाक चाही, किनको जे छै सदखन जे छै सम्मान करबाक चाही, आओर समाजमे जे छै जे हमरा लोकनिके जे छै सदखन बनाके राखी। ओहिसँ होइ छै कि जो अहाँके नाम चर्चा जे छै बढ़ै छै, जे अहाँ फल्लामा बाबू देखियौ हुनकर कितने नीक विचार छलनि, कतेक नीक विचार अछि, तऽ ई सम्मानजनक होइत अछि। तऽ ताहि दुआरे अपने जे नीक रहबै ने तऽ आनो कोइ के छै ओकर जे छै असर पड़ै छै। तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके सदखन नीक काज करबाक चाही, आओर प्राकृतिक सदखन हमरा लोकनिके उपहारे दैत अछि। आओर एहि लेल जे छै हमरा लोकनिके जे छै खास कऽ कऽ जे छै देखिए रहल छी जे हमरा लोकनिके दिन प्रतिदिन जे पर्यावरणके सेहो क्षति पहुँचा रहल छी, जकर परिणाम दिन प्रतिदिन भोगबा लेल हमरा लोकनिके भेट रहल अछि। तऽ हमरा लोकनि तऽ ओना तऽ समयमे जे मिहिर भाइ बांधल छी, लेकिन जे श्रोता लोकनिके जे पत्र आयल अछि ओ कतऽ कतऽसँ आयल अछि ओ श्रोता लोकनिके बता देल जाउ।
0: देखियौ देवू भाइ, हमरा लग जे चिट्ठी आयल अछि से नरहन स्टेट फुटानी चौकसँ आयल अछि। लिखनहार छथि भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फुकनी झा, उदयकांत ठाकुर, अमन परासर, ललन मिश्रा। एकटा आओर चिट्ठी जे यऽ ओ यऽ नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहारसँ। लिखनहार छथि मुसरत जहानाज शिक्षिका छथि, तलहत जहानाज, फरहत जहानाज, रिफअत जहानाज।

0: अछि, लिखनहार छथि भाई फटफटिया झा, फुलेश्वरी देवी, फूल कुमारी, फुकनी झा, उदयकांत ठाकुर, अमन पराशर, ललन मिश्रा। एकटा आओर चिट्ठी जे यऽ ओ यऽ नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहारसँ। लिखनहार छथि मुसरत जहाँ नाज शिक्षिका छथि, तलहत जहाँ नाज, फरहत जहाँ नाज, रिफअत जहाँ नाज, नूजहत जहाँ नाज, सजिया शाहीन नाज। एकटा आओर चिट्ठी अछि घोढ़िया मधुबनीसँ, लिखनहार छथि अंशु कुमार झा, नीता कुमारी, अंशु नाज, ई सब पठेने छथि। अहाँ
1: हाँ
0: लग कोन
1: हाँ हमरा
0: चिट्ठी
1: लग
0: अछि?
1: जे आयल अछि, देखू बहुत पुरान श्रोता छथि, सदाबहार रेडियो श्रोता संघ ताजपुर मोरबासँ भेजयवला श्रोता छथि भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज अर्यन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिक्की नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा और जयंत कुमार बिरागी। दोसर पत्र आयल अछि बैंक रोड भगवतीपुर वार्ड नंबर 300, भेजयवला श्रोता छथि संतोष कुमार मुखिया, रानी अनीता राज, गरमा राज, अभिषेक कुमार, अविनाश कुमार, अमरेंद्र, वंश प्रसाद। तऽ ई सब सुनय चाहैत छथि ई लोकगीत।
0: सुनल जाओ।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ मीर भाई, अखन हमारा लोकन के दोसर सोता के पत्र आयल ताजपुर मुड़वा से भेजे वाला छथि भाई कारी राय कारी, श्रीमती मीना कारी, पुंज राज अरियन, आरती पुंज, आकर्षण पुंज, जयश्री, पिंकी, रिक्की, रिक्कू, नीतू, मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली सकरा से जयंत कुमार बिरागी।
3: हमारा लग जो चिट्ठी आयल ये झंझारपुर नंगरा चौक से लिखनहार छथि हरे राम पासवान, काजल कुमारी, जयशंकर पासवान, रानी कुमारी, ये सब सुनो चाहे छथि ई गीत
2: आ सुनी।

0: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
1: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
2: हाँ, अब देबू भाई, अब अपना सबके बेर भ रहल अछि प्रायोजित कार्यक्रम ममता के आंचल के,
3: तऽ हमरा लोकनि सुनी।
2: हाँ, ई कार्यक्रम,
4: इस कार्यक्रम के प्रायोजक है श्रद्धा आईवी।

0: एफ भिकना पहाड़ी पटना 4।
1: नमस्कार, राजेश बोल रहा हूँ। जी हाँ, कार्यक्रम है ममता का आंचल। रविवार का दिन है और इस वक्त आप यही कार्यक्रम सुनते हैं। खास करके वैसे दंपत्ति जिनके शादी के 2-3-4 साल हो गए, बच्चा नहीं है, उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, विज्ञान कैसे उनकी मदद कर सकता है, हम इसमें बातें करते हैं। IVF पद्धति से बच्चा प्राप्त करना बहुत ही आसान हो गया है। आज बातें करेंगे कुछ खास, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर श्रद्धा चकहियार हमारे साथ बैठी हैं स्टूडियो के अंदर और लगातार जो बातें होती है आप तक इस रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। उनको बुलाएं, उनसे पहले हम उनका नंबर आप तक भेजना चाहते हैं, नोट कर लें। कागज कलम अगर पास नहीं है तो मोबाइल में ही नोट कर लेना, आराम से तफसील से बताएंगे। नंबर है 9162562266। आराम आराम से 9162562266। और ये कार्यक्रम ममता का आंचल हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी की तरफ से, जो पटना में है, भिकना पहाड़ी मोड़ पटना 4 में है। आप चाहें तो ये नंबर जो हमने बताया डॉक्टर श्रद्धा का 9162562266, इस पर बात करके डॉक्टर श्रद्धा से मिलने आ सकते हैं। आज एक बात बताऊं आपको, कल का दिन बहुत खास है। हाँ, आने वाला कल बहुत खास है डॉक्टर साहिबा, लेकिन डॉक्टर साहिबा को तो हमने बुलाया ही नहीं। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देखा ना, गलती हो जाती है, कभी कभी गलती हो जाती है और पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से गलती आपसे भी हो रही है कि विशेषज्ञ डॉक्टर के पास नहीं जा रहे और परेशानी में पड़े हैं। बहरहाल आगे बातचीत होगी। कल का दिन बहुत खास है डॉक्टर साहिबा, कल सावन का तीसरा सोमवार है, यानी सोमवारी कह लें, और नागपंचमी भी है ना। तो आज हम विज्ञान की बात कर रहे हैं और कल आध्यात्म हमारे सिर चढ़कर बोलेगा, नहीं?
2: बिल्कुल राजेश जी, सबसे पहले तो नमस्कार श्रोताओं, नमस्कार राजेश जी।
1: नमस्कार हो गया, लेकिन एक बात बताइए कि इस आध्यात्म से जुड़ी अगर कोई घटना है आप बताना चाहें जो बहुत ही मोटिवेटिव हो, हम जिससे प्रेरणा ले सकें, हाँ, ऐसी कोई घटना अपने बिहार राज्य की हो तो ज्यादा अच्छा होगा।
2: बिल्कुल, आज क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, सावन का सोमवारी है, साथ में नागपंचमी है।
1: जी जी।
2: इसके साथ जो एक कथा बहुत प्रचलित है वो मैं आप सबों को बताना चाहती हूँ।
1: हाँ।
2: वो हमारी नवगछिया और भागलपुर की है।
1: नवगछिया जो अपने यहाँ भागलपुर पूर्णिया के पास।
2: बिल्कुल
1: है।
2: हाँ। बिल्कुल, एक कहानी है बिहुला की।
1: जी,
2: जो पुरानी कहानी है ये कहती है कि बिहुला के जो पति, उन्हें सर्प ने काट दिया और वो निश्चेतित यानी कि बेहोश हो गए।
1: जी।
2: लेकिन बिहुला ने हिम्मत नहीं हारी, वो अकेले अपने पति को लेकर के आराधना करने लगी, ईश्वर से आराधना करने लगी, और उसकी इस आराधना के कारण सृष्टि को भी झुकना पड़ा, और इसके फलस्वरूप उसके पति उसे वापस मिले, जो कि सर्प से ने काट लिया था, फिर भी पति वापस आए और उसे संतान सुख प्राप्ति हुई।
1: तो ये तो यही घटना बताती है ना कि हार नहीं मानना चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ पाने की चाहत है तो ईश्वर भी आपका साथ देता
2: बिल्कुल,
1: है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास बहुत से ऐसे दंपति आते हैं जिनको ये बोला जाता है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं वैसे दंपति को ये बताना चाहती हूँ, जिस तरह से बिहुला ने हार नहीं मानी
1: जी।
2: और वो लगातार आराधना करते रही, वैसे ही जो निसंतान दंपति जो बहुत दिन से निसंतानता से जूझ रहे हैं, उनको जरूरत है पहले तो वो हार नहीं माने, क्योंकि ये जर्नी, ये सफर बहुत, निसंतानता के लिए जो इलाज कराते हैं वो सफर बहुत कठिन होता है। बहुत लोग चार बात सुनाते हैं, बहुत बार असफलता हाथ लगती है। तो आप निराश नहीं होइए, आप हिम्मत रखिए, और जिस तरह से बिहुला ने हिम्मत रखा, आप हिम्मत रखिए और अपने डॉक्टर ये भी ध्यान दीजिए कि आप, अगर आप निसंतानता से जूझ रहे हैं तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें। अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट है, अपने डॉक्टर से पूछें कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं बच्चा ठहर रहा है, सही इलाज कराएं ताकि आपको बच्चा मिल जाए।
1: ताकि आपको बच्चा मिल जाए। बहुत ही प्रेरक शब्द थे डॉक्टर श्रद्धा आपके कि हार नहीं मानना चाहिए और जीवन में ऐसे भी हार नहीं मानना चाहिए। जब तक सांस है तब तक

0: आस होनी चाहिए। कार्यक्रम चल रहा है ममता का आंचल, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर श्रद्धा चखैयार, आईवीएफ विशेषज्ञ हैं, आपसे बातें कर रही हैं। आपके लिए ये समझने की जरूरत है, अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे आपको पहले बता दें कि हम ये कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी की तरफ, जो हमेशा आपके लिए सोचती है। पैसे की समस्या है या आप यहाँ जब आती हैं तो और भी परेशानियां हैं, ढेर सारी सुविधाएं आपको दे रहा है श्रद्धा आईवीएफ एंड मैटरनिटी, और उसके पीछे बस एक ही मंशा है कि आपके घर में किलकारी आ जाए, बच्चा आ जाए। ईएमआई से आप पैसा दे सकते हैं, शुल्क अदा कर सकते हैं, और वो भी 24 इंस्टॉलमेंट में। इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर अगर आप जाएंगे तो पहला कंसल्टेशन फी फ्री मिलेगा, और अगर आप उस प्रोसेस से गुजरते हैं क्लिनिक में रहकर तो अटेंडेंट के रहने की मुफ्त में सुविधा मिलेगी। बहरहाल लौटते हैं डॉक्टर श्रद्धा के पास। डॉक्टर श्रद्धा एक बात बताइए, आप बार बार निसंतानता, हाँ आफ्टर ऑल ये शब्द के विषय में थोड़ा सा हमारे लोगों को बताइए।
1: निसंतानता यानी कि वैसे दंपति जो बिना किसी गर्भ निरोधक के पिछले एक साल से प्रयास कर रहे हैं और बच्चा नहीं ठहर रहा है, ऐसे दंपति को कहा जाता है कि वो निसंतानता से जूझ रहे हैं। और अब जरूरी है कि अब आप एक साल पे के बाद अगर नहीं ठहरा तो अब आप इलाज कराएं। इलाज आप कहीं भी, प्राथमिक इलाज कहीं भी करा सकते हैं।
0: जी जी।
1: और ये देखा गया है कि कुछ दवाइयों से, कुछ हार्मोन यानी कि केमिकल जांच से जो कुछ दिक्कत आता है, उन दवाइयों के ही सेवन से बहुत लोगों को अगले एक साल में बच्चा ठहर जाता है, यानी कि कोशिश करने के दो साल में ही बच्चा ठहर जाता है।
0: जी।
1: लेकिन अगर दो साल से भी बच्चा नहीं ठहरा तो अब जरूरी है आपको निसंतान रोग विशेषज्ञ से ही आकर के मिलें, उनसे इलाज कराएं, क्योंकि वो आपकी बीमारी बेहतर समझेंगे। लेकिन मैं साथ में यही कहना चाहूंगी कि अगर किसी दंपति का, जहाँ की औरत का उम्र 35 साल से ज्यादा हो गया है, तो आप सिर्फ 6 महीने की ही कोशिश करें, उससे ज्यादा समय ना लगाएं। अगर 6 महीना में बच्चा नहीं ठहरा तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से मिलें और इलाज कराएं।
0: आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया, इसी में हम चाहते थे कि अलग से पूछें, जिससे लोगों के दिमाग में ये बातें आएं कि सही समय और सही जगह कौन सी होती है। बहरहाल इस पर चर्चा करेंगे, कम से कम सही जगह पर चर्चा करेंगे। एक बार आप बार बार कहती हैं कि निसंतान रोग विशेषज्ञ, हमेशा ये बातें आ रही हैं, लोगों के मन में ये बातें हो रही हैं कि आफ्टर ये होता कौन है, तो निसंतान रोग विशेषज्ञ से क्या मतलब है आपका?
1: निसंतान रोग विशेषज्ञ का मापदंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डाला है, यानी कि वैसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी डिग्री, मास्टर्स की डिग्री के बाद कुछ उच्च स्तर पढ़ाई की है, जिससे उन्हें निसंतान रोग विशेषज्ञ का डिग्री मिल जाता है। और इस पढ़ाई में वो यही पढ़ते हैं कि क्या क्या कारण होता है निसंतानता का और क्या बेहतर इलाज किया जा सकता है ताकि उन्हें जल्दी संतान प्राप्त हो।
0: चलिए आपने इसका जवाब दे दिया, लेकिन हम फोन नंबर एक बार बता दें आपका। डॉक्टर श्रद्धा का फोन नंबर है 9162562266, 9162562266, ये नंबर है। पैसा ईएमआई पर दे सकते हैं, 24 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जा सकता है। जल्दी से पूछ लें, आपने समय बता दिया,
1: बिल्कुल,
0: जगह बता दीजिए, कहाँ कैसे आईवीएफ सेंटर का चुनाव होना चाहिए।
1: आपको उस सेंटर का मापदंड भी देखना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के स्टाफ का जो जरूरी डिग्री होता है वो है कि नहीं। लेकिन सबसे जरूरी जो ये है कि आप वहाँ के डॉक्टर से जुड़ाव महसूस करें, ये सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर आप हर बार एक नए डॉक्टर का चेहरा देखेंगे उस हॉस्पिटल में तो कभी भी जुड़ाव नहीं हो पाएगा।
0: ये व्यक्तिगत चीजें होती हैं।
1: हाँ, क्योंकि हर बार आपको अपनी कहानी नए सिरे से सुनाना पड़ेगा, इसलिए जहाँ आपको संतुष्टि मिलती है वहाँ इलाज कराइए। लेकिन साथ में ये भी देखिए उस आईवीएफ सेंटर का सक्सेस रेट क्या है और वो सारे मापदंड पे खड़ा है कि नहीं।
0: हम चाहेंगे कि इलाज क्या है इसका थोड़ा सा बताइए, क्योंकि और भी सवाल हमारे पास है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बचा है।
1: निसंतानता का इलाज जो सबसे पहले शुरू होता है वो लाइफस्टाइल से शुरू होता है, यानी कि जिनका वजन ज्यादा है, चाहे पुरुष हो या औरत, अपना वजन कम करें, जो ज्यादा जंक फूड्स खाते हैं, जंक फूड खाना

0: बंद करें, दंपति में कोई भी धूम्रपान ये सब का, बीड़ी सिगरेट का सेवन करता है तो वो सब बंद करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडा और शुक्राणु की क्वालिटी को घटाता है
1: जी।
0: अगर किसी को कुछ बीमारियां हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज, ये सब कंट्रोल करें, क्योंकि उससे आपको संतान प्राप्ति का जो चांस होता है वो घट जाता है
1: जी।
0: लेकिन जो सही सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इलाज आपका अगर काफ़ी साल हो गया और बच्चे नहीं ठहर रहे हैं तो IVF एक बहुत सटीक इलाज है जिससे बच्चा ठहरता है। क्योंकि निसंतानता में जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि औरत के अंदर भ्रूण नहीं बन पाता है। भ्रूण चाहे कारण पति भी हो सकते हैं, कारण महिला भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली भ्रूण नहीं बन पाता है। तो IVF में हम लोग यही करते हैं कि अपने IVF लैब में भ्रूण बनाते हैं, और भ्रूण यानी कि छोटा बच्चा वो बनाते हैं, और वो बना करके माँ के गर्भ, औरत के गर्भ में डाल देते हैं।
1: ये भी बता दीजिए कि सक्सेस रेट क्या है, जो लोग नए जुड़े हैं और शंका पाले हुए हैं उनको भी सॉल्यूशन मिल जाए।
0: सक्सेस रेट सबके लिए जो सबसे बड़ा मापदंड है वो उम्र है। आप जितने सही जल्दी आकर के इलाज कराएंगे, अगर कोई दंपति 25 से 30 साल की उम्र में आता है और इलाज कराता है तो उनका सक्सेस रेट कभी कभी 90% भी होता है। लेकिन अगर वही दंपति 40-45 साल की उम्र में आता है तो उसका सक्सेस रेट 40-50% मुश्किल से होता है। तो सही समय पे इलाज कराना है, लेकिन ओवरऑल इसका सक्सेस रेट जो होता है वो 60-70% होता है।
1: 60-70% होता है। जल्दी से नंबर बताएं और इम्पोर्टेंट सवाल पूछें। 9162-562-266 9162-562-266। डॉक्टर श्रद्धा, कहा जाता है कि शादी के बाद पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिये होते हैं, साथ साथ चलते हैं। हाँ,
0: बिल्कुल।
1: तो इस निसंतानता को दूर करने की जर्नी में पति पत्नी का साथ होना कितना जरूरी है, और इस पर कोई अगर अध्यात्म से जुड़ी बातें हो तो बताइए।
0: पति पत्नी का साथ होना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं एक आध्यात्मिक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बिहुला जब
1: कहानी आपने बताई,
0: जी हाँ, हाँ, जब उसके पति निश्चय बेहोश थे,
1: हाँ,
0: तो उसने जब आराधना की और सृष्टि भी झुका, लेकिन वो थ्रू आउट जो जर्नी में वो जब साथ जब वो निकली तो भले उसके पति बेहोश थे, वो अपने पति के साथ थी और पति कम से कम शरीर से भी उसको साथ दिए, और वो दोनों जब मिलके निकले तभी सृष्टि झुकी और वो सफल हो पाए। उसी तरह से हर निसंतान दंपति के लिए जरूरी है, सिर्फ पत्नी ही नहीं पति भी उतना ही जोर लगाए, उतना ही एफर्ट लगाए ताकि उनको बच्चे प्राप्त हो।
1: हम साथ साथ हैं,
0: बिल्कुल। हाँ। ये जानना बहुत जरूरी है कि निसंतानता का सफर किसी के लिए भी, ना सिर्फ औरत, पुरुष के लिए भी अकेले काटना बहुत मुश्किल है। दोनों पति पत्नी का अच्छा
1: कोऑर्डिनेशन,
0: अच्छा
1: तालमेल,
0: अच्छा तालमेल होना चाहिए, तभी उनको संतान प्राप्त हो सकता,
1: तभी उनको संतान प्राप्त होगा। यानी एक अच्छा डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर, पति पत्नी का साथ और समाज और परिवार का सहयोग मिले तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता है। ममता का आंचल ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, अभी बस चंद मिनटों में ये खत्म हो जाएगा आज का ये कार्यक्रम। लेकिन चलने से पहले आप सबों से यही कहना चाहते हैं कि हार मत मानिए। आज जो जो कहानियां सुनाई गई सिर्फ मोटिवेट करने के लिए थी, इसके पीछे और कोई मंशा नहीं थी। आप लोग प्रयास कीजिए, प्रयास सफल होता है। चलने से पहले डॉक्टर श्रद्धा चखैयार का नंबर हम आपको बताना चाहते हैं, इत्मीनान से बात कीजिए, जानकारियां लीजिए, जानकारियां ही सारी चीजों का समाधान है। 9162-56-2266 पैसे की चिंता नहीं कीजिए, बात कर लीजिए। 24 इंस्टॉलमेंट पर आप पैसा दे सकते हैं, रहने की भी सुविधा आपको मिलेगी जो अटेंडेंट होंगे, एकदम घर जैसा माहौल। श्रद्धा IVF एंड मैटरनिटी, भिखना पहाड़ी मोर पटना, जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम आपके घर आंगन में लेकर आ रहे थे। चलते हैं डॉक्टर श्रद्धा, कल के लिए आज ही आपको भी शुभकामनाएं।
0: नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्रद्धा IVF, भिखना पहाड़ी, पटना 4।
3: मिहिर भाई, अखन हमारा लोग प्रायोजित कार्यक्रम सुनल छलो ममता का आंचल, खूब निक लागल। आशा करै छियनि जे श्रोता लोकन सेहो ई सुनि के लाभ उठेथिन। अब देखू जे हमरा लोकन के जो छै, ओना तऽ हमरा लोकन के समय में बांधल छी, और आब जो छै कार्यक्रम

0: गुनगुनाइत मन के समेट कर आब हमारा लोग खेती गृहस्थी दिस चलबाक चाहिए। तो कार्यक्रम खेती गृहस्थी में समस्त अन्नदाता के स्वागत करै छियन, नमस्कार करै छियन।
1: देखियो देवू भाई, किसान सब जे छथि से अन्नदाता तो छथि आ भारत का अर्थव्यवस्था जे छै से खेतिए पथारी छै।
0: हयो ओनाहियो नहि, भारत एकटा कृषि प्रधान देश सेहो अछि। तो जो कृषि प्रधान देश में हमारा लोकन के जो छै अन्न पान नहीं उपजाए तो खाली टके जो छै लके तो जो छै पेट तो नहीं उसे चले वाला छै। अन्न पान जखने निक हैत हमर समाज तखने स्वस्थ रहत, और जखने जे उपजा बाड़ी निक है तखने ना हमारे सबके धन्यमान कहलाब। ते दुआरे हमारा लोकन के जो धनमान की कहलाब कभी तो छै जे समझे एका बरखा जब कृषि सुखानी अखन जो हम देख रहा से किसान श्रोता लोकन कते मेहनत से परिश्रम से जो खेती पाती कने छलाह, मुदा जो देखे छी जे कार्यकारी में उठैय आ हवा के फुहार पर बुझू जे आगा बढ़ जाए। तो कहबाक तत्पर्य जो खेती बाड़ी के जो हाल छै वो हाल में तो बुझू जे ओकरा छोड़ के कुछ आनो जो छै जे व्यवसाय के या आनो खेती के अपना भी तो जीविका के उपार्जन के जो छै एकटा साधन बनि सकत।
1: बात तो सही छै लेकिन कहबी छै जे खेती नहीं करब तो खायब की, बुझ गेलियै? तो खेती पथारी तो बड़ जरूरी छै। आ देखियो अपना सबके किसान भाई सब जे छै से खेती पथारी कऽ के जतमान सामान छै अपना सबके अन्न फल फूल सब तरहक वस्तु उपजबै छथि। आ देखियो अपना सबके लेल जतेक भी खगता के काज होइए जेनाकि माटि तरमे जतेक भी चीज होइए, कपड़ा पहिरल, हाँ कपड़ा पहिरल जे कपास होइए रेशम होइए ओ सबटा तऽ किसाने सब उपजबै छथि, जे अपना सब भोजनो करै छी पहिरतो छी। तऽ एहि तरह देबू भाई किसान भाई लोकनि माटि तरमे होइ वला वस्तु जेना आलू प्याज शकरकंद मिश्री कंद जकरा अपना सबके सोर कहै छियै एहि सब वस्तु खेती सेहो नीक जकाँ करै छथि। संगे देबू भाई एहि सबक वस्तुक मांग प्रायः सब दिन रहैत अछि। आ देखियो अपना सब अखन मिश्री कंद जकरा केसौर कहै छियै ओहि पर गप सप करब किसान भाई साहब। केसौर जे छै से अखन जेना अखन अपना सबके महादेव के पूजा पाठ चला, महादेव के पूजा पाठ में केसौर महादेव के फल बड प्रिय होइ छै। महादेव पूजा में केसौर लोग चढ़ेबते रहै छै।
0: हां ओतबे नै मिहिर भाई, ओइल समयो बहुत अनुकूल अछि। एही मास में जकरा हमरा लोकन जे छै केसौर कहै छी, हयो आप तो दिन प्रतिदिन बुझू जो हो एकटा बुझू जे विलुप्त भऽ रहल अछि। तऽ तै दुआरे ई जो छै केसौर के कोना हमरा लोकन के जो छै एकर खेती करी जैसे हाट बाजार में जो छै एकर मांग सदखन होइत रहैय। आ खास कऽ के जो कोनो तरहक पावन त्यौहार हुए, कोनो तरहक पूजा पाठ हुए, ओहि में जो छै प्रसादी के रूप में एकर सेहो बड़ मांग होइत रहैय। तऽ तै दुआरे हमरा लोकन के मिश्री कंद के खेती कऽ के जे करी तो बेसी से बेसी एकरा जो छै कऽ के जे लाभ प्राप्त कऽ सकै छी। तो खेती करबा से पहिने हमरा लोकन के उन्नत प्रभेद के जे छै मिहिर भाई हमरा लोकन के चुनाव कऽ लेबाक चाही कि ओकर माटि केहन हेबाक चाही, ओकरा लेल छै उन्नत प्रभेद की अछि, केहन मौसम हेबाक चाही। तो एहि लेल जे छै मिश्रीकंद के खेती लेल ओकर उन्नत प्रभेद जे छै केना की छै?
1: देखियो देबू भाई मिश्रीकंद के आधुनिक खेती के लेल हल्लुक आ दोमट माटि संग संग बलुए माटि जे छै से नीक मानल गेलैए। आ किसान भाई लोकनि मिश्रीकंद के खेती के लेल माटिक जाँच सेहो करेनाइ आवश्यक छै, किया तऽ माटिक जाँच करेलाक बादे पता चलै छै जे ओहि माटिमे जाहिमे अपना सब मिश्रीकंद के खेती करब ओहि माटिमे ओहिके लेल कोन उर्वरक आ कतेक मात्रामे छै, ई तऽ माटि जाँच करायब तखने ने पता चलै छै।
0: हाँ मिहिर भाई ठीके कहलहुँ हैं कि देखियौ कोनो तरह खेती करबा से पहिने जे हमरा लोकन के माटि जाँच केनाइ बहुत जरूरी अछि। कारण कि हमरा लोकन के जे छै पूँजियो लगाबै छी, मेहनतो करै छी, परिश्रम करै छी, आ जँ माटिमे जे छै फसल के अनुकूल जँ ओहि ढंग के माटि नहि मिलै तो सबटा कैल धल जो छै बेकार भऽ जाइ छै। तऽ माटि जाँच करेला से पता चलै छै कि कोन उर्वरक के कमी छै खेत मे, कोन फसिल लेल जो छै ई माटि उपयुक्त अछि। तऽ तै दुआरे माटि के जाँच करा कऽ जँ खेती करी तऽ बेसी से बेसी लाभदायक भऽ सकैत अछि।
1: लगतो कम लगै छै, माटिक जाँच करायब तऽ समुचित खाद देबै, ओतबी उर्वरक देबै, आब जाँच नहि करायब तऽ अनेरे कोनो

0: दऽ देबै
1: यौ मिहिर
0: बेसियो
1: भाइ,
0: दऽ देबै तऽ ओहिसँ फायदा तऽ नहि होइ छै।
1: आब देखू सर्दिए खाँसी भऽ गेल यऽ, आब सर्दी खाँसीके दवाइ नहि खा कऽ आन चीजके दवाइ खयबै तऽ अहाँके सर्दी खाँसी ठीक हैत नहि। तऽ ताहि दुआरे सर्दी खाँसीके जे छै कोइ वैद्यसँ देखवा लिअ, तखन दवाइ जहन खयबै ने तऽ बेसी जे छै सूट करै छै, लाइक करै छै। ठीक ओनाही माटिओमे छै, फसिल अहाँ लगा रहल छियै, ओहिमे देख रहल छियै कि माटिमे कोन पोषक तत्वके कमी छै, ओहि फसलके लेल ओ माटि उपयुक्त छै कि नहि छै, ओहि लेल तऽ जरूरी छै ने। तऽ ताहि दुआरे हमरा लोकनिके जे छै फसिल लगेलासँ पहिने माटिके अवश्य जाँच करवा ली, तखने खेती करी तऽ बेसीसँ बेसी लाभदायक भऽ सकैत अछि। तऽ ई तऽ हम माटिक गप कहलहुँ मीर भाइ, सङ्ग सङ्ग जे हमरा लोकनिक जे केसौरक मिश्रीकंदके जे परविए दिया ओ की अछि सेहो श्रोता लोकनिके बता दियौ।
0: देखियौ देवू भाइ, मिश्रीकंदके खेतीके लेल 20 डिग्री सेल्सियससँ लऽ कऽ 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जे छै, जरा उष्णकटिबंध जलवायु से अपना सबके क्षेत्रमे
1: वातावरण हेबाक चाही।
0: हाँ, ये अपना सबके क्षेत्रमे एहि तरहक तापमान अछि जे अपना सबके वास्ते ई उष्णकटिबंध जलवायु जे छै से मिश्रीकंदके लेल उपयुक्त छै। देखियौ देवू भाई, मिश्रीकंदके खेतीके लेल ऊँचरस खेत जाइमे पानिक जमाव नहि होइ, किया तऽ मिश्रीकंदके खेती खेत जे छै पानि जँ जमा भऽ जायत तऽ ओकर गाछ जे केसौर तऽ होइ छै मिश्रीकंद, जड़िमे होइ छै, जड़िमे होइ छै तऽ ओ गाछ सड़ि जायत तऽ केसौरो सड़ि जाइ छै। ताहि दुआरे मिश्रीकंदके खेतीके लेल जे जुलाइसँ सितम्बर मास नीक मानल गेलै, जे अखन जखन माटिके नीक जकाँ तैयार भऽ जाय, दोमट माटि या बलुआही माटि एकरा नीक जकाँ तैयार कऽ ली, तहन मिश्रीकंदके बाउग कऽ देबाक चाही। बीयाके बाउग करैसँ पहिने बीयाके बीजोपचारित कऽ कऽ तखने बीयाके बाग करी। देखियौ देवू भाइ, मिश्रीकंद खेतीके लेल बीयाके गप करब तऽ एकर बीयाके प्रति हेक्टेयर जुलाई मासमे बाग करब तऽ 15 सँ 20 किलो, वएह जखन अगस्त मास आबि जायत जखन चलि रहल अइ ओहि मासमे जे मिश्रीकंदके बीया बाग करब तऽ 30 सँ 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयरके दरसँ खेतमे देबऽ पड़ै छै।
1: कहबाक तत्पर ई अछि मिहिर भाइ कि जेना मने मौसमके अनुकूल समयके अनुकूल जो छै जे बीया बालके सेहो आवश्यकता पड़ै छै, माने कोन सीजनमे कोन मासमे कतेक बीया लगेबाक चाही, तऽ एहि गपके जे छै हमर किसान श्रोता लोकनिके विशेष रूपसँ ध्यान राखय पड़थिन।
0: वएह जे सितम्बरमे करता बाग मिश्रीकंदके तऽ ओ 50 सँ 55 किलोग्राम बीया प्रति हेक्टेयरके दरसँ देबऽ पड़त,
1: व्यवहार करय पड़त। ई तऽ बहुत नीक चीज कहलहुँ हँ कि समयके अनुकूल जे छै हमरा लोकनिके बीया बालके ध्यान रखबाक चाही।
0: देखियौ देवू भाइ, मिश्रीकंदके गाछसँ गाछक दूरी आ कतारसँ कतारके दूरी 30 × 30 सेंटीमीटर राखब तऽ मिश्रीकंदके गाछ बीया जे गाछ दूरमे रहत 30 सँ 30 सेंटीमीटर तऽ मिश्रीकंदके फल नमहर।
1: हाँ, पोषक तत्व भेटत रहत मिश्रीकंदके जे छै केसौरके, ओहिसँ होइ छै कि उपजा बाड़ी बेसीसँ बेसी होइ छै। आ जब मानि लिअ एके ठाम जखन लगा देबै तऽ सुखिया जाइ छै, तऽ ताहि दुआरे दूरी बनाके हमरा लोकनिके जकर बाग करबाक चाही।
0: देवू भाइ, मिश्रीकंदके खेतीमे जँ जैविक खादके उपयोग करब तऽ खेतक अन्तिम जखन जुताइ करऽ लगै छी ओहि समय 10 सँ 12 टन सरल गोबर या कम्पोस्ट खाद प्रति हेक्टेयरके दरसँ जुताइ कयलाके बाद बाग कयलाके बादे मिश्रीकंदके बीयाके बाग करबाक चाही।
1: माने पहिले नीक जगह जोताइ कोराइ कऽ ली, कहबी तो छै जे कोनो तरहके खेती जे करै छियै तऽ सबसे पहले खेतक नीक जकाँ तैयारी करू, आ जहन खेत नीक जकाँ तैयारी भऽ जाइ छै मिहिर भाइ तखन ने उपजा बाड़ी धरतै यौ। तऽ ताहि दुआरे सबसे पहले हमरा ध्यान रखबाक चाही कि खेतके नीक जकाँ तैयार कऽ ली, सङ्ग सङ्ग जे छै माटि जाँच करवा ली, बीजोपचार कऽ ली, तखन जाके खेती करी।
0: देखियौ देवू भाइ, मिश्रीकंदके बाग कयला बीयाके बाग कयला जखन ओ गाछ भऽ जाइए तऽ ओहि गाछमे जे फूल अबऽ लगै तऽ फूलके तुरते तोड़ि देबाक चाही, फूलके बार बार 10 दिन 5 दिनपर तोड़ि देत, किया तऽ फूल जाहिमे नमहर भऽ जायत फूल तऽ ओ गाछ फूल पर ध्यान दै छै, मिश्रीकंदके नमहर जे
1: आकार जो होइ छै कंद
0: आकार छोट भऽ जायत।
1: हाँ, तऽ
0: फूलके हरदम देखैत रहबा, जब 4 दिन 5 दिन पर
1: लतीफतीमे जो एहि तरहक भऽ जाय फूल,
0: हाँ तऽ फूल तोड़ि देबाक
1: ध्यान रखबाक चाही, सावधान रखबाक चाही।
0: आ जँ मिश्रीकंदके गाछमे फल छोट होयत ओ खाइमे ओतेक बढ़िआँ नहि लगै छै, आ मिश्रीकंदके फल जे छै से खूब स्वादिष्ट मिठगर आ कुरकुरा लगै छै, नमहर फल जे छै खूब बढ़िआँ फलहारोमे बड़ काज दै छै, जाहि फलमे जतेक पानि ओ फल ततेक सुपाच्य
1: भाइ। आब तऽ देखिए रहल छियै जे लगलै लगलै पाबनि त्यौहार सेहो आबिए रहल अछि, तऽ जँ एहि तरहे जे हमरा लोकनि मिश्रीकंदके

0: खेती करब तऽ हाट बाजारके जो माँग अछि ओ सेहो पूर्ति हैत, आ ओकरा हाट बाजारमे बेच बिकिनके बेसीसँ बेसी आमद सेहो प्राप्त कऽ सकै छी। आ जखने आमद प्राप्त हैत तऽ
1: मोन
0: बुझिते
1: प्रसन्न
0: छियै
1: रहत।
0: कि मन कतेक खनहन रहत। तऽ किएक नहि अपने जे श्रोता लोकनि एकटा जे छै खाली बुझै छी, श्रोता लोकनि
1: मन हरखे तऽ गाबे गीत।
0: गाबी गीत, आओर हमरा लोकनि सुनै छी एकटा ई लोकगीत।

0: हाँ, तो अखन हमरा लोकन जो छै कुमकुम झाकेश्वर में मिहिर भाई जे ई भगवती गीत सुन रहल छलौं और जेहने समय ओहने गीत नाद आ संग संग जो देखो जे आप ही जो छै मौसम के उतार चढ़ाव जो देखे छी कखनो काल के देखे छी जे खूब कारी कारी मेघ उठल आ जखन मेघ देखे छी ना तो लगे कि आप वर्षा हैत। तो ते दुआरे हमर किसान श्रोता लोकन के जो छै खेती बाड़ी करे छथिन तो मौसम के अनुकूल खेती बाड़ी करे छथिन। तो ते दुआरे मौसम के केना की अछि वो हमर किसान श्रोता लोकन के मिहिर भाई बता दे।
1: मौसम के जे जानकारी किसान भाई के रहै छै ने तो ओहि हिसाब से अपन खेती पथारी अन्न सब के समेटबाक ओकरा पसरबाक ओहि तरह खेती अपन करै छै। तो ग्रामीण कृषि मौसम सेवा पूसा समस्तीपुर एवं भारत मौसम विज्ञान विभाग सहयोग से जारी कयल गेल अछि जे अगला किछु दिन में नीक वर्षा होय के संभावना नहि अछि। हालांकि मधुबनी सीतामढ़ी पूर्वी आ पश्चिम चंपारण जिला में अनेक स्थान पर 15-17 अगस्त तक नीक वर्षा होय के संभावना छैक। बेगूसराय समस्तीपुर मुजफ्फरपुर वैशाली दरभंगा सिवान आ सारण जिला में आसपास वर्षा होय के सेहो संभावना छै आ अगला एहि जिला सबमे एक दू स्थान पर के छोड़ि कऽ आमतौर पर मौसम शुष्क रहै के संभावना अछि। पूर्वान अवधि मे अधिकतम तापमान 33-37 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25-29 डिग्री सेल्सियस बीच रहै के सेहो संभावना अछि। भोर के सापेक्ष आर्द्रता के गप करब तऽ भोर मे सापेक्ष आर्द्रता 80-85% आ दुपहरिया मे सापेक्ष आर्द्रता 45-55% के बीच रहै के सेहो संभावना अछि। एहि दौरान हवा मुख्यतः पूर्वा बहत आ एकर चालि जे रहतै दिशा घंटा 5-15 किलो प्रति घंटा के गति से ई पूर्वा हवा चलै के सेहो संभावना अछि। तऽ ई छल
0: मौसम संबंधी सूचना। आ मौसम संबंधी सूचना के गप जब कहलहुँ हैं बरखा के गप कहलहुँ हैं तो बरखा तो हमरा लोकन के तो जे मिहिर भाई जे आँखि तऽ टकटकी तऽ लगेने छी आकाश दिस मुदा जे छै बरखा नहि भऽ रहल अछि मुदा बारी झाड़ी जे तिमन तकाय लगेने छी लत्ती फत्ती लगेने छी तऽ ओकरो लेल जे छै समय समय पर हमरा लोकन के जो छै देख रेख करैत रही।
1: तो देखियौ देवू भाई अपना सब गप सब और करब पूर्वानुमान के समय अनुकूल अब श्रोता लोकन के एकटा सुंदर सन मैथिली गीत सुनाब।
0: हाँ, की एखने तऽ आब हमरा लोकन सुनै छी ई लोकगीत।

0: वाह, कहल जाइ छै जे जकरे मरबा तकरे गीत। देखियौ अखन सौन मास चलि रहल अछि, महादेवके मास छियै सौन मास। आइ ततेक बढ़िआँ शारदा सिन्हाके स्वरमे हर हर बम बम गीत
1: लोक सुनलहुँ। तऽ एकरे सङ्ग जे देखियौ मेहर भाइ, जे
0: कार्यक्रम आब सम्पन्न होयबा पड़ैत छै देवू भाइ। तऽ नमस्कार देवू भाइ।
1: नमस्कार मेहर भाइ।

खेती गृहस्थी और कामघर का प्रसारण आकाशवाणी दरभंगा से किया गया। अगला कार्यक्रम पटना केंद्र से कुछ एक पल में।

0: दी।
1: हाँ?
0: ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना।
4: आरबीआई कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: कृपया ध्यान दें, डेंगू अपने शहर में पांव पसार रहा है, पर हम सावधानी और स्वच्छता से इसको हरा सकते हैं।
8: डेंगू की रोकथाम के लिए कुछ जरूरी बातों का पालन अवश्य करें, जैसे डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनपता है, इसीलिए कहीं भी पानी जमा ना होने दें। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए अपने आसपास साफ रखें और अपने शरीर को ढक कर रखें। समय समय पर फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं। खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं।
7: जब होगा पूरा प्रयास हमारा, तभी मिलेगा डेंगू से छुटकारा। जीवंत बिहार, सपना हो साकार। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग और सूचना व जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
9: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर का सबसे सफल आयोजन बिहार में हुआ। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत आजादी के

0: बाद सर्वाधिक रहा। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का लगाया आरोप। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। राज्य में कल से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू। कागजी दस्तावेज की जगह डिजिटल दस्तावेजों के जरिए होगा निबंधन। और मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटों में भभुआ, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। अब समाचार विस्तार से। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि मतदाता शुद्धिकरण प्रक्रिया SIR का सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ। दो दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत आजादी के बाद अब तक का सबसे अधिक रहा है।
1: मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश भर में सबसे सफल आयोजन बिहार से ही शुरू हुआ था और विगत 2025 में हुए बिहार के शांतिपूर्ण विधानसभा चुनावों का मतदान प्रतिशत भी न केवल आजादी से लेकर अब तक बिहार में सर्वाधिक रहा बल्कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन और जापान के आम चुनावों से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा।
0: उन्होंने राज्य में बढ़ती मतदाता जागरूकता को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री कुमार ने कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और इस पहचान के अनुरूप ही राज्य के मतदाता चुनाव प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक उच्च स्तरीय दल राज्य के दो दिवसीय दौरे पर है। इस दल में वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मिशीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल और महानिदेशक IT डॉक्टर सीमा खन्ना सहित आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। श्री कुमार ने आज सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम स्थित मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मुख्य चुनाव आयुक्त कल नालंदा में लगभग 500 बूथ लेवल अधिकारियों BLO के साथ संवाद करेंगे। कल ही वे पटना के ज्ञान भवन में निर्वाचन साक्षरता क्लब के दूसरे चरण के शुभारंभ और ECI नेट पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। सम्मेलन में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा महाविद्यालयों और विद्यालयों के प्राचार्य एवं संस्थान प्रमुख भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। इसे लेकर पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वंदे मातरम एक अमर कृति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इसे भुला दिया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रगीत की गरिमा को बढ़ाने का काम किया है।
2: कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए और जरा भी शर्म बची है तो दो हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
0: इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नेतृत्व में आज बेगूसराय में आक्रोश मार्च निकाला गया। श्री सिंह ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक है और इसका अपमान सहन नहीं किया जाएगा।
3: सोनिया जी, राहुल जी और खड़गे जी तीनों मिलकर के वंदे मातरम का अपमान किया, जो वंदे मातरम राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक। कांग्रेस पार्टी मोदी जी को गाली देते देते अब भारत को भी बदनाम करने लगे और वंदे मातरम को भी गाली देने लगे, ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे, यही चेतावनी दे रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों के अनुरूप समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री चौधरी ने आज जमुई के झाझा में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत और समृद्ध बिहार का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त किया जाएगा।
4: आज सरदार पटेल जी के मूर्ति के साथ उनको हम लोगों ने नमन किया, उनके दिखाए रास्ते को इस देश में स्थापित किया जा रहा है, इस प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि जो सपना सरदार पटेल ने भारत के

0: आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का सपना देखा है और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा है। इस सपने को पूरा करना ही हमारी सरकार का दायित्व है।
1: राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में कल से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू की जा रही है। इस व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर निबंधन का कार्य पूरा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से लोगों का समय और कागज की बचत होगी।

0: व्यवस्था के तहत रजिस्ट्री की प्रक्रिया में कागजी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर निबंधन का कार्य पूरा किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से लोगों का समय और कागज की बचत होगी, साथ ही दस्तावेज के लिए कार्यालयों का चक्कर भी नहीं लगाना होगा। नई रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होते ही डिजिटल डीड व्हाट्सएप के माध्यम से मोबाइल पर भेज दी जाएगी। डिजिटल डीड मिलने की सूचना संबंधित व्यक्ति को SMS के जरिए भी दी जाएगी। राज्य सरकार ने ग्राम कचहरी सचिवों के मानदेय और ग्राम कचहरी न्यायमित्रों की फीस का एकमुश्त भुगतान करने का निर्णय किया है। पंचायती राज विभाग ने बताया है कि 4 माह के एकमुश्त भुगतान के लिए 51,51,36,000 रूपये की राशि जारी कर दी गई है। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर शिक्षा माफिया के साथ सांठगांठ का आरोप लगाया है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री यादव ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी 19 अगस्त को राजभवन मार्च करेगी।
1: कोई ऐसा परीक्षा या कोई ऐसी बहाली नहीं होती है जब पेपर लीक नहीं होती है, और कभी भी निष्पक्ष चयन जो है वो नहीं हो पाया। छात्र जो है अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं। आखिर किसने ये आदेश दिया गोली चलाने के लिए? तो इसको लेकर के हम सब लोगों ने दिल्ली में एक तय किया कि 19 तारीख को जो है हम लोग मार्च करेंगे और अपनी बात को जो है गवर्नर साहब के जो है बताने का काम करेंगे।
0: आर्थिक अपराध इकाई ने नीट पेपर लीक मामले में मोतिहारी के केसरिया इलाके से एक आरोपी उज्जवल राज को गिरफ्तार किया है। उज्जवल राज MBBS फाइनल ईयर का छात्र है। EOU के अधिकारी के अनुसार नीट UG पेपर लीक मामले में मोतिहारी से यह दूसरी गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले मामले के कथित सरगना संतोष जायसवाल को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल EOU की टीम आरोपियों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का उद्भेदन करने में जुटी हुई है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कैबिनेट के कई वरिष्ठ सदस्य समेत अन्य गणमान्य लोगों ने प्रार्थना सभा में अपनी उपस्थिति दिखाई। इधर पटना के पाटलिपुत्र पार्क में आयोजित राजकीय कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी पूर्व प्रधानमंत्री की राष्ट्र सेवा, सुशासन और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों को याद किया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय के अटल सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री के आदर्शों और विचारों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं।
1: अटल जी अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं था, विपक्षी लोगों का पूरा सम्मान करते थे। अटल जी के नेतृत्व में देश परमाणु संपन्न राष्ट्र बना। आज अटल जी के पुण्यतिथि पर उनको सत्सत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अटल जी की जो सोच थी, अटल जी की जो कल्पना थी, उस सोच और कल्पना को साकार करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं।
0: रेलवे देश के उत्तर पूर्वी भागों के सीमांत क्षेत्रों में चौथी रेल लाइन का विस्तार करेगा। उत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि चिकन नेक कॉरिडोर में रेलवे नेटवर्क के विस्तार के लिए चौथे रेल लाइन निर्माण को मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर 34 किलोमीटर लंबा रणनीतिक कॉरिडोर है जो पूर्वोत्तर हिस्से को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है।
2: पहले इसमें थर्ड लाइन का प्रपोजल था, थर्ड लाइन हो गई, फोर्थ लाइन का भी सेंक्शन मिल गया और उसके अलावा तिलमई हार्ड से बागडोगरा वाला अंडरग्राउंड भी

0: 29 किलोमीटर की दो लाइन डबल लाइन और होगी। तो ये जो चिकन नेक की वाली बात होती थी ना, सालों के बाद काम करने में समय लगेगा, 5 साल 6 साल लगेंगे, लेकिन 5 साल 6 साल बाद ये नेशनल हाईवे टाइप का होगा। इसके अलावा इसी लाइन में कवच का काम तेजी से चल रहा है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन वाला काम भी तेजी से चल रहा है, और ये जो सिंगल लाइन वाला सेक्शन है बारसोई से लेकर यहाँ तक कटिहार, ये भी डबलिंग हो रही है।
1: राज्य की कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने से बारिश की परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भभुआ, गया, जमुई और नवादा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अन्य स्थानों पर तेज हवा के साथ मध्यम स्तर की बारिश और वज्रपात की संभावना है।
2: दिनांक 17 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं उत्तर पूर्व भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के भभुआ, गया, जमुई एवं नवादा जिलों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
1: उत्तर भारत के विभिन्न भागों के साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी भागों में वर्षा के कारण गंगा, घाघरा, गंडक, कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गंगा का जलस्तर बक्सर, पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में बढ़ा है। घाघरा नदी सीवान के दरौली में खतरे के निशान के अत्यंत करीब पहुंच गई है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बांका जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में डूबने की घटना में 2 किशोरों की मौत हो गई। अमरपुर थाना क्षेत्र के बनियापुर में 1 किशोर की पोखर में डूबने से मौत हो गई। वहीं कटोरिया थाना क्षेत्र के सुपाहा गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 1 किशोर की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज में एसएसबी की ओर से संडे ऑन साइकिल फीट इंडिया अभियान के तहत साइकिल रैली का आयोजन किया गया। एसएसबी की 44वीं वाहिनी के उप कमांडेंट ज्ञानेंद्र कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं सुपौल में सशस्त्र सीमा बल की ओर से फिट इंडिया कैंपेन के तहत संडे ऑन साइकिल के तहत साइकिल रैली आयोजित की गई। गोपालगंज के अटल चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अन्य लोग मौजूद रहे। अररिया जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने 9 किलो गांजा और 140 लीटर नेपाली शराब जब्त की है। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत योगिया गांव में एक मजदूर की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सीवान जेल में बंद एक कैदी विश्वनाथ चौहान की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, एसआईआर का सबसे सफल आयोजन बिहार में हुआ। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत आजादी के बाद सर्वाधिक रहा। भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस नेताओं को जनता माफ नहीं करेगी। राज्य में कल से पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था लागू। कागजी दस्तावेज की जगह डिजिटल दस्तावेजों के जरिए होगा निबंधन। और मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 24 घंटों में भभुआ, गया, जमुई और नवादा जिले में कई स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: दादी कौन सा प्लांट है?
4: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
5: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
3: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
5: क्यों?
3: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
5: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
6: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
7: कभी घर के अंदर की हिंसा, कभी बाहर की बदसलूकी, अक्सर महिलाएं सोचती हैं, मेरी बात कौन सुनेगा।
8: माँ अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो क्या करें?
9: बस याद रखो, 1 नंबर 181।
7: बिहार महिला हेल्पलाइन 181 महिलाओं और बालिकाओं के लिए 24/7 टोल फ्री सेवा है। मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, छेड़खानी, दहेज प्रताड़ना।

0: मानव तस्करी, यौन उत्पीड़न जैसी किसी भी समस्या में करें कॉल।
1: हम आपकी बात सुनते हैं, शिकायत दर्ज करते हैं और जरूरत के अनुसार पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस, कानूनी सहायता एवं अन्य संबंधित सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं। महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी चाहिए, जवाब है 181। अब चुप्पी नहीं, जवाब है 181।
0: महिला हेल्पलाइन 181, हर महिला का भरोसेमंद साथी। समाज कल्याण विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा चयनित में जारी।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, प्रस्तुत है भोजपुर जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा।
3: भोजपुर जिला में स्वतंत्रता दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। विकसित भारत के संकल्प के साथ इन कार्यक्रमों का आयोजन पूरे जिला में हर्षोल्लास के साथ किया गया। उत्सवी माहौल में लोगों ने अपने घरों को तिरंगे से सजाया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा पूर्वक याद किया गया। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में प्रोफेसर शैलेंद्र चतुर्वेदी ने झंडोत्तोलन किया, जबकि आरा सिविल कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने झंडोत्तोलन कर जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में राज्य सरकार ने मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता और एक परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से बताया कि न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है। इधर पुलिस ने SIT के जवान अक्षय कुमार सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अक्षय सिंह ने ही भरत तिवारी पर पहली गोली चलाई थी। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन ने आरा स्थित वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के नए परिसर में शिक्षक छात्र संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुसर समुदाय के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी राज्यपाल को दी गई। उन्होंने विश्वविद्यालय के माध्यम से इस संबंध में DPR तैयार कर लोक भवन भेजने का निर्देश दिया। परियोजना के तहत मुसर समुदाय के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के साथ दूरदर्शन और आकाशवाणी के महत्व को लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी। आरा स्थित ऐतिहासिक वीर कुंवर सिंह पार्क के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम पूरा हो गया है। वहीं सपना मोड़ से धरहरा के बीच प्रस्तावित आधुनिक पार्क के निर्माण कार्य में भी तेजी आने की उम्मीद है। स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर के अनुसार करीब 1200 मीटर लंबे और 31 फीट चौड़े पार्क के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भोजपुर पुलिस की ओर से युवाओं को साइबर अपराध और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए कॉलेजों और विद्यालयों में अभियान चलाया जा रहा है। जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया के निर्देश पर जिले में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी है। वहीं आरा के 0 माइल क्षेत्र में जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए ड्रेनेज परियोजना पर तेजी से काम किया जा रहा है।
2: और अब प्रस्तुत है मधुबनी जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता आकिल हुसैन।
4: मधुबनी जिले में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। पुलिस केंद्र में आयोजित मुख्य समारोह में प्रभारी मंत्री लेसी सिंह ने झंडोत्तोलन किया। वहीं जिला न्यायालय में जिला जज पवन कुमार पांडे ने झंडोत्तोलन किया। इधर मधुबनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में भी पूरे उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर फैयाज अहमद ने झंडोत्तोलन कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। समारोह में विधायक आसिफ अहमद, अस्पताल के चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा जिला भर में तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हर घर तिरंगा के संकल्प के साथ जिला मुख्यालय से लेकर सीमावर्ती क्षेत्रों तक भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई। पद्मश्री कलाकारों की निगरानी में जिले के 108 स्थित मिथिला चित्रकला संस्थान में 10 से 14 अगस्त के बीच 200 कलाकारों ने मिलकर 108 मीटर लंबे कैनवास पर विश्व की सबसे लंबी मधुबनी पेंटिंग तैयार कर कीर्तिमान स्थापित किया। इस पेंटिंग की थीम रामचरितमानस के 51 प्रसंगों पर आधारित है। मधुबनी के विधायक माधव आनंद ने राज्य मंत्री परिषद द्वारा मधुबनी के सकुरी और दरभंगा के अरियाम स्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल परिसरों में नई सहकारी चीनी मिलों और गन्ना उत्पाद आधारित उद्योगों की स्वीकृति परियोजना को मंजूरी दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने इसे मिथिलांचल के किसानों, युवाओं और आम जन के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। उन्होंने कहा कि सकुरी और रयाम चीनी मिल केवल उद्योग नहीं बल्कि मधुबनी और दरभंगा की आर्थिक पहचान तथा हजारों किसानों परिवारों की आजीविका का आधार रही है। प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना के अंतर्गत

0: जुलाई 2026 की राष्ट्रीय रैंकिंग में मधुबनी जिला ने सातवां स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही मधुबनी जिला देश के शीर्ष 10 बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हो गया। यह जानकारी जिला अधिकारी आनंद समय दी। उन्होंने बताया कि आगामी महीनों में मधुबनी जिला और बेहतर प्रदर्शन करे, इसके लिए कृषि विभाग से जुड़े पदाधिकारियों को निरंतर प्रयास करने का निर्देश दिया गया है। जिले में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सभी 20 शाखाओं में कृषि लोन आउटरीच कैंप आयोजित किया जाएगा। कैंप के माध्यम से किसानों, कृषि उद्यमियों और ग्रामीण व्यवसायियों से जुड़े लोगों को विभिन्न लोन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जिला अधिकारी ने पात्र लोगों से निकटतम बैंक शाखा में संपर्क कर इसका लाभ उठाने की अपील की।
1: अभी आप सुन रहे थे भोजपुर और मधुबनी जिले की हलचल। भोजपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिन्हा, जबकि मधुबनी जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता आखिल हुसैन।

हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 231.5 मीटर अर्थात 1296 किलोहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा गीत। संगीतकार हैं आनंद मिलिंद और फिल्म है आई मिलन की रात। आई सुनते हैं।

शान और गुड़ीसा को आपने सुना फिल्म बिन बुलाए बाराती में। गीत और संगीत आनंदराज आनंद का था। फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम आकाशवाणी दरभंगा से आप सुन रहे हैं। मिस्टर बॉन्ड, यह फिल्म का नाम, आवाजें ही अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की, शब्दकार समीर, संगीतकार आनंद मिलेंद्र।

0: फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।
1: सांप काटे तो समय ना गवाएं, अस्पताल जाएं और जान बचाएं।
2: भारत सीरम्स एंड वैक्सीन्स लिमिटेड और मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी।

कार्यक्रम क्रीड़ा जगत में आप सभी खेल प्रेमियों का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम के साथ मैं हूं दीपक कुमार झा।

0: आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ लाया है। हम सुनेंगे चहल पहल, सुनेंगे ज्ञान की बातें खेल जगत से, और इसके अलावे आज हम एक भेंट वार्ता सुनेंगे जिसमें विशेषज्ञ होंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर अमृत कुमार झा, और इसके अलावे सुनेंगे खेलों की साप्ताहिक गतिविधियों को। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं ये भेंट वार्ता जिसमें हमने बातचीत की है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विशेषज्ञ प्रोफेसर अमृत कुमार झा से। श्रोताओं नमस्कार। दरभंगा जिले के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल विभाग हैं उसमें कई तरह के खेलों को यहाँ के विद्यार्थियों ने उस मुकाम तक पहुँचाया है जहाँ वो अपने समाज, वो अपने परिवार और अपने देश का नाम उन्होंने रोशन किया है। और उस खेल विभाग के जो खेल पदाधिकारी हैं प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी आज हमारे बीच आए हैं, और जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 इसके संदर्भ में भी हम इनसे बातचीत करेंगे, और इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो खेल की जो गतिविधियां हैं इनसे संदर्भित बातचीत भी और जानकारी भी हम इनसे लेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने आकाशवाणी के इस स्टूडियो में स्वागत करते हैं। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 जो बनाई गई है इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी है?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, खासकर हमारे युवाओं के लिए। मैं शुरुआत में ही कह दूं कि ये सभी को अमूमन पता ही है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व पटल पे सबसे युवा देश जो है वो हमारा भारत है, और उस युवा देश का सबसे युवा जो प्रदेश है, जो राज्य है, वो हमारा बिहार है। खेल ऐसा माना जाता है कि वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, धर्म को नहीं देखता है, और क्योंकि मैं मनोविज्ञान का भी छात्र हूँ, खेल सभी के लिए है। वो आपके नॉट जस्ट फिजिकल हेल्थ, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आपके फिटनेस के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए, आपके इंथुजियाज़म के लिए, जीवन में एक पर्पस के लिए, जीवन जीने का एक माध्यम, आप जिस तरीके से इसको लें, जैसे हम संगीत सुनना पसंद करते हैं, लोग का अमूमन एक हॉबी होता है, उसी तरह की खेल हमेशा एक आउटसाइड एक्टिविटी के तौर पर लिया गया हमेशा से, चाहे वो बात 1984 की खेल नीति की हो, फिर 2001 की हो, फिर 2011 की हो, जहाँ पे पहली बार ऐसा लगा कि नहीं, खेल को अब स्ट्रीमलाइन किया जाए, जो कि मुख्य धाराएं हैं युवाओं की उसमें लाया जाए। उसमें और आज के परिवेश में आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में हमारे प्लेयर्स दिन पे दिन, खासकर इधर अगर कोरोना के बाद देखें, अगर आप अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिव्या देशमुख जी जो वर्ल्ड चैंपियन हुई हैं चेस में, उसके पहले प्रसिद्धा कृष्णा हैं, और जो भी हैं गुकेश दी हैं, और बहुत सारी, क्योंकि पहले का जमाना रहा, खासकर मिथिलांचल की बात करें तो क्रिकेट एक प्रमुख खेल के तौर पे उभरा, अभी भी है, हम हर जगह देख सकते हैं कि बच्चे वो खेल, एक ही गेम ऐसा माना जाता है, क्रिकेट ही गेम है और पहले, हाँ,
0: और मिथिला के भी जो कुछ खिलाड़ी है उन्होंने इस बार IPL में खेला है,
1: वैभव सूर्यवंशी जी जो उन्होंने धूम मचाया और धमाल हमने देखा, ऐसा नहीं है, प्रतिभाएं तो हमारे हर कहा भी जाता है कि यहाँ गली गली में आइंस्टीन है मिथिला में, तो ऐसा देखा भी गया है। और जो एक माइंडसेट बन गया था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब,
0: वो मानसिकता अभी टूटी है।
1: और मैं ऐसा देखा, अब मैं तो उसको मैं खुद देख रहा हूँ कि खेलोगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, ठीक है, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। ये अब एक नया इंडिया, एक न्यू इंडिया साफ दिख रहा है। युवाएं आप देख रहे होंगे बहुत सारे प्राइवेट कंपटीटर्स भी आ गए हैं। इस परिवेश में नई राष्ट्रीय खेल नीति आने का कारण सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आपने देखा होगा कि ओलंपिक में हम बहुत पीछे हैं, तो सरकार ने ये चाहा है कि जो प्रतिभा हमारे गांवों में, उन्होंने गांव को फोकस किया है, उन्होंने यूनिवर्सिटी को फोकस किया, ये बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रासरूट लेवल के जो हमारे प्रतिभावान प्लेयर्स हैं हर एक विभिन्न विधाओं में, विभिन्न खेलों में, वो इस चीज़ को समझें, और यूनिवर्सिटी को उन्होंने रीजनल स्पोर्ट्स क्लब को एक उपाधि के तौर पर रखा है, जहाँ के बच्चे जो रूरल एरिया के बच्चे हैं वो आएँ, खासकर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, और मिथिला यूनिवर्सिटी क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, हम लोग ये हमेशा से इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं, हमारे बच्चे, और मैं बता दूं जब इसकी बात होगी तो हम लोग ने नित नए परचम लड़ाया है खेलों में।
0: ये जो खेलो इंडिया और राष्ट्रीय खेल नीति 2025 ये दोनों में क्या अंतर है?
1: अंतर यही आप समझिए कि खेलो इंडिया का शुभारंभ होता है, वो एक कंसेप्ट आता है जो हमारे युवाएं हैं, खासकर जो मैंने शुरू में कहा कि युवा देश है और खेल में फिटनेस और युवा

0: शक्ति की बहुत ज़रूरत है। उन्होंने इस चीज़ को उभारा और ओलंपिक, उनका नाम ही दिया गया फ्रॉम स्कूल टू पोडियम, और इस चीज़ को लाया। इसके तहत आपने देखा होगा बहुत सारे विभिन्न स्टेडियम बने, और इस नई राष्ट्रीय खेल नीति में उन्होंने इस बात का, पूरे सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी को इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब ऐसा ना हो कि सभी की बस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो पहले से रहा कि जो बहुत धनवान है या जो जिनको जिनके पास खेल के रिसोर्सेज हैं उन्हीं को वो प्लेटफॉर्म मिले, उन्हीं को रिसोर्सेज मिले, ऐसा ना हो। सभी के लिए एक अधिकार समान हो, सभी खेले, सभी फिट रहें। और एक इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है जो पहले से उन्होंने चेंज किया, जिसको हम लोग कहते हैं भी है पैराडाइम शिफ्ट, कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना है इसमें नई राष्ट्रीय खेल नीति में। टैलेंट आइडेंटिफाई का मतलब है प्रतिभा का पहचान करना, चिन्हित करना और उसको वो सम्मान दिलाना जिसका वो
1: तो
0: हकदार
1: ये
0: है।
1: प्रतिभा पहचान कौन करेंगे?
0: प्रतिभा परिचान यही करेंगे, जैसा आपने हमारे बिहार प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे मेजर लाओ नौकरी पाओ, हर आपने देखा होगा कि हर प्रखंड में अब एक मैदान का एक उन्होंने शुरुआत हुआ है। ये जरूर है कि मशाल जली है। पहचान करेंगे हमारे आपके जो लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आपने कहा कि मिथिला के बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान रहे हैं जो लोकल हैं या कोचेज हैं, वो करेंगे, यूनिवर्सिटीज करेगी, स्कूल करेगी, और एक हायरार्की बनेगा, एक सिस्टम बनेगा कि जो स्कूल में अच्छे कर रहे हैं वो फिर फॉलो अप करेंगे, यूनिवर्सिटीज उसको फॉलो अप करेंगी।
1: देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे टैलेंट्स हैं जो स्कूल की शिक्षा जब तक उन्होंने ली, स्कूल की ओर से उन्होंने नहीं खेला, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और खेल में आगे बढ़ गए। तो ऐसे लोगों के लिए क्या होगा? उनकी प्रतिभा कैसे, किस तरह से पहचानी जाएगी?
0: ये इस बात का भी ध्यान रखा गया है नई खेल नीति में कि ऐसे जो प्रतिभावान प्लेयर्स हैं, जो खेल, जो पढ़ाई छोड़ दिए हैं और खेल को अपना कैरियर बना लिए हैं, उनके लिए जैसे मैंने जस्ट कहा भी, जैसे बिहार प्रदेश में ही, हमारे राज्य में ही है मेडल लाओ नौकरी पाओ, ऐसे जो मेरिटोरियस प्लेयर्स हैं उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ सीट रहेगा जॉब्स में, ये प्रावधान है इसमें। और ऐसा हो सकता है कि उनको पेंशन का भी मिलेगा आगे जाके। ये अभी मैं जस्ट एक विजनरी आइडिया बता रहा हूँ जो उसमें मैंने देखा है, मैंने पढ़ा है उसके मसौदे को। और ऐसे प्लेयर्स को टॉप प्रायोरिटी मिलेगी हर एक सेक्टर्स में, ताकि एक मोटिवेशन हो, जो आपने कहा शुरू से, मैंने बात भी की कि कभी भी खेल को प्राथमिकता नहीं दे गई, हमेशा उसको एक रखा गया आउटसाइड एक्टिविटी में, मतलब फ्री हो। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाते थे, हमारे जो सहभागी होंगे वो जानते होंगे श्रोतागण, कि ये कंसेप्ट होता है ईसी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो करिकुलम के अलावा हो, नाम ही है एक्स्ट्रा, वो आ जाता था स्पोर्ट्स में, म्यूजिक आता था। अब एक नया जो एक माइंडसेट, फिर क्योंकि माइंडसेट बहुत ज़्यादा था, बहुत इंपॉर्टेंट है इस सब में, प्राथमिक आप जो सोचते हैं वही करते हैं, अब वो कम्प्लीटली हटा दिया गया है शब्द को। नई शिक्षा नीति में शब्द आया है को करिकुलर एक्टिविटी, मतलब जो शिक्षा के साथ चले। तो क्योंकि सही शिक्षा नीति हॉलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट माने सभी को पता है, ऐसा नहीं कि बच्चा बस पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, उसको जीवन की कौशल भी पता हो, तो जीवन में खेलों के बारे में पता हो, संगीत के बारे में पता हो। हमारे नाथ शास्त्र में, हमारे पुराने शास्त्रों में करीब 64 कलाओं की बात की गई है। और इधर क्योंकि हम लोग एक कॉरपोरेट स्लेव्स की ओर बनते जाते हैं, इस सब को देखते हुए नई शिक्षा नीति और नई खेल नीति, एक नया भारत एक जन्माएगा। और जो युवाएं हैं, जो खासकर आपने कहा भी वैभव सूर्यवंशी जी हैं, और भी जो नई नई जो प्रतिभा आप देख रहे हैं, जो उम्मीद भी नहीं कर सकते थे हम लोग जमाने में, याद है चेस में बस विश्वनाथन आनंद जी का नाम आता था
1: जी जी।
0: अभी आप देखें तो, या आप हर गेम में देखेंगे, चाहे नीरज चोपड़ा जी हों, हर एक गेमों में ऐसे ऐसे नाम उभर के आ रहे हैं। और ये सभी माने या ना माने, 10 साल बाद या 15 साल बाद इसका जो टेंजिबल इफेक्ट है वो पूरे जनमानस, सोसाइटी पर, समाज में दिखेगा, जहाँ खेलों को प्राथमिकता दी जा रही है। हर एक नए एक विभाग भी खुलेंगे हर डिपार्टमेंट में, हो सकता है स्कूल में भी, हो सकता है स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डिपार्टमेंट खोलो, स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट खोलो।
1: जी जी जी। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार की बात करें तो यहाँ जो खेल की जो गतिविधियाँ हैं उनकी अपेक्षा बिहार की स्थिति के बारे में क्या कहिएगा?
0: पहले सभी को पता है, पहले हम लोग बहुत पीछे रहे, क्रिकेट ही हम लोग का एक रहा जहाँ पे कुछ नाम आते थे, चाहे वो सबा करीम जी हों। इधर आपने देखा होगा खासकर विगत 2-3 सालों में, आफ्टर कोरोना जिसे हम कह सकते हैं, सबसे पहला जो मेजर डेवलपमेंट हुआ, जो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उदय होता है, हमारे ऑनरेबल सीएम उसके चांसलर होते हैं, राजगीर में आपने देखा होगा अभी
1: खेल विश्वविद्यालय
0: बना है, वहाँ गेम शुरू हुए, अभी विगत गेम हुआ, अभी एक एशिया कप का हॉकी होने वाला है। तो धीरे धीरे हम लोग जो एक, मैंने कहा आपको कि 0.1 अगर चेंज होता है तो वो बड़ा चेंज हुआ, 0.1 0.2, ये सब चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये 0 से 1 पे ले जाएगा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज कहते हैं। और ये सब चीज़ें होना हमारे प्रतिभागियों को जॉब सिक्योर होना, हमारे प्रतिभागियों को ये होना कि

0: अगर हम मेजर लाते हैं, नौकरी पाएंगे, जीवन हमारा सेट होगा, ये सिक्योरिटी बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी, जब हम देखते हैं तो ये सब चीज़ें अभी क्योंकि धरातल पे हैं, धीरे धीरे उभर के आ रही हैं। जो पहले का बिहार था और नया बिहार था वो 5-10 साल बाद आपको नया देखा।
1: अच्छा, एक जिज्ञासा है कि जो खेल विश्वविद्यालय है उसमें क्या क्रिटेरिया है, छात्र उसमें कैसे नामांकन ले सकते हैं, यहाँ के या अन्य जिलों के जो बच्चे हैं, जो खिलाड़ी हैं?
0: जैसे आप देखेंगे कि शुरुआत में ही बेसिक, जब जो 2 कोर्सेज हर पूरे ऑल इंडिया में चलता है, BPED और BPMPED, उसी को अब नई शिक्षा नीति में जो ज़्यादा फोकस किया गया है कि नहीं, आप फिजिकल एजुकेशन ठीक है, आप इसको स्पोर्ट्स को भी एक्टिविटी ने एक करिकुलम के तौर पे लाइए। अब वो कोर्स हो गया BPES और MPES, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आप देखिए देखिए सॉरी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत दूर तक जाती हैं। आपने स्पोर्ट्स को जोड़ा, उससे क्या, वो सिंपल कोर्स की बात कर रहे, ट्रेडिशनल कोर्स है जो हम लोग BA में करते हैं, ये आ गया स्पोर्ट्स में, आइए तो BPES MPES। अब इधर नई शिक्षा नीति में भी आया है जिसमें क्रेडिट सिस्टम की बात होती है, मल्टीपल इंट्री की एग्जिट की भी बात होती है। अब नया आ रहा है राष्ट्रीय खेल नीति, इसके तहत आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो आपने अभी नाम लिया, मैं नाम लेने वाला हूँ, वो नई, इसके तहत आपको हो सकता है कि आपके आपके आजू बाजू जो यूनिवर्सिटी है उसमें दिखा देगा। जैसे एक है खेल मनोविज्ञान, मैं खुद मनोविज्ञान का छात्र हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, हमने उसे इस कॉन्सेप्ट, ये हर बच्चों के लिए मैंडेटरी किया है बेसिक स्कूल में, बेसिक यूनिवर्सिटीज़ में, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में। इसके अलावा अब इसमें भी बात हो गई कि स्पोर्ट्स को स्ट्रीमलाइन मतलब स्टैंडर्ड किया जाए, तो स्पोर्ट्स फिटनेस का भी कोर्स चलेगा, कोचेज का भी, ऐसा नहीं कि कोई भी कोच बन सकता है, अब उनके लिए स्पेशलाइज कोचेज होंगे हर सब्जेक्ट के लिए। PG डिप्लोमा कोर्स चलता है, फिर सर्टिफिकेट कोर्स चलता है स्पोर्ट्स टेस्टिंग पे, स्पोर्ट्स मेडिसिन पे, स्पोर्ट रिहेबिलेशन पे, 6-7 कोर्सेज हैं जो कि बिहार खेल विश्वविद्यालय में ये अभी शुरुआत हुई है, जो बच्चे इच्छुक होंगे, जो वो अप्लाई कर भी चुके होंगे, ये UGC से इसका मान्यता प्राप्त है।
1: अपने भी विश्वविद्यालय से कुछ लोग
0: अभी जाने वाले जो मुझे नॉलेज में है, और हम लोग भी चाहेंगे कि जितना हम लोग कर सकें इसके प्रति हम लोग इसको आगे करेंगे।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी यहाँ आपने दी है। यदि हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इस विश्वविद्यालय के आप खेल पदाधिकारी भी हैं, इस नाते हम ये पूछना चाहेंगे कि अभी तक जो विगत वर्षों में जो इस विश्वविद्यालय के जो खेल के प्रति जो इनका एक समर्पण रहा, तो क्या इसका अचीवमेंट रहा है?
0: ऐसे तो कोई फैक्चुअल कोई आंकड़ा नहीं, मतलब कोई स्केल नहीं है, मतलब कोई ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है पूरे बिहार पे, लेकिन अगर हम लोग का, मैं हम लोग खुद मानते हैं, मैं क्या मतलब विभाग है खेल, नामी है खेल, मतलब एक टीम स्पिरिट सब लोग काम करते हैं, तो हम लोग संभवतः हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग बिहार में सबसे अभी अव्वल पे चल रहे हैं। कारण क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसा, क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अभी 3-4 खासकर 5-4 वर्षों में हम लोगों ने नए अचीवमेंट हर साल किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बस आपको कुछ एग्जांपल दे दूँ, जैसे पिछले ही साल चांसलर कप कबड्डी हुआ था पटना में, पाटलिपुत्रा इंदौर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं उन्होंने 2 प्रतिस्पर्धा था, एक मेल का था एक फीमेल का था, तो मेल में हम लोगों ने 2nd पूरे बिहार में किया और महिलाओं में हम लोगों ने 1st किया। ये तो हुआ बिहार की बात। अभी जर्मनी राइन रू, वहाँ पे एक सिटी है, वहाँ पे FISU बोलते हैं, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स, वहाँ पे पूरे यूनिवर्सिटी के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं हर विधाओं में उनको बुलाया जाता है। तो आपको जान के खुशी होगी, पूरी मिथिलावासी को जान खुशी होना चाहिए कि हमारे यहाँ से त्रिलोक कुमार चयनित होते हैं और वो भारतीय एथलेटिक टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अभी जर्मनी में ही हैं। ये रिसेंट आपका डेवलपमेंट मैं कह रहा हूँ। इसके अलावा हमारे बच्चे यहाँ के जोनल कम्पीट करते हैं, नेशनल तक जाते हैं, करीब 5-6 विधाओं में, ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कबड्डी हो, चाहे वो हैंडबॉल हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, हमारे बच्चे इस विधाओं में हमेशा से ही एक मुकाम हासिल किया है। इसका प्रारूप आप देख सकते हैं कि कबड्डी का भी कोचिंग होता है, क्रिकेट का भी कोचिंग होता है। प्रॉब्लम एक ये है जो कि अपनी, अब आपने देखा कि बच्चे जो ग्रामीण परिवेश में हैं उनको हम लोग चाह रहे हैं, जो राष्ट्रीय खेल पॉलिसी में भी है कि उनको टैलेंट को आइडेंटिफाई करें, हम लोग उस ओर भी कदम बढ़ा रहे हैं कि जो जब हम लोग इंटर कॉलेज करवाते हैं, करीब 43 कॉलेज हैं प्लस जो हमारे स्टेट कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज गेम्स जो चुन के आते हैं बच्चे, वो फिर उनको हम ट्रेनिंग दे के जोनल और नेशनल के लिए कम्पीट करवाते हैं।
1: ये आपने उपलब्धि जो इस विश्वविद्यालय की रही है इसके बारे में आपने कहा, आगामी कुछ ऐसी खेल के जो कुछ गेम्स और होने वाले हों या कुछ इस तरह की बातें, वो हमारे श्रोताओं को आप
0: देखिए। एक तो सौभाग्य है कि अभी जो हमारे वर्तमान माननीय कुलपति हैं वो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहे,

0: चुके हैं और खेल में बहुत रुचि रखते हैं, तो हमेशा अपडेट लेते रहते हैं कि कहाँ बच्चा कैसा है, जो भी इनको दिक्कत ना होना चाहिए। अभी क्योंकि नया फिर अब एक स्पोर्ट्स आएगा, ये स्पोर्ट्स कैलेंडर शुरू होने वाला है, जिसमें फिर करीब 20 गेम हम लोग करवाते हैं, 20 से 22 गेम, जिसमें योगा भी शामिल है। और मैं चाहूँगा आपके माध्यम से मैं हर बच्चे जो अगर सुन जो सुन रहे होंगे कि वो योगा में भी, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा बच्चे कम कम्पीट किए थे, तो देख के थोड़ा लगता है कि योगा पूरे देश को हम लोग पूरे विश्व को हम लोग सिखाए हैं, तो युवाओं से अपील रहेगा कि वो योगा भी करें और योगा कॉम्पिटिशन में भी आएँ, जिससे वो आगे भी अपना जीवन सिक्योर कर सकते हैं। विभिन्न विधाओं में गेम होता है और दोनों प्रतिस्पर्धाओं में होता है, कैटेगरी में, मेल में भी फीमेल में भी। करीब हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में आपको ये गेम मैक्सिमम, हम लोग का ये ऑनरेबल वीसी साहब का भी सपना है कि हर एक कॉलेज को मैक्सिमम, ऐसा ना हो कि कोई छूट जाए, जो काबिल है वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज करे और तुम्हारे बच्चे यहाँ से निकल सके।
1: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना के जो राष्ट्रीय खेल नीति है वो किस तरह से हमारे लिए लाभदायी है, किस तरह से हम इसका लाभ ले सकते हैं, और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत यहाँ की जो खेल की गतिविधियाँ हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, और जो आगामी कुछ जो खेल से संदर्भित कुछ गेम्स होने वाले हैं, इन सभी बातों को लेकर के हमने अभी बातचीत की। हमारे साथ थे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के खेल पदाधिकारी प्रोफेसर अमृत कुमार झा जी। झा जी, आपका हमारे आकाशवाणी स्टूडियो आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अमृत कुमार झा से ये भेंट वार्ता। विषय था राष्ट्रीय खेल नीति 2025, और अब चलते हैं चहल पहल की ओर। चहल पहल के अंतर्गत आज हम बात करेंगे हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की। 15 अगस्त से हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत हो चुकी है। पहली बार महिला और पुरुष के टूर्नामेंट एक साथ हो रहे हैं। बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। भारतीय पुरुष टीम वेल्स के खिलाफ टूर्नामेंट का पहला मैच खेले, वहीं महिलाओं का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच खेला गया। टूर्नामेंट 16 दिन तक चलेंगे। दोनों टूर्नामेंट में कुल 50 मैच खेले जाएंगे। इनका आयोजन दो फेज में होना है। पहला ग्रुप स्टेज, क्रॉसओवर पूल, फिर सेमीफाइनल और फाइनल मैच होंगे। सभी मैच दो वेन्यू पर आयोजित होंगे। मेंस और विमेंस वर्ल्ड कप में 16-16 टीमें यानी कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही हैं। ग्रुप स्टेज में 16 टीमें यानी 4 ग्रुप, ग्रुप ए, बी, सी और डी, इसमें बटेंगी और हर टीम 3 मैच खेलेगी। हर ग्रुप से टॉप 2 टीम क्रॉसओवर राउंड में जाएगी। इन 8 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा जाएगा। इस राउंड में हर टीम 3 और मैच खेलेगी। ये मुकाबले उन टीमों से होंगे जिनसे उसका मैच नहीं हुआ है। यहां से टॉप 2 टीमें सेमीफाइनल पहुंचेगी। फाइनल मैच 29 और 30 अगस्त 2026 को खेले जाएंगे। महिला वर्ल्ड कप का फाइनल 29 अगस्त को खेला जाना है, जबकि पुरुष वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला 30 अगस्त को रात 8 बजे से शुरू होना है। दोनों फाइनल के दिन ब्रॉन्ज मेडल मैच भी होंगे। इस बार के मैच की कुछ खास बात बताते हैं। इस बार के वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल नहीं होंगे। ऐसा पहली बार हुआ है कि पुरुष और महिला हॉकी वर्ल्ड कप एक साथ हो रहे हैं। बेल्जियम पहली बार वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। उसकी मेंस टीम नंबर 1 है। हरमनप्रीत और सलीमा भारत के कप्तान हैं। अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो मोहित, एचएस, सूरज, जर्मनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, युवराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीला कंता शर्मा, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालगे। हॉकी वर्ल्ड कप में इनामी राशि नहीं है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन यानी FIH वर्ल्ड कप या प्रो लीग जैसे वर्ल्ड लेवल टूर्नामेंट्स में ट्रॉफी और मेडल्स देते हैं। भारत, नीदरलैंड और स्पेन जैसी टीमों ने सभी पुरुष वर्ल्ड कप खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अर्जेंटीना 15-15 बार यह ग्लोबल टूर्नामेंट खेल चुकी है। पाकिस्तान ने 14 और बेल्जियम ने 8 बार हिस्सा लिया है। वहीं नीदरलैंड, अर्जेंटीना और जर्मनी ने विमेंस कैटेगरी के सभी वर्ल्ड कप खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया 14, इंग्लैंड, स्पेन 13-13, चीन 10 और भारत ने 9 बार यह टूर्नामेंट खेला है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 1971 में शुरू हुए पहले हॉकी वर्ल्ड कप से ही इस टूर्नामेंट में खेलना शुरू कर दिया था। टीम ने अब तक 15 बार टूर्नामेंट में भाग लिया और केवल एक बार वर्ल्ड कप जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने 1975 में कुआलालंपुर, मलेशिया में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने अब तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता है। टीम ने 1974

में अपने पहले वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। और अब करते हैं ज्ञान की बातें खेल जगत से। इसके अंतर्गत आज हम वनडे क्रिकेट के इतिहास की बात करेंगे। आइए जानते हैं वनडे क्रिकेट का इतिहास। आज से 55 साल पहले शुरुआत हुई थी वनडे क्रिकेट मैच की। पिछले 7 अगस्त 2026 को स्कॉटलैंड और कनाडा के बीच 5000वां वनडे मैच खेला गया था। बता दें कि 5 जनवरी 1971 को बारिश से धुले एक टेस्ट मैच की भरपाई के लिए शुरू हुआ वनडे फॉर्मेट आज मैचों की संख्या के लिहाज से क्रिकेट का सबसे बड़ा फॉर्मेट बन चुका है। इन 55 सालों में क्रिकेट के सबसे ज्यादा प्रयोग भी इसी फॉर्मेट में हुए हैं। तीसरे अंपायर से लेकर डे नाइट क्रिकेट, सफेद गेंद, पावर प्ले, DRS, DLS और सुपर ओवर तक लगभग हर बड़ा बदलाव सबसे पहले वनडे में ही लागू हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं। पहला वनडे 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड दौरे का तीसरा टेस्ट लगातार 4 दिन बारिश में धुल गया था। दर्शकों को खाली हाथ लौटने से बचाने

गेंद, पावर प्ले, डीआरएस, डीएलएस और सुपर ओवर तक लगभग हर बड़ा बदलाव सबसे पहले वनडे में ही लागू हुआ। आइए विस्तार से जानते हैं। पहला वनडे 5 जनवरी 1971 को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। इंग्लैंड दौरे का तीसरा टेस्ट लगातार 4 दिन बारिश में धुल गया था। दर्शकों को खाली हाथ लौटने से बचाने के लिए आखिरी दिन 40-40 ओवर का एक सीमित ओवर मैच कराया गया। उस समय खिलाड़ियों ने सफ़ेद कपड़े पहने थे और लाल गेंद से मैच खेला गया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि यही क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय फॉर्मेट्स में से एक की शुरुआत होगी। आज 50 ओवर का वनडे सामान्य बात है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। पहला वनडे 40-40 ओवर का था और उसमें 8 गेंद का ओवर होता था। इंग्लैंड 55 ओवर के मैच करता था, जबकि 1975 और 1979 के पहले 2 वर्ल्ड कप 60 ओवर के हुए। न्यूजीलैंड में 35 ओवर, वेस्ट इंडीज में 45 ओवर और पाकिस्तान में अलग अलग समय पर 35, 40 और 50 ओवर के मुकाबले खेले गए। शुरुआती दौर में हर देश अपनी सुविधा और दिन के उजाले के हिसाब से ओवर तय करता था। बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में समानता लाने के लिए 50 ओवर का फॉर्मेट अपनाया गया। 1978 में वेस्ट इंडीज पहला देश बना जिसने 50 ओवर के वनडे कराए। फिर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसे अपनाया। 1987 का वर्ल्ड कप पहली बार 50 ओवर का हुआ, लेकिन तब भी इंग्लैंड 55 ओवर के वनडे खेलता रहा। आखिरकार 1996 वर्ल्ड कप के बाद पूरी दुनिया में 50 ओवर का फॉर्मेट लागू हो गया। 1977 में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया कारोबारी केडी पैकर ने वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट यानी WSC शुरू की। उन्होंने दुनिया के बड़े खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर अलग टूर्नामेंट कराया। इसमें सबसे बड़े खिलाड़ियों ने पेस्टल रंगों की जर्सी पहनी। इस सीरीज के बाद क्रिकेट में 3 बदलाव आए, रंगीन जर्सी, डे नाइट मैच और सफ़ेद गेंद। 1978-79 सीजन में पहली बार टीमें रंगीन जर्सी पहनकर मैदान पर उतरी थी। ऑस्ट्रेलिया ने पीली, वेस्टइंडीज ने गुलाबी और वर्ल्ड 11 ने नीली जर्सी पहनी। WSC में पहली बार फ्लड लाइट्स में डे नाइट मैच खेले गए। बाद में यही इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा बन गया। सफ़ेद गेंद की बात करें तो रात में लाल गेंद साफ दिखाई नहीं देती थी, इसलिए पहली बार सफ़ेद गेंद का इस्तेमाल हुआ। 1992 वर्ल्ड कप पहला ICC टूर्नामेंट बना जिसमें रंगीन जर्सी, डे नाइट मैच और सफ़ेद गेंद तीनों का इस्तेमाल हुआ था। वनडे में फील्डिंग नियम भी इस घटना के बाद बदले। 1979 में इंग्लैंड के कप्तान माइक ब्रियरली ने आखिरी गेंद पर विकेटकीपर समेत सभी 10 फील्डर बाउंड्री पर लगा दिए। बल्लेबाज के लिए चौका या छक्का लगाना लगभग असंभव हो गया। इसके बाद फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन लाया गया। 1992 वर्ल्ड कप में इन्हें पहली बार माना गया। 2005 में पावर प्ले आया। 2008, 2011 और 2012 में इसके नियम बदले गए। 2015 से मौजूदा फील्डिंग नियम लागू है। वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा प्रयोग बारिश से प्रभावित मैचों के नियम में हुए। शुरुआत में हर देश अपने हिसाब से नियम बनाता था। कहीं रन रेट से नतीजा निकलता था तो कहीं पहले 45 ओवर के स्कोर से फैसला होता था। 1991 के शारजाह कप में खराब रोशनी के दौरान ऐसी स्थिति बन गई कि खिलाड़ियों, कप्तानों और अंपायरों तक को नहीं पता था कि मैच का नतीजा कैसे निकलेगा। इसके बाद ICC ने सभी देशों के लिए एक समान नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू की। 1992 में नए नियम लागू किए गए, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुए। आखिरकार 1997 में पहली बार डकवर्थ लुइस DL नियम लागू हुआ। 1999 में ICC ने इसे आधिकारिक रूप से अपनाया। बाद में स्टीवन स्टर्न के बदलावों के बाद यही DLS यानी डकवर्थ लुइस सिस्टम बन गया जो आज भी इस्तेमाल होता है। आज IPL का इम्पैक्ट प्लेयर नियम चर्चा में रहता है, लेकिन इसका पहला रूप वनडे में 2005 में देखने को मिला था। तब सुपर सब नियम लागू किया गया जिसमें टीम पहले से एक अतिरिक्त खिलाड़ी को चुनती थी और मैच के दौरान उसे उतार सकती थी। इंग्लैंड के विक्रम सोलंकी पहले सुपर सब बने, लेकिन यह प्रयोग सफल नहीं रहा और 1 साल के भीतर ही इसे खत्म करना पड़ा। शुरुआती दौर में टाई मैच का फैसला विकेटों की संख्या या लीग स्टेज के प्रदर्शन के आधार पर होता था। 2011 वर्ल्ड कप से नॉकआउट मुकाबले में सुपर ओवर लागू किया गया। 2019 वर्ल्ड कप फाइनल में बाउंड्री काउंट नियम की दुनिया भर में आलोचना हुई। इसके बाद ICC ने नियम बदल दिया और 2023 से हर टाई वनडे का फैसला सुपर ओवर से होना अनिवार्य कर दिया। 2001 तक लाल गेंद पूरी तरह वनडे से बाहर हो गई,
लेकिन सफ़ेद गेंद जल्दी गंदी होने लगी, इसलिए आईसीसी ने एक पारी में दो नई गेंदों का नियम लागू किया। इससे

गेंद ज्यादा देर नहीं रही और रिवर्स स्विंग लगभग खत्म हो गई। इसके बाद गेंदबाजों की शिकायतों को देखते हुए 2025 में नियम बदल गया। अब 34 ओवर के बाद गेंदबाजी टीम दोनों में से किसी एक पुरानी गेंद से बाकी ओवर करा सकती है, जिससे रिवर्स स्विंग की संभावना बढ़ जाती है। वनडे के शुरुआती 1000 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर 213.9 रन था। पिछले 1000 मैचों में यह बढ़कर 249.97 रन हो गया। पहले 3000 मैचों में केवल 360 बार टीमें 300 रन के पार पहुंची थी, जबकि पिछले 1000 मैचों में ही 321 बार 300 प्लस स्कोर बने। इनमें 86 बार स्कोर 350 रन से भी ज्यादा रहा। अब टीमें लक्ष्य का पीछा करते हुए भी 300 रन आसानी से बना रही हैं। बैटिंग औसत 26.39 से बढ़कर 29.03 हो गया है, जबकि स्ट्राइक रेट 66.15 से बढ़कर 83.4 पहुंच गया है। पहले जहां हर 127 गेंद पर एक छक्का लगता था, अब हर 55.42 गेंद पर छक्का लग रहा है। गेंदबाज भी पहले से ज्यादा विकेट ले रहे हैं और 5 विकेट लेने की घटनाएं भी लगभग दोगुनी हो गई है। अब सवाल है कि वनडे का भविष्य कैसा होगा। T20 ने वनडे को चुनौती दी लेकिन खत्म नहीं कर पाया। 2007 में T20 वर्ल्ड कप और उसके बाद दुनिया भर में शुरू हुई फ्रेंचाइजी लीगों के कारण द्विपक्षीय वनडे सीरीज कम हो गई हैं। इसके बावजूद वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट इस फॉर्मेट को पॉपुलर बनाए हुए हैं। इसी के साथ क्रीड़ा जगत का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। प्रस्तुतकर्ता अमरनाथ प्रसाद के साथ दीपक कुमार झा को आज्ञा दें। नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी खेल गतिविधि पर आधारित साप्ताहिक कार्यक्रम क्रीड़ा जगत। हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं।

0: हम आकाशवाणी दरभंगा से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचार संध्या प्रसारित किए जाएंगे।
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत। महिला हॉकी विश्व कप में भारत ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेलकर अपने अभियान की शुरुआत की। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे।

0: अब समाचार विस्तार से। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।
1: 14 से लेकर 26 तक एक भी साल ऐसा नहीं गया है किसानों के लिए कोई बड़ी योजना जाहिर न की हो। आज मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, एमएसपी पर सबसे ज्यादा अनाज क्विंटल में अगर किसी ने खरीदा है तो नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है।
0: श्री शाह ने कहा कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता है और गुजरात के किसानों ने इसे साबित कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में अधिक दूध देने वाली गायों और भैंसों की नस्लें राजस्थान के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री ने किसान सम्मान निधि के अंतर्गत किसानों के बैंक खातों में सीधे धनराशि भी अंतरित की। इससे पहले गृह मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर चित्तौड़गढ़ में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। पूरे राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित उनके स्मारक सदैव अटल पर पुष्पांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अटल जी की विरासत राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की प्रगति में पूर्व प्रधानमंत्री की भूमिका को अतुलनीय बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रतीक हैं, जो भविष्य में भी हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वो राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथूर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है।
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will shape the economics and the society's future.
0: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। विद्यार्थियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की मांग दोहराई। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने

0: इस वर्ष जून में हुई यूजीसी नेट परीक्षा के 84 विषयों के अनंतिम उत्तर जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार 18 अगस्त तक इन उत्तरों को चुनौती दे सकते हैं। इसके लिए यूजीसी नेट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। हर उत्तर पर आपत्ति के लिए ₹200 का शुल्क देना होगा। उम्मीदवारों को अपनी आपत्ति के समर्थन में दस्तावेज भी जमा करने होंगे। एनटीए ने कहा कि किसी अन्य माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख भी 18 अगस्त है। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे राजौरी, पुंछ और नौशेरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।
1: लगभग 3 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक सुरंग कालीधार पर्वत श्रृंखला के बीच बनाई गई है। इसके शुरू होने से मौजूदा मार्ग में कठिन हिस्से को बाईपास किया जा सकेगा और यात्रा की दूरी करीब 13 किलोमीटर कम हो जाएगी। इससे यात्रा का समय भी काफी कम होगा। यह सुरंग ऐसे समय में खोली गई है जब अखनूर से राजौरी होकर पुंछ जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण और उन्नयन का काम तेजी से चल रहा है। लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह सुरंग अभी सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ हल्के वाहनों के लिए ही खुली रहेगी। भारी वाहनों, बसों और मालवाहक वाहनों को आवागमन की अनुमति निर्माण कार्य पूरा होने के बाद दी जाएगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना भी शुरू की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य की स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों योजनाओं में 1950 बीमारियां शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉक्टर पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से सरकारी क्षेत्रीय पुस्तकालय के पुनर्निर्माण की घोषणा की। डॉक्टर पेम्मा सानी ने कहा कि ब्रिटिश काल में 1915 में स्थापित इस पुस्तकालय से कई पीढ़ियों के विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। इस कार्य के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चिकित्सकीय मार्गदर्शन पर आधारित चिकित्सा पद्धति पर बल दिया है। नई दिल्ली में प्रोफेसर आनंद एन मालवीय और डॉक्टर प्रशांत कौशिक की पुस्तक रूमेटोलॉजी एसेंशियल्स अ न्यू फ्रंटियर फॉर एस्पायरिंग क्लिनिशियंस के विमोचन के अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि त्रिआयामी दृष्टिकोण अनावश्यक दवाओं का उपयोग करने, जाँच कम करने, निदान में देरी को रोकने और ये सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है कि मरीज सही समय पर उचित विशेषज्ञ से परामर्श ले सके। राजस्व खुफिया निदेशालय ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जांच में अब तक 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
2: DRI ने बताया कि जांच के दौरान जुटाई गई खुफिया जानकारी से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए साफ्टा का लाभ ले रहे थे। ये सिंडिकेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों से उत्पन्न सुपारी का आयात करते थे, लेकिन भारत में आयात के दौरान उसका मूल देश बांग्लादेश घोषित कर रहे थे। खुफिया जानकारी के आधार पर DRI ने कोलकाता और विशाखापत्तनम में आयातकों, कस्टम्स ब्रोकरों और IEC धारकों से जुड़े कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में सुपारी के मूल होने की पुष्टि करने वाले कई दस्तावेज और अन्य साक्ष्य बरामद किए गए। DRI अधिकारियों ने करीब 75 लाख रुपए की नकदी भी जब्त की, जिसे अवैध रूप से आयात किए गए सामान की बिक्री से प्राप्त रकम होने का संदेह है। मामले की जाँच जारी है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमलों में 11 लोगों की मौत हो गई। यूक्रेन ने रूस के दक्षिण पश्चिमी रोस्तोव क्षेत्र

0: को निशाना बनाकर ड्रोन से कई हमले किए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसे यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने रात भर में 822 यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। वहीं रूस के हमलों में यूक्रेन में 5 लोगों की मौत हुई है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इस बीच ओडिशा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में बाढ़ का खतरा बना हुआ है।
1: उड़ीसा के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 49 ब्लॉक और 5 शहरी इलाके प्रभावित है और लगभग 2.37 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। प्रभावित इलाकों में करीब 293 राहत शिविर चल रहे हैं। मुख्य सचिव अनु गर्ग ने जिला कलेक्टरों के साथ स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को फील्ड में रहने का निर्देश दिया है। साथ ही बाढ़ प्रभावित जिलों में कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। बाढ़ प्रबंधन का अनुभव रखने वाले वरिष्ठ अधिकारियों को भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर जिलों में तैनात किया गया है, जबकि प्रभावित जिलों की मदद के लिए एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता को भेजा गया है। भद्रक, केंदुझर और मयूरभंज जिलों में कल स्कूल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में अपने पहले मुकाबले में पूल डी में चीन को कड़ी टक्कर देते हुए 2-2 से ड्रॉ पर रोका। विश्व कप में कल भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल डी में अपने दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के साथ खेलेगी। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। भारत 17 वर्ष बाद इस चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। भारतीय टीम को इस प्रतियोगिता में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद से खास उम्मीद होंगी। गोल में भारत ने श्रीलंका के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अपनी पहली पारी में 9 विकेट पर 460 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कहा, वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने और विकसित भारत 2047 में योगदान करने का आह्वान किया। भारत ने बांग्लादेश से सुपारी आयात करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उजागर, 9 गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9. The headlines. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah launches development projects worth over 6,400 crore rupees at Alwar in Rajasthan, asserts empowering youth, poor, women and farmers essential for achieving goal of developed India by 2047. Vice President C.P. Radhakrishnan calls upon students to embrace nation first and contribute to Viksit Bharat 2047. India dismantles large-scale areca nut import racket from Bangladesh, uncovering 2,500 crore rupees revenue loss, 9 arrested. Red alert issued for very heavy rainfall over Gangetic West Bengal and Odisha tomorrow. Ukraine and Russia exchange missile and drone strikes, claiming 11 lives on both sides. In hockey, India begin campaign with 2-2 draw against China in FIH Women's World Cup in the Netherlands. And BWF Badminton World Championships start in New Delhi tomorrow. PV Sindhu and Lakshya Sen lead the India's challenge. And now the news in detail. Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan after laying the foundation.

0: अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, ख्वातीन और किसानों को बाख्तियार बनाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत तबकात की बहबूद और तरक्की पर खसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। जनाब शाह आज राजस्थान के शहर अलवर में रियासत के 17 ज़िलों में 6,400 करोड़ रुपए से ज़्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखने और इफ्तिताह करने के बाद एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने किसानों की बहबूद के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। उन्होंने वाजे किया कि 2014 से 2026 तक मोदी हुकूमत ने किसानों के लिए अहम स्कीमें मुतारिफ कराई हैं, नेस कम से कम इमदादी कीमत में मुसलसल इजाफा किया है।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: जनाब शाह ने देही मईशत की काया पलट करने में डेयरी के शोबे की अहमियत को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा पैदावार देने वाली गायें और भैंसें पूरे राजस्थान में हर एक घराने तक पहुंच सकें। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने डिग्रियां हासिल करने वाले तलबा से अपील की है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल की रहनुमाई में अपने इल्म, महारत और इख्तरा को कौम की तामीर के लिए बरूएकार लाएँ। चेन्नई के करीब कट्टन कुलथूर में वाक़ इसारे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज और टेक्नोलॉजी के 22वें जलसे तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि विकसित भारत 2047 के सफ़र में नौजवानों का रोल अहमियत का हामिल है। कोरोना वबा के दौरान भारत के रोल का जिक्र करते हुए जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि इंसानियत और आलमी फलाह बहबूद के पेश नज़र भारत ने 100 से ज़्यादा ममालिक को कोविड वैक्सीन फराहम की। उन्होंने 2014 से आला तालीम की तौसी को उजागर करते हुए कहा कि आला तालीम में ख़वातीन की शिरकत में नुमाया इजाफा हुआ है। उन्होंने उभरते हुए शोबाजात मसलन मसनू जहानत, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक और हयातियाती टेक्नोलॉजी की अहमियत को भी उजागर किया। नायब सदर ने कहा कि तहकीक की असल कामयाबी उसी वक्त है जब इससे मुआशरे को फ़ायदा पहुँचे। महसूलाती इंटेलिजेंस की डायरेक्टरेट DRI ने भारत में जनूब मशरक़ी एशियाई सुपारी यानी छालिया दरामद करने में मुलव्विस एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। ये नेटवर्क सुपारी को बांग्लादेश की पैदावार बताकर जनूबी एशियाई आज़ाद तजारती इलाके साफ्टा के तहत धोखादही से ड्यूटी में रियायत के फवायद हासिल कर रहा था। पेश है एक रिपोर्ट।
2: DRI ने बताया कि तहकीकात के दौरान हासिल करदा मालूमात से पता चला कि कुछ गिरोह बड़े पैमाने पर धोखाधही के जरिए SAFTA के फवायद हासिल कर रहे हैं। ये गिरोह इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और दूसरे जनूब मशरकी एशियाई ममालिक में पैदा होने वाली सुपारी यानी छालिया दरामद करते थे, लेकिन उसे बांग्लादेश की पैदावार बताते थे। इत्तलात की बुनियाद पर DRI ने कोलकाता और विशाखापट्टनम में दरामदकार, कस्टम ब्रोकर्स और IES होल्डर्स से वाबस्ता कई मकामात पर बैक वक्त तलाशी की कार्रवाई की। इस दौरान कई ऐसे दस्तावेजात और दीगर शवाहिद मिले जिनसे साबित होता है कि सुपारी दर हकीकत जनूब मशरकी एशियाई ममालिक से दरामद की गई थी। DRI के अफसरान ने तकरीबन 75 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। शुबा है कि यह गैर कानूनी तौर पर दरामद किए गए सामान की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम है। इसके अलावा तकरीबन 160 मेट्रिक टन सुपारी की एक खेप जब्त की गई है। मस्कुरा गिरोह के दीगर मेंबरान की शिनाख्त और उससे हुए नुकसान का पता लगाने के लिए तहकीकात जारी है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: भारत के महकमे मौसमियात IMD ने गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल के लिए शदीद से बहुत शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसी तरह की सूरत हाल अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मशरक़ी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में आइंदा 2 दिनों के लिए जारी रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि

0: में पहुंचेंगी। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप कल नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारत इस आलमी चैंपियनशिप की 17 साल बाद मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। भारत को मर्दों के सिंगल्स, खवातीन के सिंगल्स, मर्दों के डबल्स और खवातीन के डबल्स में दो दो एंट्रीज हासिल हुई हैं, जबकि मिक्स्ड डबल्स मुकाबले में तीन भारतीय जोड़ियां हिस्सा ले रही हैं। मर्दों के क्रिकेट में गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में सीरीज के पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 9 विकेट पर 460 रन बना लिए थे। स्टंप्स होने तक प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद थे। इससे कबल देवदत्त पडिक्कल ने अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी स्कोर करते हुए 167 रन बनाए। केएल राहुल ने 82 रन जबकि ध्रुव ड्रेल ने 51 रन बनाए। श्रीलंका की जानिब से प्रबोध जयसूर्या ने 4 विकेट जबकि केशरा नुवंथा ने 3 विकेट लिए। सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच कोलंबो में 23 अगस्त को शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरें एक मरतबा फिर। मरकजी वजीर दाखिला और इमदाद बाहमी के वजीर अमित शाह ने राजस्थान के शहर अलवर में 6,400 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। उन्होंने जोर दिया कि भारत को 2047 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मकसद को हासिल करने के लिए नौजवानों, गरीबों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाना लाजमी है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने तालिब इल्मों पर जोर दिया है कि वो मुल्क सबसे पहले के उसूल को अपनाएं और विकसित भारत 2047 के लिए तआवुन करें। भारत ने बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर सुपारी यानी छालिया की दरामद करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। 2,500 करोड़ रुपए का महसूलाती खसारा सामने आया है और 9 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। गंगाई, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में कल बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन और रूस ने एक दूसरे पर मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले किए जिनमें दोनों जानिब 11 अफराद हलाक हुए हैं। हॉकी में नीदरलैंड्स में FIH खवातीन के आलमी कप में भारत ने चीन के खिलाफ 2-2 से मैच बराबर करके अपनी मुहिम का आगाज किया। और BWF आलमी चैंपियनशिप कल से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। PV सिंधु और लक्ष्य सेन भारत की क्यादत करेंगे। बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी, सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, श्रेषा डेली और गायत्री गोपी चंद भारतीय दस्ते की नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है रानी दुर्गावती पर केंद्रित योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक रानी दुर्गावती। संयोजक हैं पुष्पेंद्र सौरभ और निर्देशक हैं विनोद कुमार।
2: समय 16वीं शताब्दी। चारों तरफ फैले अराजकता के माहौल के बीच गढ़ा कटंगा शायद एकमात्र ऐसा राज्य था जहां शांति थी, प्रजा खुशहाल थी, समृद्ध थी। गोंडवाना साम्राज्य के महाराज दलपत शाह अपनी पत्नी दुर्गावती, पुत्र वीर नारायण और राजमाता पद्मावती के साथ राजकाज संभाल रहे थे। किंतु समय कभी कभी बड़ा निर्दयी हो जाता है। राजा दलपत शाह अचानक बीमार होकर स्वर्गवासी हो गए। रानी दुर्गावती पर यह वज्रपात से कम न था।

0: रानी जी, राजमाता पद्मावती और राज पुरोहित महेश ठाकुर पधार रहे हैं।
1: पुत्री दुर्गावती, पुत्री दुर्गावती।

0: हमारी ये प्रसन्नता काल की कुदृष्टि पड़ गई। काल की कुदृष्टि।
1: अपने आप को संभालिए राजमाता।
2: राजमाता, क्षमा चाहता हूं। नगर और समीपवर्ती क्षेत्रों में घोषणा की जा रही है कि महाराज के साथ महारानी दुर्गावती सती होंगी।
0: क्या? नहीं, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा।
3: मैं सती नहीं होंगी। मैंने प्राण और मन से अपने पति को स्वीकार किया था। वो चले गए, किंतु उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का दायित्व अब मेरा है। माँ दुर्गा का दिया हुआ ये अमूल्य जीवन व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजमाता, आशीर्वाद दीजिए। आपके पुत्र के बाद अब आपकी दुर्गावती की हर सांस मातृभूमि की रक्षा और सम्मान में समर्पित होगी।
0: पुत्री दुर्गावती।
4: महारानी, महारानी, प्रणाम। राजमाता,
0: क्या बात है दीवान आधार सिंह?
4: क्षमा चाहता हूं राजमाता, ये सब कुंवर चंद्र शाह के कहने पर किया गया था।
0: चंद्र शाह? बड़े भाई की मृत्यु के बाद कुंवर चंद्र शाह के कुकृत्य का अर्थ समझ आता है हमें। लेकिन उनकी ये मंशा कभी पूरी नहीं होगी। दीवान जी।
4: जी राजमाता।
0: हमें सावधान रहना होगा। राजकुमार वीर नारायण को राजगद्दी पर बिठाते समय यदि चंद्रशाह कोई भी चाल चलता है तो हमारी आज्ञा है, उसे बंदी बना लीजिए।
4: जो आज्ञा राजमाता।

0: और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। चंद्रशाह ने वीर नारायण के राज्याभिषेक में रुकावट डाली और रानी ने उसे बंदी बनाकर राज्य से निर्वासित कर दिया। जिस तरह से यहाँ गढ़ा की गद्दी पर बालक वीर नारायण को बिठाकर रानी दुर्गावती शासन संभाल रही थी, ठीक उसी तरह दिल्ली की गद्दी पर बालक अकबर को बिठाकर सल्तनत को संभालने में जुटा था बैरम खान। लेकिन विरासत में मिली साम्राज्य विस्तार की चाहत और बैरम खान की चालबाजियां सीख सीख कर अकबर अपनी मासूमियत खो चुका था। वह 18 वर्ष की उम्र का होते होते क्रूरता और अवसरवादिता की उस हद पर पहुंच गया था जहां उसे अपनों का खून भी पानी लगने लगा था।
1: जिल्ले इलाही, गोंड रियासत की महारानी दुर्गावती ने बाज बहादुर को शिकस्त दे दी है, साथ ही जान भी बख्श दी है। अब चारों ओर रानी दुर्गावती की बहादुरी और महानता की चर्चे हैं।
2: बहादुरी,
3: महानता,
2: बीरबल, हमें जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को किसी और की बहादुरी और महानता के किस्से पसंद नहीं। विजयनगर तो चलो दूर दक्षिण में है,

0: उसे बाद में देखेंगे। लेकिन मेवाड़ के राणा प्रताप और गढ़ा की इस बेवा दुर्गावती को अपनी सल्तनत में मिलाना निहायत जरूरी है।
1: हुजूर, गढ़ा एक छोटा और शांत राज्य है, हमें उनसे कोई खतरा नहीं।
0: खतरा सरहद का नहीं बीरबल, खतरा तारीख का है। आने वाला समय हमें महान अकबर कहे, इसके लिए हमें हर उस सिर को झुकाना होगा जो ऊंचा

0: हम किसी और की महानता की परछाई में नहीं जी सकते।
1: बेहतर जहां पना,
2: लेकिन
0: लोग कहते थे कि हम तो एक बच्चा हैं, लेकिन हमने उस बैरम खान से भी पीछा छुड़ा लिया जिसने हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। क्यों करना पड़ता है अगर महान बनना है तो? क्योंकि लोग उसे महान कहने लगेंगे, कहेंगे कि बैरम खान ने अकबर को तराशा और शहंशाह बना दिया, वरना वो तो इस लायक ही नहीं था।
1: और जो राजा आपकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे,
0: मिट्टी में मिला देंगे उन्हें भी और उनके नाम को भी।
3: जहां पना, रतनपुर के राजा कल्याण शाही आपसे मिलना चाहते हैं।
0: मिलने आया है या कुछ मांगने? ये रतनपुर है कहां?
1: जहां पना, रतनपुर गढ़ा राज्य के दक्षिण पूर्व सीमा पर है।
0: ओ, अब तो पक्का दुर्गावती के खिलाफ कोई मशवरा देने आया होगा। यहां के राजाओं को दूसरे राजा से इतनी जलन क्यों होती है बीरबल? बुलाओ उसे, देखें क्या है उसके पास देने या सुनाने के लिए।
4: रतनपुर के राजा कल्याण शाही हाजिर हो।
5: जहां पनाह का इकबाल बुलंद रहे।
0: बैठिए। आप यहां किस लिए आए हैं कल्याण शाही?
5: जहां पनाह, गोंड राज्य की रानी दुर्गावती ने जब से मियां बाज बहादुर को मात दी है।
0: हमें मालूम है, कुछ ऐसा कहिए जो हम नहीं जानते।
5: जी, तब से हम पड़ोसी राज्य उनसे बहुत डरे हुए हैं। वो कभी भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं।
0: अगर ऐसा होता तो अब तक उसने मालवा पर हमला बोल दिया होता। क्यों बीरबल?
1: जी, आपने सही फरमाया हुजूर।
5: जहां पना, मालवा पर हमला ना करके वो खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और असलियत ये है कि वो मुगल सल्तनत को भी हथियाने की तैयारी कर रहे हैं।
0: भला वो किसके दम पर?
5: एक तो उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है जहां पना, और दूसरे उसके पास एक नायाब हाथी और एक नायाब सलाहकार है जहां पना।
0: इन दोनों को हमारे दरबार में हाजिर कराने का फरमान भेजा जाए। क्या हुआ बीरबल, तुम खामोश क्यों?
1: आलीचा, अंदेशा है कि बेवकूफी में वो कहीं आपके हुक्म की बेअदबी ना कर दे।
0: तब तो और भी अच्छा होगा बीरबल, हमें गढ़ा को कुचलने का सीधा बहाना मिल जाएगा। महान हिंदुस्तान के एक और महान राज्य की महान रानी की महानता साबित होने से पहले ही खत्म हो जाएगी।

0: काहे कि अपने नायाब हाथी सरमन और अपने सलाहकार आधार सिंह को दिल्ली दरबार में भेजें।
1: और इस थाल में ये तोहफा क्या है?
0: दमकते सोने का बना पिंजरा। उन्होंने ये भी कहा है कि एक औरत का काम राजपाट संभालना और जंग के मैदान में उतरना नहीं है, महल के अंदर रहना है।
1: आप अतिथि गृह में विश्राम करिए, हमारा जवाब लेकर जाइएगा।
0: जो हुक्म महारानी साहिब है।
1: जलालुद्दीन की ये जुर्रत कि उसने हमारे प्रिय सरमन हाथी और आधार सिंह जी आपको मांग लिया।
2: वो ऐसा ही करता है महारानी, वो कमजोर राज्यों को डराने के लिए ऐसे ही हथकंडे अपनाता है।
1: जलालुद्दीन ने इस पिंजरे को भेजकर हमें संदेश दिया है कि हम उसकी अधीनता स्वीकार कर लें। वो हमें सोने के पिंजरे में कैद पंछी बनाना चाहता है।
2: आपने सही अनुमान लगाया है रानी साहिबा।
1: उस मुगलिया दूत को वापस यहां लेकर आओ।
3: जो आज्ञा महारानी।
0: हुक्म महारानी साहिबा।
1: अब आप जा सकते हैं, आपका काम पूरा हो गया। अपने जहां पनाह से कहिएगा कि हम एक स्वतंत्र राज्य हैं, उनके गुलाम नहीं। हां, उनके इस नायाब तोहफे का जवाब हम जल्द से जल्द देंगे।
0: जो हुक्म।
2: महारानी, यदि हम चुप रह गए तो इसे हमारी कायरता समझा जाएगा।
4: वो तो ठीक है, परंतु उत्तर क्या दिया जाए?
1: एक पिंजिना बनवाइए, वो भी शुद्ध सोने का। उसने मुझे पिंजरा बिछवाया है ना, हम उसे कपास धुनने का पिंजिना भिजवाएंगे। उसे संदेश देंगे कि बेहतर है कि वो गोंडवाना पर नजर ना डाले, वरना पूरी जिंदगी बैठकर कपास धुनने के अलावा किसी और काम के लायक नहीं बचेगा। गढ़ा पर नजर ना डाले।
4: परंतु सोने का?
1: हाँ, ठीक उतने ही वजन का जितने वजन का उसका पिंजरा है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। जलालुद्दीन को पता चलना चाहिए कि गढ़ा की महारानी कोई भिखारिन नहीं है जो उसके सोने से तब जाए।
5: और इसे लेकर दिल्ली कौन जाएगा माँ?
2: मैं जाऊंगा, यदि महारानी उचित समझें।
1: उचित है। आखिर उस अहंकारी को पिंजिना भिजवाने का सही अर्थ भी तो समझाना होगा। शीघ्र कार्रवाई की जाए।
2: जो हुक्म महारानी।

0: महारानी, मुगल बादशाह अकबर का संदेश लेकर एक दूत आया है।
1: मुगल बादशाह का दूत? अंदर ले आओ उसे।
0: जो आज्ञा।
2: महारानी जी, सल्तनत हिंद शहंशाह अकबर ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है।

0: पेश किया जाए।
1: ये
0: क्या है? ये
1: पिंजना है हुजूर, हमारी भाषा में इसे पिंजना कहते हैं। इससे कपास धोनी जाती है सूत तैयार करने से पहले।
0: पिंजना, वो भी सोने का? बीरबल, इस पिंजने का क्या मतलब हुआ?
2: आलीजान, महारानी दुर्गावती का मतलब है कि आप गढ़ा जीतने के मर्दाना ख्वाब छोड़कर स्त्रियों की तरह रुई ढूंढने का काम शुरू करते हैं। एक और अर्थ भी हो सकता है हुजूर।
0: वो क्या?
2: अगर आपने गढ़ा पर हमला किया तो आपको कैद में डाल देंगे। और आलीजा, कैदियों को कपास धुलने का काम दिया जाता है और आपको भी।
0: बिनी चुरत, लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास।
1: आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना भी है और शौर्य भी। हमारा राज्य करेले की तरह है, जो हमें निगलने की कोशिश करेगा उसका गला कड़वाहट से भर जाए।
0: आधार सिंह, जंग के लिए तैयार रहे, जाकर कह देना दुर्गावती से।
1: महारानी दुर्गावती कहिए आलीजा, महारानी दुर्गावती।
0: हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती, जा सकते हो तुम। आसफ खान, आसफ खान, जंग की तैयारी की जाए। गढ़ा पर तुरंत चढ़ाई करो, हमें गढ़ा चाहिए, समझे तुम?
3: ऐसा ही होगा जहां पर।

0: महारानी की जय हो।
1: महारानी की जय हो।
2: लौट आए आधार सिंह जी, कैसा लगा हमारा पिंजना जलालुद्दीन को?
0: अकबर गुस्से से पागल हो गया महारानी। खबर मिली है कि उसने सिपह सालार आसफ खां को आदेश दिया है गढ़ा पर हमला करने के लिए। वो निकल चुका है युद्ध के लिए।
2: हम गोंडवाना के वासी हैं, हम युद्ध की तैयारी करते नहीं बल्कि हमेशा तैयार रहते हैं। आने दो उन्हें।
3: युद्ध हुआ, नरई नाले के पास हुआ, जमकर हुआ। रानी दुर्गावती ने अपने हजार सैनिकों के साथ शत्रुओं की विशाल सेना को पहले तो अपने छापामार युद्ध कौशल से मार भगाया था। नरई नाले के पास संकरे दर्रे में फंसी मुगल सेना के हजारों सैनिक गाजर मूली की तरह काटे गए। अपनी सेना की यह दुर्दशा देखकर आसफ खान पूरी तरह घबरा गया और अपनी बची खुची सेना लेकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन दूसरे दिन 24 जून 1564 को वो वापस आया।
1: महारानी, महारानी, अनर्थ हो गया महारानी। इस बार तो आसफ खां अपनी पूरी तोपें पहाड़ी के मुहाने पर ले आया है। सामने बहुत सारी तोपें दिख रही हैं।
2: कितनी बड़ी भूल हुई हमसे। यदि हमने कल रात ही धावा बोल दिया होता तो उनकी तोपों के मुंह खुलने से पहले ही नष्ट हो चुके होते।
1: जी महारानी।
2: अब पीछे देखने का समय नहीं है। वीर सैनिकों, आक्रमण करो।

0: कुछ तीरंदाज ऊपर आ गए हैं, उन पर निशाना साधो। मेरी आँख!
1: अरे महारानी की आँखों से
2: हटो, हटो! महारानी की आँखों से लगा है, वह अपने हाथी के होंठ से गिर पड़ी।
3: चलो, महारानी, महारानी,
1: महारानी, महारानी, महारानी!
0: इस बार गले में तीर!
1: अरे इस बार गले में तीर!
0: रुकने वाली नहीं हो।
3: सैनिकों, घेरा बनाओ, महारानी को सुरक्षित पालकी में रखकर दुर्ग की तरफ ले जाओ, जाओ।
0: नहीं, मैं रणभूमि छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी।
1: नहीं महारानी,
0: इस जलालू पता चले कि किससे सामना हुआ था उसका।
1: महारानी काफी खून बह गया है, संभालिए अपने आप को महारानी।
3: महारानी, महारानी, महारानी,
0: कौन?
3: रानी, मैं आपका सेवक आधार सिंह।
0: आधार सिंह, लगता है बहुत खून बह गया है मेरा। ये शरीर अब साथ नहीं दे रहा है। सामने देखिए, वो उनकी विशाल सेना हमारी तरफ पड़ रही है। इसके लिए, इससे पहले कि वो दुष्ट मुगल मुझे बंदी बनाकर मेरा अपमान करे, ये लीजिए मेरी कटार, और अपने हाथों से मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए, मुझे वीर गति दे दीजिए।
3: नहीं नहीं महारानी, नहीं नहीं, नहीं, ये अधर्म, ये दास अपने हाथों से कभी नहीं कर सकता मारा, कभी नहीं। हम आपको मार कर जीने से अच्छा मरना पसंद करेंगे। आप चलिए, आप चलिए, हम घेरा बनाकर आपको दुर्ग में ले चलते हैं।
0: आधार सिंह, क्या आप यही चाहते हैं कि हमारा अपमान हो? गढ़ा की रानी मुगलों की कैद में जाएगी? नहीं, रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आधार सिंह, आधार सिंह जी, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो गढ़ा की बेटी अपना फैसला खुद करना जानती है।
3: महारानी, महारानी, छोड़िए मेरी कटार, छोड़िए। अरे महारानी,
0: आधार सिंह जी, मैंने हमेशा माना है कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी तो इस अमर जीवन का एक छोटा सा अंश ही है। मातृभूमि, मेरी कड़ा माटी, तेरी सदा ही जय हो। जय पड़ोते।
3: महारानी, महारानी, महारानी, महारानी, धन्य है आपका ये बलिदान, महारानी दुर्गावती, धन्य है।

0: ये युद्ध इतिहास के पन्नों में भले ही अकबर ने जीता, लेकिन कीर्ति और गौरव की अमर पताका महारानी दुर्गावती की ही फहराई। मातृभूमि की आन बान और शान के लिए चंदेल राजवंश की बेटी और गोंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती के इस सर्वोच्च बलिदान ने लाखों करोड़ों देशवासियों के मन में देश के लिए मर मिटने की ऐसी अलख जगाई जो आज भी जिंदा है और सदियों तक जिंदा रहेगी।
1: नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप योगेश त्रिपाठी का लिखा नाटक सुन रहे थे, रानी दुर्गावती। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार राजेश आहूजा, रानी दुर्गावती कुमकुम जैन, राजमाता पद्मावती सुचित्रा गुप्ता, राजपुरोहित महेश ठाकुर सुनील लोहिया, दीवान आधार सिंह योगेंद्र टिकू, अकबर राजेश काम्बोज, बीरबल कीमती आनंद, चंद्रशाह सुरेंद्र सागर, रामचेरी जया रामधर। अन्य भूमिकाओं में थे किशोर सहिजानी और ऐशान शर्मा। सहयोग हरदीप सिंह का था और संयोजक थे पुष्पेंद्र सौरभ। इस नाटक के निर्देशक थे विनोद कुमार। इस नाटक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें cdu.akashwani@gmail.com पर भेज सकते हैं।

0: ये आकाशवाणी है। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आज रात प्रस्तुत है गिटार वादन। कलाकार हैं रितम सरकार। केवल 9 वर्ष की आयु में आपने संगीत की तालीम लेने की शुरुआत की और आपके पहले गुरु थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री श्यामल चट्टोपाध्याय। आगे चलकर आपने दिग्गज गिटार वादक पंडित देवाशीष भट्टाचार्य से प्रशिक्षण प्राप्त किया। आपकी कलात्मकता केवल गिटार तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि तबला, सरोद, गायन और योग आधारित सांगीतिक प्रस्तुतियां भी आपकी पहचान बनी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक रीड के कलाकार रितम सरकार ने संगीत की राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी प्राप्त की हैं। रितम सरकार अखिल भारतीय संगीत समारोहों के साथ साथ बंगाल के संगीत सम्मेलनों में भी भाग लेती रहती हैं। आप एक ऐसे गिटार वादक हैं जिन्होंने संगीत के विभिन्न सम्मेलनों तथा कार्यक्रमों के अलावा संगीत की कार्यशालाओं में भाग लेने और व्याख्यान देने के लिए देश और विदेश की यात्रा की। यही नहीं, आप कैंसर से पीड़ित वंचित बच्चों की सहायता हेतु आयोजित सामाजिक निधि संग्रह कार्यक्रमों के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शरीर के 7 चक्रों पर आधारित योग की एक परियोजना पर भी काम कर रहे हैं।
1: Tonight in the Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, we present guitar recital by Ritam Sarkar. Beginning his musical journey at an early age of 9 years, Ritam Sarkar was initially trained under the sitar maestro Sri Shyamal Chattopadhyay and thereafter under the able guidance of guitar legend Pandit Debashish Bhattacharya. Later, he expanded his musical artistry through exposure to tabla, sarod, vocal and meditation-based musical presentations. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Ritam Sarkar has also been a holder of national and state scholarships in music. A proud participant at All India Music Festivals and All Bengal Music Festivals,

गिटार वादन के अंतर्गत आप ऋतम शर्कार से राग मालकौंस सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग मेघ। आलाप से इसकी शुरुआत होगी और गत में इसकी बंदिश रूपक ताल में आब

0: आप रितम सरकार से राग मेघ सुन रहे थे। गिटार वादन की इस प्रस्तुति का समापन आप राग किरवानी के साथ करेंगे। यह बंदिश कहरवा दाल में आबद्ध है।
1: You were listening to Rag Megh. Ritam Sarkar concludes his guitar recital in Rag Kirwani.
2: The composition is set to Kaharwa Taal.

0: गिटार वादन के अंतर्गत आप रितम शौरकार से राग किरवानी सुन रहे थे। तबले पर संगत कर रहे थे औशित जाना। और इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यहीं संपन्न होती है।
1: You were listening to Raag Kirwani in the guitar recital by Ritam Sarkar. He was accompanied on the tabla by Oshit Jana. And with this, we come to the end of Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha tonight. This program was recorded at the studios of Akashvani, Kolkata.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार में मोहम्मद जुबैर। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह आज राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला और लोकार्पण करने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
1: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो ये युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
0: श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के विकास और कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों से राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए अपने ज्ञान, कौशल और नवाचार का प्रयोग करें। चेन्नई के पास कट्टन कुलथुर में SRM विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारत के युवाओं की अहम भूमिका है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और RJD नेता तेजस्वी यादव के पुतले जलाए। छात्रों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए और भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए JPSC और JSSC परीक्षाओं को रद्द करने की फिर मांग की। प्रदर्शनकारियों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना की भी घोषणा की है। इस बीच राज्य सरकार ने बातचीत के माध्यम से समस्या का समाधान करने का एक और प्रयास किया और प्रदर्शनकारी छात्रों को कल दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज UGC नीट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये फैसला

0: दिया गया है। अंग्रेजी विषय की दोबारा परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। वहीं कॉमर्स का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगा। समाज शास्त्र का पेपर 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राज्य में केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना की भी शुरुआत की। जो लोग आयुष्मान भारत के दायरे में नहीं आते वे राज्य के स्वास्थ्य बीमा योजना के पात्र होंगे। जम्मू कश्मीर में जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बहुप्रतीक्षित सुंगल सुरंग को आम लोगों के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। इससे राजौरी, पुंछ और नौशहरा के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। इस सुरंग की मदद से यात्रा की दूरी लगभग 13 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी काफी कम हो जाएगा। राजस्व खुफिया निदेशालय DRI ने एक ऐसे बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई सुपारी को बांग्लादेशी बताकर भारत में आयात करता था। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि जांच में अब तक 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के संभावित राजस्व नुकसान का पता चला है। इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Union Home Minister Amit Shah has said that empowering the youth, poor, women and farmers is essential to achieving the goal of making India a fully developed nation by 2047. He said the Narendra Modi government is giving special attention to the welfare and development of these sections. Mr. Shah was addressing a program in Alwar, Rajasthan today after laying the foundation stones for and inaugurating development projects worth over 6,400 crore rupees across 17 districts of the state. He said the government has launched several initiatives for the welfare of farmers. He noted that from 2014 to 2026, the Modi government had introduced major schemes for farmers and continuously increased the minimum support price. Mr. Shah also highlighted the potential of the dairy sector to transform the rural economy. Vice President C.P. Radhakrishnan has called upon graduating students to use their knowledge, skills and innovation for nation building guided by the principle of nation first. Addressing the 22nd convocation of SRM Institute of Science and Technology at Kathankulathur near Chennai, the Vice President said, India's youth have a vital role to play in the country's journey towards Viksit Bharat by 2047.
2: Over the years, SRM Institute of Science and Technology has built an academic ecosystem that encourages interdisciplinary learning, creativity, entrepreneurship, and critical thinking. I am pleased to note SRM's growing emphasis on strategic technologies such as artificial intelligence, quantum technologies, semiconductor research, robotics, biotechnology and sustainable development. These fields will save the economies and the society's future.
1: Recalling India's response to the COVID-19 pandemic, Mr. Radhakrishnan said, India supplied vaccines to more than 100 countries, demonstrating its commitment to global welfare and humanity. The Directorate of Revenue Intelligence, that is DRI, has dismantled a major network involved in importing Southeast Asian areca nuts into India by falsely declaring them as being of Bangladeshi origin and fraudulently availing concessional duty benefits under the South Asian Free Trade Area, that is SAFTA. The Finance Ministry said the investigation has so far revealed a potential revenue loss of more than 2,500 crore rupees. 9 persons have been arrested in connection with the case. Import of areca nuts into India attracts a basic customs duty of 100%. The National Testing Agency, NTA, today announced retest.